103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये FM शिमला है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये FM शिमला है। 6 बजने को है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का

0: निर्माण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 500,000 आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with the Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Prime Minister Narendra Modi is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron in what is expected to be a highly productive and wide-ranging visit. Notably, this marks India's 13th participation at the G7 summit and the Prime Minister's 7th consecutive participation. India's regular participation at the G7 summit reflects the increasing recognition of New Delhi's role and contributions in addressing global challenges related to peace, security, development and environmental sustainability. A report.
3: India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in concrete economic and technology partnerships.

जहाँ भक्ति होती है वहाँ बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं, और भक्ति की जब बात होती है तो सबसे ऊपर नाम आता है प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त संकट मोचन प्रभु श्री हनुमान का, जिनकी आज यानी कि मंगलवार के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए भक्ति रस से भरपूर अपने इस कार्यक्रम में हम भी वंदन करें महाबली श्री हनुमान।

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हेमांजलि में आइए अब आराधना करते हैं भोलेनाथ शिवशंकर की। महादेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, इनकी रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है, और जो भी सच्चे दिल से लेता है वह महादेव का नाम, पल भर में उसकी तकदीर बदल जाती है।

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि सुन रहे हैं आप इस वक्त हमारे साथ एफएम शिमला पर। तो आइए कार्यक्रम में अब आराधना करते हैं देवी माँ की और नमन करते हैं उनके

ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं एफएम शिमला की एक और भक्तिमयी प्रस्तुति, मानस गान।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा

उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से रामकथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेदमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। गायन स्वर थे लता मंगेशकर, वाणी जयराम और साथियों के, और संगीतकार थे सतीश भाटिया। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। 6:57 हुए हैं। लीजिए पेश हैं FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइन साथ में प्रियंका ठाकुर। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों में कल ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिले में ये समारोह 18 जून को प्रस्तावित है। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से चिट्टा मुक्त पंचायत व समाज बनाने का आह्वान किया। पांगी घाटी के नव निर्वाचित

0: प्रधानों उप प्रधानों ने सरकार से पांगी घाटी को अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा देने की मांग की है। चंबा में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अलग विधानसभा क्षेत्र बनने से इलाके का समग्र विकास सहित जन समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सकेगा। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने तकनीकी और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया है। धर्मशाला में एक कार्यशाला के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला न्याय, समानता और विधि के शासन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायकों को मतदान करने से रोकने संबंधी प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद विधायक इन चुनावों में मतदान कर सकेंगे। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जनता का अटूट विश्वास बना हुआ है। प्रदेश में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कल राष्ट्रव्यापी मेगा मॉकड्रिल आयोजित की गई। ये मॉकड्रिल भूकंप, बादल फटने और वनों में आग लगने जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए करवाई गई। इस संग में बस इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: सात बजने को है हिंदी में समाचार। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
2: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम

0: में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की है।

शूरसेन प्रदेश में किसी समय चित्रकेतु नामक अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनकी रानियों की तो संख्या ही करना कठिन है, किंतु संतान कोई नहीं थी। एक दिन महर्षि अंगिरा राजा चित्रकेतु के राजभवन में पधारे। संतान के लिए अत्यंत लालायित नरेश को देखकर उन्होंने एक यज्ञ करवाया और यज्ञशेष हविष्यान्न राजा की सबसे बड़ी रानी कृत द्युति को दे दिया। जाते जाते महर्षि कहते गए, महाराज आपको एक पुत्र तो होगा, किंतु वो आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। महारानी कृत द्युति गर्भवती हुई, समय पर उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज चित्रकेतु की प्रसन्नता का पार नहीं था। पूरे राज्य में महोत्सव मनाया गया। दीर्घ काल तक संतानहीन राजा को संतान मिली थी, फलतः उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। वे पुत्र के स्नेहवश बड़ी रानी के भवन में ही प्राय रहते थे। पुत्रवती बड़ी महारानी पर उनका एकांत अनुराग हो गया था। फल ये हुआ कि महाराज की दूसरी रानियां कुढ़ने लगी। पति की उपेक्षा का उन्हें बड़ा दुख हुआ और इस दुख ने प्रचंड द्वेष रूप धारण कर लिया। द्वेष में उनकी बुद्धि अंधी हो गई। अपनी उपेक्षा का मूल कारण उन्हें वो नवजात बालक ही लगा। अंत में सबने सलाह करके उस अबोध शिशु को चुपचाप विष दे दिया। बालक मर गया। महारानी और महाराज चित्रकेतु तो बालक के शव के पास कटे वृक्ष की भांति गिरे ही पूरे राज सदन में क्रंदन होने लगा। रुंदन क्रंदन से आकुल उस राजभवन में दो दिव्य विभूतियां पधारी। महर्षि अंगिरा इस बार देवऋषि नारद के साथ आए थे। महर्षि ने राजा से कहा, राजन तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो। तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास पहले आया था कि तुम्हें भगवत दर्शन का मार्ग दिखा दूं। किंतु तुम्हारे चित्त में उस समय प्रबल पुत्रेच्छा को देखकर मैंने तुम्हें पुत्र दिया। अब तुमने पुत्र वियोग के दुख का अनुभव कर लिया। ये सारा संसार इसी प्रकार दुखमय है। राजा चित्रकेतु अभी शोकमग्न थे। महर्षि की बात का मर्म वे समझ नहीं सके। वे तो उन महापुरुषों की ओर देखते

रह गए। नारद ने समझ लिया कि इनका मोह ऐसे दूर नहीं होगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से बालक के जीव को आकर्षित किया। जीवात्मा के आ जाने पर उन्होंने कहा, जीवात्मन देखो, ये तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हो रहे हैं। तुम अपने शरीर में फिर से प्रवेश करके इन्हें सुखी करो और राज्य सुख भोगो। सबने सुना कि जीवात्मा स्पष्ट कह रहा है, देव ऋषि ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? जीव का तो कोई माता पिता या भाई बंधु नहीं है। अनेक बार मैं इनका पिता रहा हूं, अनेक बार ये मेरे, अनेक बार ये मेरे मित्र या शत्रु रहे हैं। ये सब संबंध तो शरीर के हैं। जहां शरीर से संबंध छूटा वहीं सब संबंध छूट गया। फिर तो सबको अपने ही कर्मों के अनुसार फल भोगना है। जीवात्मा ये कहकर चला गया। राजा चित्रकेतु का मोह उसकी बातों को सुनकर नष्ट हो चुका था। पुत्र के शव का अंतिम संस्कार संपन्न करके वो स्वस्थ चित्त से महर्षियों के समीप आए। देवऋषि नारद ने उन्हें भगवान शेष की आराधना का उपदेश किया, जिसके प्रभाव से कुछ काल में ही उन्हें शेष जी के दर्शन हुए और वे विद्याधर हो गए।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और एफएम शिमला पर। यह वक्त है आपको बताने का आज की एफएम हाइलाइट्स। सात बजकर 57 मिनट, 8:30 और 9:57 पर एफएम शिमला पर हमारे साथ आप सुन सकते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस और समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। हम आपको लेकर चलेंगे ठीक 8 बजे। पहाड़ी लोकगीतों पर आधारित लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 8:32 पर और 8:45 पर। कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ लेकर आएंगे आपके लिए फिल्म संगीत। हिमाचल की कुछ खूबसूरत दिलकश हसीन वादियों की सैर करवाता कार्यक्रम कुदरत के रंग आप सुन सकते हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर 9:30 पर।

10 बजे आपके चहेते एफएम शिमला पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम राग छाया। 11:05 पर पुरानी फिल्मों से प्रोग्राम आप सुनेंगे हमारे साथ और पहाड़ी संगीत आपके लिए हम लेकर आएंगे 11:30 पर। इसके अलावा 12:20 पर महिलाएं सुनेंगी अपना खास पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन। दोपहर 1:10 पर हेलो शिमला लाइव फोन इन कार्यक्रम सुनना बिल्कुल न भूलें।

शाम 7:10 पर किसानों और बागवानों के लिए उनका पसंदीदा कृषि जगत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं 7:45 पर। रात 8 बजे भूले बिसरे गीतों में कुछ बेहतरीन फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे और 8:30 पर फिर एक बार फिल्म संगीत में हम होंगे आपके साथ। एक फिल्म से ये प्रोग्राम 9:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। कौन सी है हमारी आज की फिल्म, ये जानने के लिए आपने रहना है हमारे साथ 103.7 MHz पर। नौ बजकर 30 मिनट पर हमारा ई मेल्स बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन आप सुन सकते हैं हमारे साथ और कर सकते हैं फरमाइश अपने किसी भी पसंदीदा गीत की। गजलों के शौकीन अगर आप हैं तो सुनना ना भूलिएगा हमारे साथ चंद दिलकश गजलें रात 10 बजे। और पुराने फिल्मी गीतों के शौकीन हमारे तमाम सुनने वाले सुन सकते हैं सदाबहार नगमे रात 10:30 पर। तो ये हैं कुछ खास प्रोग्राम्स जो आज आप सुनेंगे हमारे साथ अपने चहेते एफएम शिमला पर। तो इन सभी प्रोग्राम्स के लिए आपने रहना है हमारे साथ 103.7 MHz पर और एफएम शिमला पर। अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला का।

हमारे युवा दोस्तों के लिए उनका पसंदीदा युवाणी कार्यक्रम लेकर हम आएंगे 3:30 पर। और शाम 4:20 से लेकर शाम 7:05 के दरमियान विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साथ।

हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू FM शिमला। जी हाँ लिसनर्स, 7:15 हुए हैं और देखिए ऑन टाइम आप सभी सुनने वालों के लिए हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। जी हाँ, यहाँ पर कुछ प्यारी प्यारी बातें होंगी कुछ दिलचस्प जानकारियों के साथ, और साथ ही आपको हम सुनवाएंगे कुछ लवली म्यूजिकल नंबर्स भी। तो बस आपने ना बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है, आप तो बस यूं ही रहिए हमारे साथ FM शिमला पर, और बस यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और लिसनर्स, FM शिमला पर आज का ये हसीन सफर आप इंजॉय करेंगे अपनी दोस्त रेडियो एंकर वीना नरवाल के साथ। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में 90s के दौर का ये सुपरहिट लव सॉन्ग आपने एंजॉय किया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मूवी से। और लिसनर्स, अपने इस प्रोग्राम में आज ऐसे ही कुछ लवली सॉन्ग्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप जो हैं इस वक्त हमारे साथ FM शिमला पर हैं और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग शिमला। ज़िंदगी में हम सब सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, और इसके लिए अपने अपने तरीके से, अपने अपने दम पर हम कोशिशें भी करते रहते हैं। और सफलता को पाने के सफ़र के दौरान कई मुश्किलों का सामना हमें करना होता है, क्योंकि सफलता कभी भी बेमोल नहीं मिलती, बल्कि हमें हर हाल में उसका मोल चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी मेहनत, लगन और उम्मीद मजबूत है तो आप यकीनन सफलता पाने के हकदार हैं। और इस दौरान जब आप लगातार सफल होने की कोशिश में लगे हैं तो बहुत सारे अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको मिलते हैं, जो कि आगे चलकर डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, केपेबल और मज़बूत बनाते हैं। और फिर शुरुआत होती है आपकी कामयाब ज़िंदगी के उस हसीन सफ़र की जिसके कभी आप सपने देखा करते थे। तो माय डियर लिसनर्स, आज अगर आपके पास वक्त है, मौका है और कुछ कर गुजरने की चाहत है

तो उठिए, चलिए और स्टार्ट कीजिए अपनी मंजिल को पाने की अपनी ये जर्नी, आज, अभी और इसी वक्त, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट। वेल, आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

0: जी हाँ, FM शिमला सुन रहे हैं आप इस वक्त हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो लिसनर्स, आज है 16 जून 2026 और इतिहास में 16 जून की ये तारीख जो है कई ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी रही है और कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं आज की तारीख से जुड़ी हैं जो कि आज की तारीख को खास और अहम बनाती हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। आपको बता दें कि साल 1963 में आज के दिन ही मानव सभ्यता ने एक ऐसा अध्याय लिखा जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं की भूमिका को नई पहचान दी। दरअसल आज के दिन सोवियत संघ वर्तमान यानी कि वर्तमान रूस जो है वहाँ की युवा पायलट वेलेंटीना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। महज 26 साल की उम्र में वेलेंटीना तेरेश्कोवा ने वोस्टोक 6 अंतरिक्षयान में सवार होकर सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को से अपनी ऐतिहासिक उड़ान शुरू की और ये उपलब्धि न केवल सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गर्व का विषय थी बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी। आपको बताएं कि तेरेश्कोवा ने लगभग 71 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 48 परिक्रमाएं उन्होंने की। उनका ये जो मिशन था उस दौर में अंतरिक्ष अनुसंधान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना गया जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा चरम सीमा पर थी। जून 1963 को उनका मिशन जो है सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। पृथ्वी पर लौटते समय उन्होंने लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर कैप्सूल से बाहर निकलकर पैराशूट के सहारे धरती पर सुरक्षित लैंडिंग की थी। और उनकी इस साहसिक उपलब्धि ने उन्हें विश्वभर में पहचान दिलाई और वो जो है महिला सशक्तिकरण की एक प्रतीक बनकर रह गई। वेलेंटीना तेरेश्कोवा की यह ऐतिहासिक उड़ान आज भी अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। और लिसनर्स, आपको बताएं कि उनकी इस सफलता ने आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं के लिए अंतरिक्ष के द्वार खोल दिए थे और ये साबित किया कि साहस, संकल्प और प्रतिभा के बल पर कोई भी ऊंचाई आसानी से हासिल की जा सकती है। जी हाँ लिसनर्स, इस वक्त आप हैं हमारे साथ FM शिमला पर और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला सुन रहे हैं आप हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और लिसनर्स, आज है आकाशवाणी शिमला का स्थापना दिवस, तो आज के इस उपलक्ष पर हम देते हैं आकाशवाणी शिमला से जुड़े सभी सहयोगियों, कर्मचारियों, अधिकारीगणों और सभी सुनने वालों को आज के इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज के दिन आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी और आज आकाशवाणी शिमला जो है अपने कई रेडियो चैनलों के साथ साथ दुनिया भर में बहुत सारे आकाशवाणी केंद्र ऐसे हैं जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बहुत सारे लोग आकाशवाणी के साथ जुड़े हैं और भरपूर मनोरंजन और जानकारियों के लिए आकाशवाणी पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। तो उन सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही हमारे साथ बनाए रखिए और आकाशवाणी शिमला से अपने तमाम सुनने वालों को भी आज के इस दिन की हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं आज के इस प्रोग्राम में एक और प्यारा सा गीत।

0: तो लिसनर्स, ये था हमारे आज के इस प्रोग्राम का लास्ट म्यूजिकल नंबर। एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद एफएम न्यूज़ हेडलाइंस आप सुन सकते हैं और 8 बजे समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हम आपको लेकर चलेंगे। लौटेंगे एफएम शिमला पर, सुनवाएंगे आपको लोक संगीत 8:32 पर, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास हैं आपके लिए। तो बस आपने कहीं नहीं जाना है, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस यूं ही रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और एफएम शिमला पर। अब वक्त हो चला है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइन साथ में प्रियंका ठाकुर। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अपने कांगड़ा प्रवास के दौरान योल स्थित वेद आश्रम का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने वेद आश्रम के संस्थापक एवं प्रख्यात वैदिक विद्वान स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य से भेंट की। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मूल चेतना वेदों में निहित है और वेद ज्ञान मानवता को सत्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वेद आश्रम भविष्य में भी वैदिक ज्ञान के प्रसार और समाज के नैतिक उत्थान के लिए इसी प्रकार योगदान देता रहेगा। चंबा जिला में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। आत्मा परियोजना कृषि विभाग चंबा द्वारा कल 15 जून से प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। आत्मा परियोजना के परियोजना निदेशक नितिन कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष प्राकृतिक गेहूँ का संवर्धन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिला में 175 किसानों से कुल 134 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऊना जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर के विकास और सौंदर्यकरण कार्य पर 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंदिर की विकास और विस्तारीकरण परियोजना की तैयारियों का जायजा लेने के बाद बताया कि ये निर्माण कार्य जल्द आरम्भ किया जाएगा। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया है। वे सोलन जिले के सायरी घाट में विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

0: आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस संग में बस इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को है समाचार प्रभात के लिए। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा

0: कर रहे हैं। तीन दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम या इसका प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से

0: जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं।

0: हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha carrying 62,370 metric tons of LNG cargo safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honour, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future."
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए MOU से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे

0: Release. U.S. and Iran reach deal to end war, reopen Hormuz, headlines the Indian Express. U.S.-Iran strike tentative peace deal as Israel refuses land pullback, reads the headline in the Statesman. Prime Minister Modi will lead the main event of the International Day of Yoga 2026 celebrations in Kolkata on June 21, writes the Asian Age. In its editorial piece titled Label Truth, the Tribune argues that FSSAI's action against misleading food labels is necessary, but only a first step. And that is back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Slovakia confers its highest honour, Order of the White Double Cross First Class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Avignon, France today to hold bilateral meetings with Prime Ministers of Canada and UK and UAE President. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण. 8:30 हुए हैं. लीजिए पेश हैं FM न्यूज हेडलाइंस.
3: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस साथ में प्रियंका ठाकुर. प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है. इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा. ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम काल बताया है. कल धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक परिवर्तन देखे हैं और यह कार्यकाल समृद्धि, सुरक्षा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव को समर्पित रहा है. उन्होंने कहा कि देश ने पहली बार गरीब कल्याण और तीव्र विकास को समांतर रूप से आगे बढ़ते देखा है. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंडी जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पद्धर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था. उपमंडलाधिकारी सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि नशा आज समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया. लाहौल स्पीति जिला की सभी ग्राम पंचायतों में 15 जून से 15 जुलाई तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर लोगों को बैंकिंग सेवा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा. लीड बैंक प्रबंधक सुनील कौंडल के अनुसार अभियान के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में नामांकन पर विशेष जोर दिया जाएगा. साथ ही नए जनधन खाते खोले जाएंगे और निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय किया जाए. प्रशासन ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम नागरिकों से इन शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है. इस संबंध में बस इतना ही. नमस्कार.

FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनते हैं पहाड़ी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ी संगीत।

पहाड़ी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत सुन रहे हैं आप इस वक्त हमारे साथ एफएम शिमला पर। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको सुनवाया बोधराज वर्मा और करम चंद वर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत, आवाज़ें हैं ब्रह्मदत्त और साथियों की।

ब्रह्मदत्त और साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। कार्यक्रम के अंत में लीजिए, आप सुनिए अनीता देवी की आवाज़ में ये लोकगीत।

पहाड़ी लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

साबरी ब्रदर्स और साथियों की ये बेहतरीन पेशकश आपने सुनी फिल्म संगीत में। सबसे पहले आपको हमने सुनवाई, और आइए अब सुनते हैं एक और लवली सॉन्ग। ये सॉन्ग हमने आपके लिए चुना है बाल ब्रह्मचारी फिल्म से कविता।

फिल्म संगीत के तहत कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत हमने आपको सुनवाए और एफएम शिमला पर इस वक्त आप हैं हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। तो आइए अब आपको बता देते हैं आकाशवाणी शिमला यानी कि हमारे प्राइमरी चैनल से पेश किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी कि 9:31 पर कार्यक्रम सुरबेला के तहत आप सुनेंगे पंडित अजय पोहनकर का गायन राग विलास खानी तोड़ी मित्र पहाड़ी पर आधारित। आपका पसंदीदा ईमेल्स बेस्ड प्रोग्राम रिमझिम लेकर होंगे हम आपके साथ ठीक 10 बजे और आपको सुनवाएंगे कुछ बढ़िया बढ़िया से फिल्मी गीत आप ही की पसंद पर। 11:05 पर लोक संगीत आप सुन सकते हैं। 12:20 पर महिलाओं का खास कार्यक्रम महिला सम्मेलन पेश किया जाएगा और 1:10 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम के तहत कुछ बेहतर और कुछ बेहतरीन फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे तो सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। 2:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुनहरी किरणें। तीन बजकर 5 मिनट पर सामयिक चर्चा सुनिएगा। 4:20 से लेकर 7:05 के दरमियान विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे साथ आकाशवाणी शिमला पर। तो ये थी जानकारी आकाशवाणी शिमला से आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के शिमला, एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आप डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों

0: और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से। इस चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंडी में जागरूकता शिविर आयोजित। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 13 जून तक पूरा हो चुका है। स्वगणना की ऑनलाइन विंडो 15 जून रात 12 बजे बंद हो गई है। अब आज 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर मकान व परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, परिवार की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जानकारी देश के विकास योजनाओं के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। निदेशालय ने लोगों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय कार्य में पूरा सहयोग दें। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए घर आने वाले प्रगणक के पहचान पत्र पर लगे QR कोड को स्कैन करके उसकी पहचान जरूर जांचें। जिन लोगों ने पहले ही ऑनलाइन पोर्टल पर स्वगणना कर दी है, उन्हें प्रगणक के आने पर सिर्फ स्वगणना ID देनी होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे सेवाएं, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। धर्मशाला में कल आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश ने पहली बार गरीब कल्याण और तीव्र विकास को समानांतर रूप से आगे बढ़ते देखा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विकास और विस्तार के लिए 2,911 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मिला ये बजट पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में 27 गुना अधिक है, जिससे राज्य की रेल कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
2: तो रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर ऑन एन एवरेज कांग्रेस के शासनकाल में 108 करोड़ रुपए के आसपास का डिवोल्यूशन आता था। इस वर्ष एक बड़े प्रयास के चलते हुए सरकार ने 29,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है, ताकि रेलवे के नेटवर्क को हिमाचल में उत्कृष्ट कोटि का और विश्व स्तर का बनाया जा सके। केंद्र की सरकार ने इन 12 वर्षों में पूरे भारत के लिए और यहां हिमाचल के लिए अनेक सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
0: भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया बीते कल से शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष गेहूं के समर्थन मूल्य में 20 रुपए की बढ़ोतरी

0: उतरी कर 80 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से खरीद की जा रही है, जिससे किसानों में भारी उत्साह है। इस वर्ष कृषि विभाग ने चंबा जिला में 175 किसानों से कुल 134 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। शिमला जिला के जुब्बल में युवा मंडल मंढोल द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विशेष पहल की जा रही है, जिसके तहत यहां आयोजित ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विशेष अतिथियों सहित हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को बान और देवदार जैसे पेड़ स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किए जा रहे हैं। युवा मंडल मंढोल के अध्यक्ष बॉबी जस्टा ने बताया कि स्मृति चिन्ह के रूप में पेड़ प्राप्त करने वाले खिलाड़ी वृक्षारोपण के साथ ही इन पेड़ों की देखरेख और संरक्षण भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल से क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान लगभग 150 से अधिक पेड़ों को रोपा जा चुका है, जबकि बीते वर्ष भी युवा मंडल की पहल से लगभग 1000 से ज्यादा देवदार वृक्षों का रोपण किया गया था। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और News on AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पधर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पद्धर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में उप मंडलाधिकारी पद्धर सुरजीत सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि नशा आज समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। शिविर के दौरान प्रशिक्षुओं ने चित्रकला, स्लोगन लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीष सूद।
0: हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र की देवांशी शर्मा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। देवांशी की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है। देवांशी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर ये उपलब्धि हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता पर विभिन्न सामाजिक व क्षेत्रीय संगठनों ने शुभकामनाएं दी है। देवांशी के पिता NTPC में कार्यरत है, जबकि दादा डॉक्टर OP Sharma हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित है। प्रदेश में बीते कल मौसम के करवट बदलने से कई जिलों में बारिश हुई और वहीं ओलावृष्टि से भी विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान के समाचार है। किन्नौर जिला के निचार उपमंडल की रूपी वैली और शिमला जिला के चौपाल और रामपुर क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं इन क्षेत्रों में स्टोन फ्रूट के साथ ही मटर और अन्य नकदी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। विभाग ने 18 और 19 जून को प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, नगर निकायों में विधायकों का वोटिंग अधिकार बहाल। अमर उजाला और दिव्य हिमाचल ने खबर को एक जैसा शीर्षक दिया है। इनके शब्द है, नगर निकाय अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डाल सकेंगे विधायक। मैदानों में हुई बारिश, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और गिरे ओले, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, तापमान भी गिरा, प्रदेश में 18 जून तक खराब रहेगा मौसम। दैनिक जागरण ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को शीर्षक दिया है, CBSE स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से। इस चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू।

0: मुक्त भारत अभियान के तहत मंडी में जागरूकता शिविर आयोजित। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 PM। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी ये समाचार रिले किए गए। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
5: हर खुशी
4: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। जी हाँ, 9:30 हो गए हैं और हम जानते हैं कि आप जो हैं इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं हमारे साथ खूबसूरत हिमाचल की किसी खास जगह की सैर पर जाने के लिए। तो देखिए, हम भी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन टाइम हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए हमारा वो खास प्रोग्राम जिसका नाम है कुदरत के रंग।

तो आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपको कहाँ लेकर जाने वाले हैं ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन चलिए सफ़र को पहले थोड़ा सा म्यूज़िकल बनाया जाए और आपको सुनवाया जाए प्रोग्राम में ये लवली म्यूज़िकल नंबर।

0: I love you, I love you.
1: जी हाँ, FM शिमला पर हैं इस वक्त आप हमारे साथ और सुन रहे हैं कुदरत के रंग प्रोग्राम। जी हाँ लिसनर्स, भारत की असल खूबसूरती देखना हो तो सबसे बेहतरीन जगह हैं हिमालय की खूबसूरत चोटियां और उसके आसपास की अद्भुत जगहें। हिमालय की गोद में मौजूद कुछ जगहों पर तो साल के हर एक दिन सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झील और झरने इन जगहों को और भी अद्भुत और बेहद खूबसूरत बनाते हैं। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपको हिमालय की गोद में मौजूद एक ऐसी ही झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे टूरिस्ट और ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं कहा जाता। एक ऊंचे टापू पर मौजूद होने के चलते ये झील जो है न सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। जी हाँ, जिस झील के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो फेमस होने के साथ साथ सैलानियों को किसी जन्नत से कम नहीं लगती। और आपको हम बता दें कि इस झील को लोग जो है चांद झील के नाम से भी जानते हैं। तो हम किस झील के बारे में बात कर रहे हैं, कहां पर ये झील मौजूद है, इस बारे में थोड़ा सा आप सोचिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम में एक और प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस यूं ही रहिए हमारे साथ FM शिमला पर।

हिमाचल का चांद कही जाने वाली चंद्रताल झील के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है कुदरत के रंग। जी हाँ लिसनर्स,

चंद्रताल झील को मून लेक यानी कि चांद झील भी कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर बसी हुई है और ये उन लोगों के लिए एक बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाली जगह है जिन्हें प्रकृति और एडवेंचर पसंद है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और खुले नजारे इस जगह को और भी खास बना देते हैं। और आपको हम बताएं कि यहाँ पर शांति और खूबसूरती अपने सबसे खूबसूरत रूप में एक साथ दिखाई देती हैं। जी हाँ, हिमाचल की पवित्र झीलों में से एक मानी जाने वाली ये झील जो है काफ़ी खूबसूरत है और हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो हैं बाहर से इस झील को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहीं से हिमालय की चंद्रा नदी भी निकलती है जो कि आगे चलकर चिनाब नदी की एक सहायक नदी बनती है। आपको थोड़ा सा अचंभा होगा, लेकिन इस

हिमाचल की पवित्र झीलों में से एक मानी जाने वाली ये झील जो है काफ़ी खूबसूरत है और हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो हैं बाहर से इस झील को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहीं से हिमालय की चंद्रा नदी भी निकलती है जो कि आगे चलकर चेनाब नदी की एक सहायक नदी बनती है। आपको थोड़ा सा अचंभा होगा लेकिन इस झील से कई कहानियाँ भी जुड़ी हैं और इनमें से सबसे मशहूर कहानी ये है कि चंद्रा और भागा की जो प्रेम कहानी है वो इस जगह से जुड़ी है। चंद्रा चंद्रदेव की एक प्यारी बेटी थी और भागा सूर्यदेव का तेजस्वी बेटा। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जैसा कि हर एक प्रेम कहानी में होता है उनके माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए दोनों ने भाग जाने का फैसला लिया। जी हाँ, जहाँ ये पहली बार मिले थे यानी कि बारालाचा ला दर्रा, वहीं से भागने की इन्होंने प्लानिंग की, लेकिन वहाँ पर ये मिल नहीं पाए और किसी दूसरी जगह पर जाकर फिर मिले और वहाँ जाकर इन्होंने शादी की। आज जहाँ पर चंद्रा और भागा नदी मिलती है वहाँ चंद्रभागा नदी बहती है जो उनके मिलन की याद दिलाती है आज भी यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों को। जी हाँ, FM शिमला पर हैं इस वक्त आप हमारे साथ और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है कुदरत के रंग।

जी हाँ, हिमाचल के खूबसूरत चंद्रताल झील के बारे में आज बातें हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो आपको बता दें कि हिमालय में लगभग 40,000 से भी ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये झील जो है स्पीति और कुल्लू घाटी से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। एक टापू पर मौजूद होने की वजह से ये झील अर्ध चांद की तरह दिखाई देती है, जिसे लोग चांद झील के नाम से पुकारते हैं। इस झील का पानी इस कदर साफ है कि इसका पानी शीशे की तरह चमकता है। ये पानी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त भी है। और आपको हम बता दें कि इस झील की जो खूबसूरती है उसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। अब आपको बता दें कि आखिर किस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो जनाब, मनाली से अगर आप आ रहे हैं तो मनाली से सबसे पहले रोहतांग पास होते हुए बटाल आप पहुँचिए। बटाल से चंद्रताल झील जो है लगभग 14 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक आप जीप या फिर बाइक से आ सकते हैं। सड़क यहाँ पर जो है थोड़ी सी कच्ची है, इसलिए मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जिस भी व्हीकल से यहाँ पर आ रहे हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। काजा से अगर आप यहाँ आ रहे हैं स्पीति होते हुए, तो काजा से कुंजुम पास होते हुए बटाल आप जाइए और फिर जाइए चंद्रताल। ये रास्ता बेहद खूबसूरत है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। और अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो माय डियर लिसनर्स, बटाल से चंद्रताल तक कई लोग पैदल ट्रैक करना पसंद करते हैं। ये लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक है और नेचर्स लवर के लिए जो ये जो एक्सपीरियंस है काफ़ी शानदार है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो है भुंतर कुल्लू में। और अगर आप आना चाहते हैं ट्रेन से, तो सबसे नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो है जोगिंदरनगर। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आखिर किस तरह से आप यहाँ पर आना चाहते हैं। खूबसूरत चंद्रताल झील और हिमाचल के कई दूसरे कुदरती नज़ारे जो हैं

आपके इंतज़ार में हैं। आप आइए और इंजॉय कीजिए खूबसूरत हिमाचल की खूबसूरत हसीन वादियों के साथ साथ यहाँ का खूबसूरत मौसम भी। और फिलहाल इंजॉय कीजिए हमारे आज के इस प्रोग्राम का ये लास्ट म्यूजिकल नंबर।

0: तो लिसनर्स, प्रोग्राम कुदरत के रंग में आज बस इतना ही। एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब पेश है एफएम न्यूज हेडलाइन।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइन साथ में प्रियंका ठाकुर। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। यह जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा आंदोलन है जिसको लेकर भारत के युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। आज आकाशवाणी शिमला का स्थापना दिवस है। 1955 को आज ही के दिन आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। करीब 71 वर्षों के इस सफर में आकाशवाणी शिमला ने अपने श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक व मनोरंजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें हिमाचली संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, खेल जगत, किसान, बागवान और समाचार के अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े कई कार्यक्रम शामिल हैं जो हर वर्ग को त्वरित सूचना देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटने के लिए आयोजित किए जा रहे समाधान समारोह शेष लोक अदालत में शामिल होने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र की दीवांशी शर्मा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। देवांशी की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है। देवांशी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर यह उपलब्धि हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर विभिन्न सामाजिक व क्षेत्रीय संगठनों ने शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई। हालांकि प्रदेश में बीते कल मौसम के करवट बदलने से कई जिलों में बारिश हुई और ओलावृष्टि भी विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला इस वर्ष 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मनाया जाएगा। मेले की व्यवस्थाओं से संबंधित कार्य प्रगति बारे जिला मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। उन्होंने कहा कि मिंजर मेले में स्थानीय संस्कृति की झलक को पेश करने और हिमाचली कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मंच प्रदान

0: करने का अवसर प्रदान किया जाए। बैठक में मेले के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिताओं सहित अन्य के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस अखबार बस इतना ही, नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।
2: हर खुशी अब लगे नमी,
1: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

राग से रागिनी, गीत से संगीत और गीत संगीत से सजा है एफएम शिमला पर हमारा आज का ये सफर, जिसके तहत अब आप सुनेंगे राग छाया प्रोग्राम। जी हाँ, अभी से लेकर 11 बजे तक अपने इस प्रोग्राम के दौरान हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न राग और रागिनियों पर आधारित कुछ बेहतरीन गीत आप सुनेंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं वो कौन थी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है रजा मेहंदी अली खान ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

वो कौन थी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। ज्वेल थी फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मजरूह के बोलों को संगीत से सजाया है एस टी बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें आपने सुनी कश्मीर की गली फिल्म के इस बहुत ही प्यारे से गीत में, जिसे लिखा था SH बिहारी ने और संगीत से सजाया था OP नैयर ने।

0: सच्चा झूठा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें। कमर जलालाबादी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी।

0: दारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

उपकार फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना। FM शिमला पर इस वक्त हमारे साथ आप सुन रहे हैं राग छाया कार्यक्रम।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर

0: सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
0: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: राग छाया कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं द ट्रेन फिल्म का गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में द ट्रेन फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर के साथ मुकेश की आवाज़ में लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने आपके लिए चुना है पत्थर के सनम फिल्म से।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हाँ, कई राग और रागिनियों के संयोजन से मिलकर बनता है गीत और गीत से बनता है संगीत। और माय डियर लिसनर्स, गीत संगीत का ये जो सुहाना सफर है आप इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ अपने चहेते FM शिमला पर। तो आइए अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। अगला जो गीत है हमने आपके लिए चुना है दिल तेरा दीवाना फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का नेक्स्ट म्यूजिकल नंबर। ये सॉन्ग आपके लिए हमने चुना है जब जब फूल खिले फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी के साथ इस गीत में आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर की आवाज़।

तो कहिए जनाब, इन गीतों को सुनकर दिल कभी भर सकता है भला? आहा, मुमकिन ही नहीं है। ये गीत तो बने ही कुछ ऐसे हैं कि इन्हें जितनी बार भी सुनो, जितना भी सुनो, उतना ही ज्यादा सुनते ही चले जाने का मन करता है। और ऐसे ही कुछ दिलकश नगमे आज के अपने इस प्रोग्राम में हमने चुने हैं आपके लिए। प्रोग्राम है राग छाया।

मोहब्बत भरे दिल से महबूब जब रुखसती मांगता है तो हाले दिल कुछ यूं होता है कि वो जाए मगर फिर मिलने का वादा करके। आइए अब आपको सुनवाते हैं आज के इस सफर का ये आखिरी गीत।

तो लिसनर्स, इसी गीत के साथ आज के इस सफर से विदा लेने की हमें भी अब इजाजत दीजिए। जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रहिए FM शिमला के साथ।

मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन

0: AIR पर भी आप ये सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 13 जून तक पूरा हो चुका है। अब आज 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर मकान व परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, परिवार की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जानकारी देश के विकास योजनाओं के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। निदेशालय ने लोगों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय कार्य में पूरा सहयोग दें। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे सेवाएं, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। धर्मशाला में कल आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पहली बार देश ने गरीब कल्याण और तीव्र विकास को समानांतर रूप से आगे बढ़ते देखा है। देश सहित प्रदेश के लिए भी 12 वर्षों में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और पूर्व की सरकार की तुलना में कई गुना अधिक बजट हिमाचल के लिए आवंटित हुआ है।
3: हिमाचल के संदर्भ में हम कहें तो 4 से 14 के बीच में जो टैक्स रेवेन्यू का डिवोल्यूशन था स्टेट को, वो 12,000 कुछ करोड़ रुपए था और 14 से 26 के बीच में 76,000 करोड़ रुपए। कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर आया। बिलासपुर के एम्स के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आना, हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना, मैंने अटल टनल का पूर्व में भी उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,300 कुछ करोड़ रुपए आया, जो कि 4 से 14 के बीच में इस मद में कुछ आता ही नहीं। केंद्र की सरकार ने इन 12 वर्षों में हिमाचल के लिए अनेक सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
1: भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आज आकाशवाणी शिमला का स्थापना दिवस है। वर्ष 1955 को आज ही के दिन आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। करीब 71 वर्षों के इस सफर में आकाशवाणी शिमला ने अपने श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक व मनोरंजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें हिमाचली संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, खेल जगत, किसान बागवान और समाचार के अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े कई कार्यक्रम शामिल है, जो हर वर्ग को त्वरित सूचना देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ आकाशवाणी शिमला अपने स्थापना से लेकर अब तक हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और बोलियों के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिमला जिला के जुब्बल में युवा मंडल मंढोल द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विशेष पहल की जा रही है, जिसके तहत यहां आयोजित ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विशेष अतिथियों सहित हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को बान और देवदार जैसे पेड़ स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किए जा रहे हैं। युवा मंडल मंढोल के अध्यक्ष बॉबी जेस्टा ने बताया कि स्मृति चिन्ह के रूप में पेड़ प्राप्त करने वाले खिलाड़ी वृक्षारोपण के साथ ही इन पेड़ों की देखभाल और संरक्षण भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल से क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान लगभग 150 से अधिक पौधों को रोपा जा चुका है, जबकि बीते वर्ष भी युवक मंडल ने लगभग 1,000 से ज्यादा देवदार वृक्षों का रोपण किया था। चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया बीते कल से शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष गेहूं के समर्थन मूल्य में 20 रुपये की बढ़ोतरी कर 80 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से खरीद की जा रही है, जिससे किसानों में भारी उत्साह है। इस वर्ष कृषि विभाग ने चंबा जिला में 175 किसानों से कुल 134 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए आयोजित किए जा रहे समाधान समारोह विशेष लोक अदालत में शामिल होने के लिए

0: ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। कांगड़ा जिला के विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आर मेहुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के पक्षकारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के शिमला FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से सुन रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
3: हर खुशी अब लगे नमी,
2: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, इस फ्रिक्वेंसी पर सिलसिला जारी है गीत संगीत और मनोरंजन का। लेकर हाजिर हैं आपके लिए कुछ नायाब फिल्मी गीत पुरानी फिल्मों से।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुराने फिल्मी गीतों के इस प्रोग्राम में लीजिए अब सुनिए अगला गीत गाइड फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: पुरानी फिल्मों से इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज में।

0: हाय मेरी बाहों में।
1: इसी गीत के साथ आज पुरानी फिल्मों से इस कार्यक्रम में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
3: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
2: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
3: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
2: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
3: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं, देवदार की खुशबू और लोक संस्कृति की मिठास के साथ आपका स्वागत करते हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला पर। रिया FM शिमला पर ये समय है पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का। हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप लेंगे इस कार्यक्रम में, और हिमाचल की मिट्टी की खुशबू से भरा ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे तारावती के गाए इस लोकगीत के साथ।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। हिमाचल की खूबसूरत वादियों और यहाँ के लोगों की सादगी को बखूबी दर्शाते हैं ये लोकगीत। तो आइए सुनते हैं हिमाचली लोकधुनों से सजा एक और लोकधुन लोकगीत। इसे गाया है बलदेव सांख्यान ने।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले, सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ी संगीत। अब आपको सुनवाएंगे महेंद्रू राम का गाया ये लोकगीत।

उमा शर्मा और रजनी की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। जी हाँ, ये लोकगीत जो है वो हमारी पहचान है। हमारी रोज़मर्रा के जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं को पिरोया जाता है और बनाए जाते हैं ऐसे लोकगीत। अब आपको सुनवाएंगे धर्मपाल भारद्वाज का गाया ये लोकगीत। आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम।

0: इसी लोकगीत के साथ आज पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में बस इतना ही। 12 बजने को हैं। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र हिंदी व अंग्रेजी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एविया शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश

0: और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit on the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney,

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

चांदनी फिल्म के इस गीत के साथ आज फिल्म संगीत में बस इतना ही। 12:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: गए हैं आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। आज के सफर में हम रहेंगे आपके साथ कल्पना ठाकुर
1: और साक्षी शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: बहनों, आज का दिन आकाशवाणी शिमला के लिए और उससे जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि बहनों आज है 16 जून और आज ही के दिन आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। तो बहनों, आप सभी को और आकाशवाणी शिमला से जुड़े सभी लोगों को उसके स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी, अल्फाज की गूंज और सुरों का सिंगार है, घर तक पहुंचता ये सदियों का प्यार है। बहुजन हिताए बहुजन सुखाए का ध्येय लिए आकाशवाणी ही तो धड़कता हुआ संसार है। तो आप सभी को शुभ स्थापना दिवस।
1: जी हाँ बहनों, आकाशवाणी शिमला केंद्र हिमाचल प्रदेश के लोगों को समाचार, शिक्षा और मनोरंजन के साथ साथ स्थानीय संस्कृति से भी कहीं ना कहीं जोड़े रखता है और उससे जुड़े जो कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये स्टेशन मुख्य रूप से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर संचालित होता है। हिमाचल में जो शिमला रेडियो स्टेशन की स्थापना 16 जून 1955 में की गई थी।
0: जी बिल्कुल बहनों, और इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के लोगों को मनोरंजन, समाचार और शिक्षा प्रदान करना था। ये स्टेशन आकाशवाणी के अंतर्गत आता है। पहले शिमला रेडियो स्टेशन की शुरुआत में केवल एक ट्रांसमीटर था जो 1 वाट पावर का था। इस ट्रांसमीटर से केवल शिमला और आसपास के क्षेत्रों में ही कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सकता था, लेकिन बाद में इस स्टेशन में और ट्रांसमीटर लगाए गए बहनों, जिससे कार्यक्रमों का प्रसारण हिमाचल प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रों में सुना जाने लगा।
1: बिल्कुल सही बात बहनों, और अगर आज की बात करें तो बहनों, आकाशवाणी शिमला से विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिनमें समाचार, संगीत, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम जिसमें बाल सभा विशेष है, महिलाओं का कार्यक्रम यानी कि महिला सम्मेलन, और बागवान और किसान भाइयों के लिए कृषि जगत, सुनहरी किरणें, सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम शामिल हैं।
0: जी, और बहनों, आकाशवाणी शिमला स्टेशन हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि अब अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संचार का माध्यम बन चुका है। ये स्टेशन लोगों को सूचना, मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करता है।
1: जी हाँ, और देखिए कल्पना जी, एक समय था जब जो हमारा घर घर में रेडियो ही मनोरंजन का साधन था।
0: जी,
1: सुबह के भक्ति गीत से हमारे दिन की शुरुआत होती थी, दोपहर के कार्यक्रम और शाम के प्रादेशिक समाचार सभी की दिनचर्या के हिस्सा हुआ करते थे, और कब पूरा दिन बीत जाता था पता ही नहीं चलता था।
0: बिल्कुल, लेकिन साक्षी, आज के समय में भी आकाशवाणी केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि जानकारी और सूचना पहुंचाने का काम भी कर रहा है। आपातकाल की स्थिति में भी आकाशवाणी शिमला ने प्रमुख भूमिका निभाई है। हर क्षेत्र से संबंधित जानकारी हिमाचल प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने में भी आकाशवाणी शिमला का ये स्टेशन पीछे नहीं रहा है।
1: जी बिल्कुल, समय के साथ तकनीक बदली, टीवी आया, इंटरनेट आया, मोबाइल फ़ोन आए और सोशल मीडिया ने भी अपनी उपस्थिति दी है, लेकिन फिर भी सही और संपूर्ण जानकारी और मनोरंजन के लिए भी शिमला रेडियो स्टेशन अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है।
0: जी, और बहनों, हमारा और आपका ये जो अनदेखा रिश्ता है ना, और इतना गहरा रिश्ता है, ये तभी बरकरार रहेगा जब आप और हम सभी मिल करके इस आकाशवाणी शिमला के लिए कार्य करेंगे। आप करेंगे कार्य आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनकर, और हम बेहतरीन कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ही कल्पना जी, देखिए आकाशवाणी समय के साथ चला भी है। जैसे ही इंटरनेट का ज़माना आया है तो जो हमारा आकाशवाणी है उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अब सभी श्रोता हमारे कार्यक्रम AIR शिमला में डिजिटल ब्रॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं। फेसबुक पेज को फॉलो करके सजीव कार्यक्रम सुन व देख सकते हैं। आकाशवाणी शिमला फेसबुक पेज फॉलो करने पर आप गीत संगीत वाले कार्यक्रम, समाचार, महिला सम्मेलन कार्यक्रम पुनः सुन और देख सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो बहनों, आप यूं ही आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही हमसे जुड़े रहिए। आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में हर आयु वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। जी हाँ, हम बात करेंगे कैसे योग और ध्यान हमारे भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य का आधार है।
1: जी बिल्कुल। देखिए बहनों, आज की तेज़ रफ्तार भरी ज़िंदगी में अधिकांश लोग तनाव, चिंता, अवसाद, क्रोध, अकेलेपन और मानसिक दबाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, ये महसूस किया होगा।
0: जी
1: फिर चाहे प्रतिस्पर्धा हो, कार्यभार हो, सामाजिक अपेक्षाएं और बदलती जीवन शैली का प्रभाव है हमारे मन और भावनाओं पर पड़ ही जाता है। ऐसे समय में योग और ध्यान हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने की शक्ति प्रदान करते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं होता, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना भी है। यदि मन अशांत हो तो जीवन की खुशियां भी फीकी पड़ जाती हैं।
1: जी
0: इसलिए जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य है, उसका ख्याल रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का।
1: और योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है बहनों, ये हम और आप सभी जानते हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर किसी के लिए लाभदायक होती है। नियमित योगाभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच का विकास होता है।
0: जी हाँ, इसी प्रकार ध्यान या मेडिटेशन मन को एकाग्र और स्थिर करने की कला है। जब हम कुछ समय के लिए अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करते हैं, तब मन की जो चंचलता होती है वो थोड़ी कम होती है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है, और ये सब हमें मिलता है ध्यान से।
1: जी, और आज के समय में ये तो देखिए सिद्ध हो ही चुका है बहनों कि नियमित योग और ध्यान हमारे तनाव के हार्मोन के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। इससे चिंता, घबराहट और मानसिक दबाव में कमी आती है। व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी, शांत और संतुलित महसूस करता है। और बहनों, ध्यान का अभ्यास भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने में भी मदद करता है।
0: श्रोताओं, भावनात्मक जो स्वास्थ्य है, उसका अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। जब हम क्रोध, निराशा या तनाव से घिर जाते हैं तो हमारा निर्णय लेने का सामर्थ्य प्रभावित हो सकता है। योग और ध्यान हमारी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, बल्कि उनके प्रति सजगता विकसित करना सिखाते हैं। इससे परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से उत्तर देना हम सीखते हैं।
1: बिल्कुल साक्षी। और देखिए, योग में प्राणायाम का तो विशेष महत्व है। गहरी और नियंत्रित श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। फिर देखिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और नाड़ी शोधन जैसे जो ये प्राणायाम है ना, वो हमारी मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देते हैं।
0: जी
1: कुछ मिनटों का नियमित अभ्यास भी मन को स्थिर और प्रसन्न बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इसलिए बहनों, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने में कोई भी लापरवाही ना करें।
0: जी हाँ बिल्कुल। और जो बच्चे और युवा हैं, उनके लिए भी जो योग और ध्यान है वो अत्यंत लाभकारी हैं। ये उनकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है।
1: जी
0: परीक्षा के समय बच्चे कितने तनाव में आ जाते हैं, और उस समय जो योग और ध्यान होता है वो परीक्षा के तनाव को कम करने और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को भी योग और ध्यान करने की आदत लग सके।
1: जी और देखिए, बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए भी योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन जो है उन्हें मिल सकता है। और ये अकेलेपन की भावना को कम करने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है। इसलिए मैंने योग और ध्यान का अभ्यास करने के लिए किसी विशेष स्थान या फिर उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिदिन सुबह शाम कुछ समय निकाल कर शांत वातावरण में बैठना और नियमित अभ्यास करना ही पर्याप्त है। और साथ ही साथ बहनों, कुछ योग क्रियाएं इस तरह की होती है जिसके लिए आपको कोई योग जानने वाले विशेषज्ञ से जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक होता है। उनकी निगरानी में वो योग क्रियाएं करनी होती है जो

0: तो सिंपल योगा अभ्यास है वो आप कर सकते हैं स्वयं भी। इसलिए कुछ एक योग क्रियाओं के लिए आप किसी योग जानकार के सलाह ज़रूर लें।
1: जी हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ही श्रोताओं ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि योग का सबसे बड़ा मंत्र है निरंतरता।
0: जी
1: बहनों हमें आशा है कि आप भी अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान को स्थान देंगी। कुछ मिनटों का ये निवेश हम सभी को तनाव मुक्त, सकारात्मक और संतुलित जीवन की ओर ले जा सकता है। स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव है। इसे याद रखकर आप भी योग कीजिए, घर वालों को भी योग करवाएं और खासकर बच्चों और बुजुर्गों को योग अवश्य करवाएं।
0: जी, और साक्षी देखिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गीत संगीत भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आप और हम और हमारी बहनें गीत सुनते हैं और उनको सुनवाते हैं।

0: बहनों, फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण और देखभाल देना है, साथ ही शिशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे ये भी सुनिश्चित करना है।
1: जी, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक मातृत्व लाभ योजना है। ये योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई थी ताकि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सके।
0: और बहनों, इस योजना का उद्देश्य गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद देकर माँ और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके अलावा महिलाओं को उचित आहार और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक कर देश में कुपोषण की दर को कम करना भी है। मेहनत मजदूरी कर घर चलाने में मदद करने वाली महिलाओं को प्रसव के दौरान उचित आराम मिल सके और उन्हें पैसों की चिंता ना करनी पड़े, इसकी भी कोशिश इस योजना के जरिए की गई है।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा 2 किश्तों में आता है। अगर दूसरी बार गर्भवती होने पर महिला बेटी को जन्म देती है तो 1 मुश्त 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि ये पैसा बेटी के जन्म पर ही मिलता है।
0: जी बहनों, और अब बात करते हैं पात्रता की, तो गर्भवती महिला की उम्र कम से कम 19 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। गर्भवती महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। महिला के पास मनरेगा कार्ड हो या किसान सम्मान निधि के तहत महिला किसान को लाभ मिल रहा हो। महिला के पास ई श्रम कार्ड या फिर BPL कार्ड हो। महिला दिव्यांगजन हो इस योजना के पात्र है। इसके अलावा जो गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं सरकारी नौकरी में और जिन महिलाओं को किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ मिल रहा हो, वो महिलाएं योजना का लाभ नहीं ले सकती है।
1: जी हाँ बहनों, इस योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड, गर्भावस्था प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और पति का आधार कार्ड ज़रूरी है। इसके साथ आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लगानी पड़ेगी।
0: जी, और प्रधानमंत्री की मातृ वंदना योजना का आवेदन फॉर्म आपके नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आशा वर्कर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती है। रजिस्ट्रेशन के दौरान महिला को अपना आधार नंबर व बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी।
1: जी हाँ बहनों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की देखभाल करना, बच्चों को कुपोषित होने से बचाना और शिशु मृत्यु दर को कम करना, यही इसका उद्देश्य है।
0: जी, तो बहनों, अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, आप भी इसके लिए पात्र हैं, तो आप ज़रूर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती है और इसका लाभ उठा सकती है। और बहनों, अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, जिसके अनुसार एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता जो है कराई जाती है, विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध करवाना,
1: मदरसा शिक्षा आधुनिकरण करना, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना, गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना चलाना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन करना।
0: जी, और आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता देना, राज्य एवं केंद्र सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण

0: आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार लाना,
1: सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम करना, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन करना और सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित लोगों का पुनर्वास करना शामिल है।
0: जी तो बहनों, अगर आप अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के जो ये 15 सूत्री कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसके अंतर्गत आते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ज़रूर उठाएं। तो अब बहनों को सुनवाते हैं एक गीत।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: ये कुछ राहत मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे ये आदत का रूप ले लेती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संबंध इससे बुरी तरह से प्रभावित होने लगते हैं।
1: जी बिल्कुल। और बहनों देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नशीले पदार्थों का सेवन कई तरह की गंभीर बीमारियों का कारण बन जाता है। शराब और तंबाकू से कई तरह की बीमारियां हो जाती है और इससे मानसिक विकार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और बहनों, वहीं मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति को अवसाद, चिंता, हिंसक व्यवहार और यहाँ तक कि अपराध करने के लिए भी मजबूर कर देता है। इसलिए बहनों, नशा सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके पूरे जीवन में आने वाले व्यक्तियों, लोगों को भी प्रभावित करता है।
0: जी हाँ बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी घरों में यदि क्लेश की कोई मुख्य वजह है तो वो है नशा। इससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। समाज में जो अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं नशे का बहुत बड़ा योगदान है। और नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, ये हमें जरूर जानना होगा।
1: जी बिल्कुल। तो आप नशे से बच सकते हैं। नशे से बचाव का सबसे जो प्रभावी तरीका है वो स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है। नियमित व्यायाम, खेलकूद, योग, ध्यान, संगीत, पठन पाठन और रचनात्मक गतिविधियां करना बहुत ही आवश्यक है, जो युवाओं को, बच्चों को सही दिशा की तरफ ले जाता है। इसके अलावा बहनों, माता पिता और शिक्षकों को भी जो है अपनी अहम भूमिका इसमें निभानी होगी। अगर बच्चे और युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलेगा और आप उनके साथ खुलकर के बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर वे इस दिशा की तरफ जाने से बचे रहेंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ ही बहनों, आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि जो दोस्त आपको नशे की ओर धकेलता है वो दुश्मन से बदतर है। ये
1: जी
0: बात बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझानी पड़ेगी और बच्चों को इस बात के लिए बहुत ही अपने साथ आपको कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि वो खुलकर अपनी जो बातें हैं आपको बता सके। यदि उनके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो रही है, उनको कोई परेशान कर रहा है इस लत के लिए, तो वो खुलकर आपके सामने अपनी बात बता सके। इतना दोस्ताना व्यवहार आपको अपने बच्चों के साथ रखना पड़ेगा।
1: जी इसलिए बहनों, एक स्वस्थ और नियमित जो हमारा जो शरीर सही रहे उसके लिए बहुत ज़रूरी है नशे से दूर रहना। और जब हमारा युवा वर्ग नशे से दूर रहेगा तो वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएगा, राष्ट्र निर्माण में वो लगाएगा। इसलिए बहनों, आइए हम सभी संकल्प लेते हैं कि स्वयं भी नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे कि वे भी नशे से दूर रहे। और नशा जीवन को अंधकार की तरफ ले जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जबकि जागरूकता और सकारात्मक विचार और जो अच्छी सोच है वो सही सफलता की तरफ हमें बढ़ाती है, उसकी राह दिखाती है।

0: महिला सम्मेलन, जी हाँ, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। दोपहर के 1 बजने को है। हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार

0: सातवीं भागीदारी है।
1: जी सात देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि जी सात देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, इसी के साथ आगाज करते हैं आज के लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो शिमला का। 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो शिमला। हमारे फ़ोन नंबर हैं 280-8034-280-8152। 01 77 STD कोड लगाइए और सुनिए अपनी पसंद के गीत अपनी पसंद की फिल्म से। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप और आइए आगाज करते हैं हमारे पहले कॉलर के इस कॉल के साथ कार्यक्रम का। हेलो
1: मैडम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो शिमला, अपना परिचय दीजिए।
1: मैडम, जिला लुधियाना, मुल्लापुर दाखा मंडी पंजाब से राजेश जैन बिट्टू बोल रहा जी।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैडम, हमारा एम्ब्रॉयडरी का काम है
0: जी। तो बताइए, इन दिनों पंजाब का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत गर्म है जी, गर्मी है
0: जी।
1: धान की बुआई हो रही है
0: जी,
1: तो मौसम कभी बारिश हो जाती है कभी अंधेरी आ जाती है, ऐसे ही चल रहा है मौसम
0: जी। तो बताइए, आज कार्यक्रम में कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: फिल्म है जी दिल वाले, जी दादा जिसके लिए, जिसके लिए माता था
0: जी। तो आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं दिलवाले फिल्म का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी।

0: स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं हेलो शिमला लाइव फोन इन प्रोग्राम। आइए जानते हैं अगले कॉलर के बारे में। हेलो,
3: नमस्कार मैडम। छत्तीसगढ़ से आपको
2: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
3: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ मौसम गजब का मौसम किया है मैडम, किया है। पिछले वक्त थोड़ी देर बाद बादल कर देता है मैडम, और सूर्य भगवान बादल में छिप जाते हैं
2: जी,
3: फिर सब उगाते हैं, धूप तेज हो जाता है, उमस गर्मी बढ़ जाता है मैडम
2: जी। तो बताइए इतने अच्छे और मौसम में आप क्या कर रहे हैं इन दिनों?
3: अभी तो मैं घर पे हूँ मैडम, और घर का जो भी काम कर रहा था और इसके बाद लिखा हुआ था आपका सर्कल में, लाइफ में क्या बोलते फोन किया लाइफ वाला फोनिंग कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको आकाशवाणी स्थापना दिवस की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं
2: जी। धन्यवाद, और आपको भी इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जैसे जो हमारे श्रोता हैं, जो हमें सुनते हैं, हमें सराहते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उन सभी को भी आकाशवाणी स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बताइए आज जी,
3: नवे वर्ष के पूरे होने पर आकाशवाणी से जानकारी मिलता है, मनोरंजन होता है और बहुत अच्छा जानकारी मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद
2: जी। तारीफ के लिए आपका शुक्रिया। तो बताइए आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
3: फिल्म का नाम है सर, गीत ये बोल है सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सानू। सबसे पहले गीत आपको कहने दिलचस्प, आपको आकाशवाणी शिमला में जुड़े सभी लोगों को
2: जी,
3: आपके परिवार जन को, रिश्तेदारों को, आकाशवाणी शिमला एफएम में जुड़े सभी दूसरे भाई बहनों को, कर्मचारी को, हाल श्रोताओं को, पूरे भारत श्रोताओं को जुड़े पहुंचाने के लिए
2: जी। तो आइए हम सभी मिलकर सुनेंगे ये गीत, लेकिन इससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
4: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार,
5: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान,
6: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
5: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप श्रोताओं। आकाशवाणी के स्थापना दिवस के अवसर पर आइए सुनते हैं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के क्लस्टर हेड हिमाचल प्रदेश उप महानिदेशक श्री कश्मीर सिंह का ये संदेश।
1: हमारे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। जैसा कि श्रोताओं आप सभी को पता है कि आज आकाशवाणी शिमला ने अपने 71 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, यानी कि 16 जून जो है वो आकाशवाणी शिमला का स्थापना दिवस है। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आकाशवाणी का जो आदर्श है या जो ध्येय है वो रहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस आदर्श के माध्यम से आकाशवाणी ने 71 वर्षों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अथक प्रयासों से कार्य किया है और श्रोताओं को विश्वसनीय और सशक्त तरीके से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। आकाशवाणी ने हिमाचल की लोक संस्कृति को संजोए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके अभिन्न अंग यहाँ की जो है वो लोक संगीत, विभिन्न बोलियां, किसानों से संबंधित प्रोग्राम या विज्ञान के क्षेत्र में भी जो सूचना है वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, आकाशवाणी ने युवाओं को भी युववाणी कार्यक्रम के माध्यम से एक तरह का मंच प्रदान करने की भरपूर कोशिश की है। इन 71 सालों में आकाशवाणी ने तकनीक के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें जो है या बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है वो देखी हैं। जैसा कि आप श्रोताओं को ज्ञात होगा ही कि सबसे पहले जो है हमारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो टेप्स के माध्यम से हुआ करती थी, उससे पहले जो है ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पे हुआ करती थी। धीरे धीरे जो है ये आयाम बदलते गए और नई तकनीक आने के कारण आज के समय में हम लोग जो है डीटीएच के माध्यम से या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी लोगों तक सुने जा सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार जो है वो इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह के इन तकनीक के माध्यमों से इस क्षेत्र के बाहर भी जो है वो सुना जा सकता है। इन सबके साथ जो है प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया गया है, जिसमें भी आकाशवाणी के प्रोग्राम्स जो है वो सुने जा सकते हैं। इतना ही नहीं कि बहुत कम समय में जो है वो जितने भी आपके प्रोग्राम है वो सर्वर के माध्यम से उनकी जो पुनः प्राप्ति है यानी कि रिट्रीवल सिस्टम है उसको भी बहुत जल्दी प्राप्त करके जो है श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। और इसी कड़ी में सिर्फ श्रोताओं को रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स ही नहीं बल्कि श्रोताओं के साथ जो है कुछ एक कार्यक्रमों के माध्यम से सीधी बात भी होती है, जिसको हम लाइव फोन इन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जैसा कि सभी श्रोताओं को पता ही होगा। श्रोताओं, इतने वर्षों में आपने आकाशवाणी परिवार पे अपना विश्वास बनाए रखा है और जिस विश्वसनीयता के साथ हमने एक सशक्त माध्यम जो है और स्टीक माध्यम जो है वो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आपको पहुंचाया है, वो विश्वास आप आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे और अपनी फीडबैक जो है आकाशवाणी को समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम्स को या अपने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में जो भी हम कार्य करते हैं उसको और सुधार कर सकें और उसकी तरफ हम अग्रसर रह सकें। आपकी विश्वसनीयता हमें अपने कार्य के प्रति अपनी रुचि को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ आप सभी को एक बार 71 वर्ष पूर्ण करने पर दोबारा से शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत सादर नमस्कार, धन्यवाद।
0: अभी आपने सुना ये संदेश। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो शिमला। आइए जानते हैं हमारे कॉलर के बारे में। हेलो,
2: हेलो रुचि मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो शिमला लाइव फोन इन प्रोग्राम है, अपना परिचय दीजिए।
2: मैडम, मैं सुखबीर सिंह बात कर रहा हूँ जी, गाँव साजरी संगरूर पंजाब से।
0: क्या करते हैं आप?
2: हम मैं भी गाँव में काम करते हैं, कभी शहर में भी चले जाते हैं काम करने, मिस्त्रियों के साथ जाते हैं
0: जी। तो बताइए, और हमारे प्रोग्राम सुनते हैं?
2: हाँ जी, ज्यादा सुनता हूँ मैं सुनना
0: जी। तो
2: एक सोगा आता है ना जो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, वो भी अच्छा लगता है मुझे
0: जी। तारीफ के लिए शुक्रिया, तारीफ के लिए शुक्रिया। बताइए आज कार्यक्रम में कौन सी फिल्म के गीत सुनेंगे?
2: बाकी मैंने आपकी सभी आरजियों की आवाजें बहुत स्वीट हैं जी, बहुत मीठी और प्यारी हैं।
0: धन्यवाद जी, अपनी फरमाइश बताइए।
2: गुंडा राज का लगा देना मैम
0: जी। तो आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं इनकी फरमाइश पर गुंडा राज फिल्म से ये गीत।

0: 103.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप और एफएम शिमला पर ये समय है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो शिमला का। तो आइए जानते हैं हमारे कॉलर के बारे में। हेलो
1: मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो शिमला, अपना परिचय दीजिए।
1: चकला बाजार फमाना शहर जिला पटियाला पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल जी।
0: जी क्या करते हैं पप्पू जी?
1: मैडम जी हम खाना सप्लाई करते हैं फैक्ट्रियों में, दुकानों में, घरों में, टिफिन सर्विस जी।
0: तो क्या कुछ खास है इन गर्मियों के दिनों में आपके टिफिन में?
1: जी आजकल तो कुछ खास नहीं, सर्दी में
0: जी
1: होता है मक्की की रोटी और सरों का साग
0: जी। तो
1: आजकल तो वही है मैडम जी, गर्मी के दिनों में नहीं ज्यादा बनता जी।
0: जी तो बताइए गर्मियों में हमें क्या कुछ जो है वो आप
1: जी, गर्मियों के दिनों में हमें नींबू पानी
0: जी
1: और शकंजवी का इस्तेमाल करना चाहिए और तरबूज ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए
0: जी। जी
1: सेहत के लिए अच्छा रहता है और पक्षियों के लिए दाना पानी, रोटी के टुकड़े और पानी के बर्तन हर वक्त भर कर रखने चाहिए, वो भी हम अपने जैसे ही होते हैं जी।
0: जी जी बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। आप बताइए आप कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: मैडम जी हमारी बहुत सुंदर पत्नियां संगीता रानी जिंदल चकला बाजार समाना से गाना सुनवा दो अमृत फिल्म का, जिंदगी क्या है एक लतीफा है। हम आपका आकाशवाणी शिमला पर गुलाब के फूलों के साथ पूरा धन्यवाद करते हैं जी।
0: जी
2: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
3: अच्छा दादा।
2: हाँ तो बच्चों

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे

0: एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं। उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं हेलो शिमला लाइव फोन इन प्रोग्राम। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
3: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
7: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
6: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
7: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
6: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
7: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर के बारे में। हेलो हेलो
8: कार्यक्रम मैडम जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी कार्यक्रम हेलो शिमला, अपना परिचय दीजिए।
8: मैडम जी, मैं सुखदेव कुमार प्रजापति, अबोर, जिला फाजिल का, पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
1: जी क्या

0: करते हैं आप?
1: मैडम जी, मैं सिलाई का काम करता हूँ जी।
0: जी, किस तरह की सिलाई करते हैं, लेडीज
1: मैडम
0: जेंट्स?
1: जी, जेंट्स जेंट्स काम करता हूँ जी मैं।
0: जी
1: जी
0: जी तो बताइए, आज कार्यक्रम में कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: मैडम जी, फिल्म है जी सौदागर, उसका गाना जी तेरा मेरा साथ रहे।
0: जी, तो आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं सौदागर फिल्म का ये गीत।

0: 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप श्रोताओं। आकाशवाणी के स्थापना दिवस के अवसर पर आइए सुनते हैं आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख श्री अनिल वर्मा जी का संदेश।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज आकाशवाणी ने अपने 71 वर्ष पूरे कर लिए हैं और हमें बड़ा गर्व है कि आप श्रोताओं ने हमारे को अवसर दिया आपके साथ हमारे को अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने का। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन में अपनी पूरी सहभागिता निभाता है और ये प्रयास रहता है कि हम अपने श्रोताओं को जन जन तक पहुँचने की एक प्रयास करें और उनको अवगत करवाएं कि यहाँ पे पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान दें और मनोरंजन के साथ हम आपको ये सारा ज्ञान दें। आकाशवाणी की विश्वसनीयता तो बनी ही है लेकिन आकाशवाणी का ये भी प्रयास रहता है कि यहाँ का हिमाचल का लोक संस्कृति, यहाँ का लोक संगीत, ये भी हम अपने यहाँ पे प्रिजर्व करें और लोगों तक इसको पहुँचाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता हो कि हमारे प्रदेश की लोक संस्कृति क्या रही है, यहाँ का लोक संगीत कैसा रहा है, कौन से अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने लोक कलाकारों

0: का जो हमारे पास समय समय पर आके अपनी जो पूरी नॉलेज है वो शेयर करते हैं। आकाशवाणी आप तक पहुंचता भी है, ओबी के द्वारा हम अपने जाके कार्यक्रमों को हम कवर भी करते हैं, और ये इसलिए करा जाता है कि लोगों को पता हो कि पूरे प्रदेश में क्या गतिविधियां हो रही हैं। यही नहीं, 12 जिलों के यहाँ पे बोलियों के कार्यक्रम जो हैं हमारी 12 बोलियों में प्रसारित किए जाते हैं। उन बोलियों के कार्यक्रम में ना ही केवल समाचार सूचना, केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में हम आपको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हमने युवाओं के लिए कार्यक्रम जो हमारा युवाणी प्रसारित होता है उसमें युवाओं को जोड़ा जाता है और उनको ये एक मौका मिलता है कि वो अपनी बात रख सकें और आज जो प्रदेश और देश में जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें अपने विचार साझा कर सकें। यही नहीं, हमारे केंद्र से सैनिकों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, कानून की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, और जो हमारे दो चैनल हैं यहाँ पे, एक तो हमारा प्राइमरी चैनल है मीडियम वेव और दूसरा हमारा एफएम चैनल है, इन दोनों पे अलग अलग कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इन 71 वर्षों के सफर में हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जन जन से जुड़े। पहले एक वो अवसर होता था जब हमारे साथ श्रोता पत्रों के द्वारा अपने विचार साझा करते थे और अपनी हमारे को फरमाइश भेजा करते थे, लेकिन आज समय आ गया है कि हम मेल द्वारा या लाइव फोन इन कार्यक्रमों के द्वारा हम आपके साथ सीधा जुड़ते हैं, आपसे विचार साझा करते हैं और उन कार्यक्रमों को उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का भी हम प्रयास करते हैं जो हमें आपके सुझाव मिलते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उनके बारे में भी लिखें, और यदि आपके कोई सुझाव हैं कि हम कार्यक्रम में क्या कर सकते हैं इसमें या आपकी, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं या आपकी जो लगता है कि हमारे को ये कार्यक्रमों में कैसे सुधार किया जा सके, वो विचार हमारे से साझा करें। हम प्रयास करेंगे कि अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ा सकें। अब आकाशवाणी ने इन 71 वर्षों में अपने आप को डिजिटली भी बहुत स्ट्रांग किया है। हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम जैसे मैंने कहा वो तो है ही है, लेकिन हमारा एक मोबाइल ऐप है आकाशवाणी का न्यूज ऑन AIR, अगर आप उसको गूगल प्ले में जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आकाशवाणी के विभिन्न चैनल आपको मिलेंगे और उसमें आप आकाशवाणी शिमला का प्राइमरी चैनल, आकाशवाणी का एफएम चैनल, हमारा प्रदेश का हमीरपुर चैनल और धर्मशाला चैनल भी अगर आप सुनना चाहें तो आप उसको ट्यून कर सकते हैं। और सिर्फ आपको इंटरनेट की सुविधा चाहिए, आप कहीं भी हों इस कोने में, धरती के किसी भी कोने में, आप आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। मैं आपसे एक और चीज साझा करना चाहूंगा कि आकाशवाणी शिमला ने हाल में ही अपना एक फेसबुक पेज आकाशवाणी शिमला के नाम से शुरू किया है। उसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपने श्रोताओं को, अपने जो हमारे इंटरनेट के यूजर हैं उनको ये बताया जा सके कि हमारे कौन से कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। आप उस पेज को देखिए, उसको आप लाइक करिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। इन 71 वर्षों के सफर में ये आप श्रोताओं का ही का जो विश्वास है वो रहा है, हमारे को ऊर्जा मिलती है इस पे आपके साथ, आपके जब विचार मिलते हैं कि अपने कार्यक्रमों में हम सुधार कर सकें, उनकी गुणवत्ता बढ़ा सकें और आपके साथ हम अपने जो कार्यक्रम हैं उनको अच्छा कर सकें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दोनों हमारे चैनल्स को सुनिए और इन 71 वर्षों की पूर्ण होने पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: अभी आपने सुना ये संदेश 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं। आप सुन रहे हैं हेलो शिमला लाइव फोन इन प्रोग्राम। हेलो,
2: हेलो मैम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो शिमला अपने बारे में बताइए। जी
2: मैम, आपको भी कटाचार की जो मुबारक है जी।
1: जी
2: अपने शिमला को।
1: जी धन्यवाद, आप अपना परिचय दीजिए।
2: तो साल से जुड़े हैं मैम
1: जी,
2: 30 साल से हम तो जुड़े हुए हैं रेडियो से।
1: जी आपका परिचय जानना चाहेंगे हम।
2: हाँ, हम तो लुधियाने से बोल रहे हैं जी, कुलदीप सिंह
1: जी। क्या करते हैं आप?
2: हम खेती बाड़ी करते हैं मैम।
1: तो क्या कुछ
2: बहुत बढ़िया पेश करते हैं
1: जी।
2: शनिवार को जो एक दोस्त आया था वो हम कॉल ही काट, बहुत कॉल काटता था
1: जी।
2: कॉल मत काटा करिए, बहुत मुश्किल से कॉल लगता है
1: जी। आपकी बात को हम अपने जो है आगे पहुंचाएंगे। आप बताइए इन दिनों आपने क्या कुछ अपने खेतों में उगा रखा है?
2: मैम मक्की बीजा है जी, मक्की काट कर फिर धान लगाएंगे जी।
1: जी
2: हाँ जी
1: जी,
2: तो मक्की बेच देंगे हरा चारा
1: जी। तो बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
2: मैम आप प्रोग्राम बहुत बढ़िया पेश कर रहे हैं, आपको परमात्मा बहुत बहुत तरक्की करे।
1: तारीफ के लिए शुक्रिया, अपना अपनी फरमाइश बताइए।
2: बादल मूवी का कोई गाना लगा रहा मैम
1: जी। आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं बादल फिल्म का ये गीत।

बादल फिल्म के इस गीत के साथ आज हेलो शिमला लाइव फोन इन प्रोग्राम में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 2 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर यह समय रहता है गीतों के कुछ चुनिंदा रंग कार्यक्रम सब रंग का। जी हाँ, सब रंग का आगाज करेंगे आज हम गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ।

107.7 MHz आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं। आप सुन रहे हैं सब रंग कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं नुसरत फतेह अली खां की गाई ये कवाली।

नुसरत फ़तेह अली खां की इस कवाली के साथ आज सबरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। 2:15 होने को हैं। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र दोपहर हिंदी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल।

0: होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश है जो अपने वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफ़ी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी

0: की नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
1: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं।

0: ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: शिमला के साथ हैं स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, जिसे लेकर मैं हाजिर हूं दिशा। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने अपने खेल के मैदान में अपनी मेहनत से एक महारत हासिल की होती है। आज भी हम ऐसे ही एक खिलाड़ी से बातचीत करने वाले हैं जिनका नाम है पुनीत और ये ताइक्वांडो के राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी हैं। पुनीत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: थैंक यू मैम।
0: सबसे पहले तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर आपका बचपन बीता है, और अभी अगर वर्तमान की हम बात करें तो अभी आप क्या करते हैं?
1: मैं शिमला के आईजीडी पंचायत से बिलोंग करता हूँ और मैं वर्तमान में शिमला पुलिस में कार्यरत हूँ। JDDSP ट्रैफिक के पद पर हूँ, बीइंग अ कांस्टेबल शिमला पुलिस में काम कर रहा हूँ।
0: देखिए, अभी हमने आपके परिचय में ही बताया है कि आप ताइक्वांडो के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, तो अगर हम ताइक्वांडो की एक डेफिनेशन जानना चाहें, क्योंकि देखिए बॉक्सिंग सुना है सबने, लेकिन जो ताइक्वांडो है ये अब एक न्यू गेम है, तो क्या एक प्रॉपर हम अगर डेफिनेशन जानना चाहें तो क्या है ताइक्वांडो, किस तरह का खेल है ये?
1: देखिए, ताइक्वांडो बेसिकली ताइक्वांडो है, मींस हैंड एंड फीट टेक्निक्स यूजिंग फॉर वॉरफेयर, या लड़ाई के लिए जो हम हाथ और पैरों का यूज़ करते हैं वो ताइक्वांडो है। बेसिकली ये साउथ कोरिया से स्टार्ट हुआ था, जब साउथ कोरिया में तीन राज्यों का शासन था, उसमें एक ग्रुप था, वॉरफेयर ग्रुप था, जिसका नाम

0: ताहरंग, तो वो ताई क्योन और सुबुक जैसे मार्शल आर्ट्स का प्रयोग करते हैं। वो बेसिकली उनकी एजिलिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ काफ़ी बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा होती थी। ड्यूरिंग जब जापान ने इन्वेड किया और उनको कब्ज़ा किया, उसके बाद वहाँ पे सारे बंद हो गए इंस्टीट्यूट जो पुराने मार्शल आर्ट्स सिखाते थे। लेकिन उसके बाद आफ्टर जब फ्रीडम, तो उनके जो आर्मी के चीफ थे उन्होंने ऑफिशियली इस गेम का नाम ताइक्वांडो रखा और उसके बाद इसकी जर्नी स्टार्ट हुई।
1: देखिए, अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में आपने हमें बताया कि हाँ कहाँ से जो है
0: जी
1: ताइक्वांडो की शुरुआत हुई थी। तो अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, हिमाचल की
0: जी
1: बात करें, तो कब से यहाँ ज़्यादा प्रचलन में आने लगा, कब से खेला जाने लगा है?
0: इंडिया में तो 1973 1974 से जिमी सर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। हिमाचल में ये 1979 से स्टार्ट हुआ है। ओलंपिक की बात करें तो 1988 में ये ट्रायल के तौर पे और सन 2000 से ये सिडनी ओलंपिक से ऑफिशियली ओलंपिक गेम्स में आ गया है।
1: देखिए, अगर हम मैट पे देखेंगे ना इसे, तो हमें
0: जी
1: लगेगा कि हाँ जो बॉक्सिंग होती है, ताइक्वांडो होती है, शायद एक ही तरह, क्योंकि हमें टेक्निकली उसकी नॉलेज नहीं है। तो अगर हम श्रोताओं को आपके जरिए एक डिफरेंस बताना चाहें कि ताइक्वांडो और बॉक्सिंग में आखिर क्या डिफरेंस है?
0: बेसिकली ताइक्वांडो में आप फुल बॉडी का यूज़ करते हैं। बात यह है कि ताइक्वांडो में आप पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व रहती है। माइंड एंड बॉडी कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्सेस, स्पीड, एजिलिटी, इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है।
1: और देखिए, जैसे ये देखने से ही पता लगता है कि हाँ शायद ऐसी एक गेम है जिसमें चोट भी लग सकती है। तो कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप लोग यूज़ करते हैं चोट से बचने के लिए?
0: जी हाँ, हमारे पास फुट प्रोटेक्टर होते हैं, शिन गार्ड होते हैं, देन ट्रंक होता है मतलब चेस्ट गार्ड होता है, हैंड ग्लव्स होते हैं, आर्म गियर होते हैं, हेड गियर होता है। इनिशियली जब ये पुराने तौर में इस्तेमाल किया जाता था तो ये वॉरफेयर टेक्निक्स थी एक्चुअली, लेकिन जो अभी हम इसका रूप देख रहे हैं ये फिटनेस और स्पोर्ट्स के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। इसमें इतना ज़्यादा चोट लगने के चांसेस तो है, लेकिन बहुत, क्योंकि हम प्रोटेक्टिव हेड गियर्स यूज़ करते हैं तो
1: बिल्कुल।
0: इतना चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं।
1: इसका जो रिंग होता है सर, जिस मैट पे
0: जी
1: आप लोग
0: जी
1: खेलते हैं, क्या एक डायमेंशन रहता है उसका?
0: देखिए 8x8 का डायमेंशन रहता है और इसको हम रेक्टेंगल, स्टेट लेवल पे तो खैर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, लेकिन
1: जी।
0: जब इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे हम यूज़ करते हैं तो वो ऑक्टेगनल होता है।
1: और देखिए, इसमें ये सेम रहता है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए?
0: नियम पॉइंट वाइज, स्कोर वाइज है, वो सिमिलर होता है।
1: इसमें अगर हम फाउल्स की बात करें,
0: जी
1: क्योंकि देखिए गेम्स होते हैं उनमें कुछ रूल्स भी बने होते हैं, तो उसके अंडर कुछ फाउल्स कई बार हो जाते हैं, तो क्या-क्या फाउल्स रहते हैं और क्या-क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं इस गेम में?
0: जी सबसे पहले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं।
1: जी
0: पॉइंट्स इसमें पंच है, बॉडी पे पंच है। आप सबसे पहले तो बिलो बेल्ट आप हिट नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली आप फेस पे या अबव जो शोल्डर है उस पे आप पंच नहीं कर सकते, वो एक फाउल है। इसके अलावा अगर पॉइंट्स की बात करें, बॉडी पे पंच 1 पॉइंट है, किक 2 पॉइंट्स है, किक हम शोल्डर के ऊपर तो वो 3 पॉइंट्स है, आप टर्निंग अगर किक ले रहे हैं उसके 4 पॉइंट्स है, अगर टर्निंग किक आपकी फेस या हेड पे लगती है तो वो उसके 5 पॉइंट्स है। तो अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं सर।
1: देखिए, अभी आपने बात की थी कि वेट कैटेगरीज होती हैं इसमें, तो क्या क्या वेट कैटेगरीज रहती हैं और बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कितना डिफरेंस रहता है उसमें?
0: बॉयज और गर्ल्स में इसमें अलग अलग वेट कैटेगरीज होती है, 54 से 58, 58 से 63, 63 से 68, 68 से 74 kg, 74 से 80, 80 से 87, और हैवी वेट आता है 87 के ऊपर बॉयज में। रही बात गर्ल्स की, तो उसमें अंडर 46 है, 46 से 49 kg है, 49 से 53, 53 से 57, देन 57 से 62, 62 से 67, 67 से 73 एंड ओवर 73 हैवी वेट में जाता है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है एक संगीतमय विराम का, तो आइए मिलकर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे अपनी प्यारी आवाज में गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

0: पुनीत जी, गीत से पहले हम बात कर रहे थे वेट कैटेगरीज के बारे में।
1: तो इसके लिए देखिए, जैसे वेट आपका फिक्स रहता है कि हाँ आपको इस वेट में जो है खेलना है, तो कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान रहता है आप लोगों का कि हाँ मैं अपना ऑब्वियसली वेट तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो क्या एक डाइट प्लान रहता है?
2: जी हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा तो वाटर इनटेक रहता है, फिर आपके पास रिकवरी के लिए प्रोटीन एंड देन आपके कार्ब्स कितने लगेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट करके ही आपको खाना पड़ता है। आप जंक फूड नहीं खा सकते, आप तला हुआ नहीं खा सकते, आप अनहेल्दी या कोई भी ऐसा नहीं खा सकते जिससे वेट बढ़ जाए, या बिल्कुल ही आप ऐसा न्यूट्रिशन नहीं ले सकते कि जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो काफ़ी कैलकुलेटेड जैसा डाइट प्लान रहता है।
1: जी, आपकी अगर हम बात करें ना, तो आपने कौन सी उम्र में खेलना स्टार्ट किया था ताइक्वांडो को?
2: ताइक्वांडो मैंने पुलिस में ज्वाइन करने के बाद ही 2014 में शुरू किया था,
1: जी,
2: उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई।
1: उसके बाद आपने स्टार्ट किया जब आप जॉब में लग चुके थे। घर वालों का कैसा एक होता है ना, कई बार बोलते हैं कि ठीक है अब जॉब में लग चुके हैं, अब क्यों ये चीज़ें करनी है, उस पर ध्यान दो, कैसा एक सपोर्ट रहा है?
2: देखिए, एक शुरू से ही मार्शल आर्ट के प्रति अट्रैक्शन था, बट गांव के महापरिवेश में इतना मार्शल आर्ट का प्रचलन नहीं था।
1: बिल्कुल,
2: जब हम जॉब में आए तो उसके बाद हमने देखा कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, तो फिर जो कोच है उनके कांटेक्ट में आए, देन वी स्टार्ट लर्निंग इट सिंस 2014। तो उस समय मेरी उम्र लगभग 20 के आसपास थी।
1: जी,
2: जी
1: तो ड्यूटी के साथ, क्योंकि देखिए पुलिस में आपने ज्वाइनिंग की है, तो एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी हम कह सकते हैं। वैसे तो हर जॉब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है, आपको अपना काम
2: जी जी
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, लेकिन इस जॉब के साथ कुछ चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कैसे आप मैनेज करते? प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको देखो
2: जी
1: ताइक्वांडो खेलना है और एक अच्छे स्तर पर जाना है, तो दोनों चीज़ों को कैसे आप मैनेज करते थे?
2: डिपार्टमेंट की प्रायर परमिशन के साथ जब ड्यूटी के साथ मैनेज करना पड़ता था तो काफ़ी टफ होता था, नींद भी होती थी, लेकिन हाँ एक जुनून होता था कि नहीं करना है। जब हम अपने साथ वालों को देखते थे या जब हम वीडियोस में इंटरनेशनल प्लेयर्स को फाइट करते या उनका ट्रेनिंग शेड्यूल देते थे, वो एक इंस्पिरेशन होता था।
1: बिल्कुल,
2: जो रूटीन होता था उस समय लगभग ये था कि 10 से 20 किलोमीटर रनिंग है, आपका स्पारिंग सेशंस है, आपके वेट ट्रेनिंग है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी जो स्ट्रेचिंग आवर्स है वो बहुत ही ज़रूरी होता था। तो ड्यूटी के साथ मैनेज करना हालांकि टफ होता था, लेकिन जुनून इतना ज़्यादा होता था कि हम लोग मैनेज कर लेते थे।
1: बेसिकली देखिए अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, कोई चीज़ करनी है, तो उसके लिए एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है। हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि हाँ हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपने भी आजकल देखिए काफ़ी देखा होगा कि बच्चों का स्पेशली क्या रहता है, उनका एक एक्सक्यूज़ सा बन जाता है कि नहीं हम ये कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन ही हम कह सकते हैं कि आपने जॉब के बाद भी देखिए स्टार्ट किया इसे और अच्छा एक मुकाम हासिल किया है। तो आपकी जो अभी तक अचीवमेंट रही है इस खेल में, उनके बारे में जानना।
2: हमारे पुलिस गेम्स होते हैं हर साल, तो मैं 74 से 80 kg में स्टेट में जो हमारी हिमाचल की पुलिस गेम्स होती है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। इसके अलावा मैंने नेशनल लेवल पे भी हिमाचल पुलिस को रिप्रेजेंट किया है। हालांकि मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये एक्चुअली फिटनेस पर्पज़ से किया था, कि क्योंकि बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि आप रेगुलरली वर्क प्रेशर की वजह से उतना वेट मेंटेन नहीं कर पाते,
1: जी
2: फिजिकल फिटनेस मेंटेन नहीं कर पाते, तो फिटनेस की तरफ और साथ ही बुरी आदतों से बचने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी एक किस्म से है कि आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स में या किसी ना किसी मार्शल आर्ट में अपने आप को डालें।
1: जी तो देखिए राष्ट्रीय स्तर तक आप जा चुके हैं इस खेल में, तो जो आपके कोच रहते हैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे,
2: जी
1: क्योंकि जो वैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कॉलेज से खेल रहे हैं या स्कूल से

0: के ऑब्वियसली या स्कूल में कोच हैं, या फिर आपके कोचेस का क्या रहता है?
1: भागीरथ ठाकुर मेरे
0: जी
1: कोच का नाम है, वो 5-10 ब्लैक बेल्ट है प्रेजेंट में। रेलवे क्लब में जो हमारा है वहाँ पे वो प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके अलावा अश्विनी सर है हमारे इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो मैंने उनसे भी काफ़ी सीखा है।
0: तो देखिए, ये तो हम आपसे ताइक्वांडो के बारे में बात कर रहे हैं और आगे भी और बातचीत करेंगे,
1: जी
0: उससे पहले क्यों ना एक हम गीत सुन लें। कोई पसंदीदा गायक या गायिका?
1: मैं ज़्यादातर पुराने सॉन्ग्स का शौकीन हूँ, तो प्लीज़ उनमें से कोई।
0: जी, तो आप पुराने गीत सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आइए श्रोताओं पुनीत जी के साथ मिलकर सुनते हैं इनकी पसंद का एक पुराना गीत, जिसे अपनी प्यारी आवाज में गाया है आश...

0: संगीत सुन ले, कोई पसंदीदा गायक या गायिका?
1: मैं ज़्यादातर पुराने सॉन्ग्स का शौकीन हूँ, तो प्लीज़ उनमें से कोई।
0: जी, तो आप पुराने गीत सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आइए श्रोताओं पुनीत जी के साथ मिलकर सुनते हैं इनकी पसंद का एक पुराना गीत, जिसे अपनी प्यारी आवाज में गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

0: इस गीत के बाद फिर से बात करते हैं पुनीत से।
1: तो सर देखिए, हम बात कर रहे हैं ताइक्वांडो की। इसमें अगर मैं आपके अनुभवों की बात करूँ ना, क्योंकि देखिए आप नेशनल लेवल तक गए हैं खेलने, तो काफी जगह गए होंगे, कैसा एक एक्सपीरियंस रहा है आपका इस गेम को खेलने का? और जगह से देखिए प्लेयर्स आते हैं, उनके साथ आपको रहना है, उठना बैठना है, कैसा एक अनुभव रहा है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको अलग अलग स्टेट्स के जब प्लेयर मिलते हैं तो उनका कल्चर जानने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी के साथ के अलग अलग फोर्सेस के साथ आप मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तो उनका एक वर्क कल्चर, उनका जहाँ से वो नेटिव प्लेस है उनका कल्चर, उनका रहन सहन, वो जानने की उनका भी काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। इसी के साथ ताइक्वांडो बेसिकली फिजिकल फिटनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए, जब शुरू किया था तो फिटनेस के लिए किया था, लेकिन जब एडवांस स्टेज पे गए तो हमने देखा कि नहीं, ये सिर्फ फिटनेस ही नहीं है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, या आप में किसी नशे से या कोई बुरी चीज़ों से दूर रहना है तो आपको, देखिए, एनर्जी है शरीर में, एनर्जी है, कहीं तो लगेगी। ये टीनेजर्स है या बच्चे हैं, इनको ले लो, जवानी का जो हमारा यूथ है उनको ले लो, तो एनर्जी है कहीं ना कहीं, यूटिलाइज ये होगी, तो क्यों ना इसको अच्छी तरह से और किसी पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, तो उस पर्पज़ से ये बहुत ही अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, देखिए अभी बातों बातों में ना आप दो तीन बार हमें एक स्पोर्ट्स का एक फ़ायदा बताया है बार बार, कि जो ये बुरी आदतें आजकल बच्चों में हो रही है, नशा देखिए बहुत बढ़ रहा है, उससे जो है बच्चे बच सकते हैं अगर वो खुद को स्पोर्ट्स की तरफ या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ खुद को लगाए, कि वही बात है ना कि हाँ पॉजिटिव साइड में अपनी एनर्जी को लगाएं। तो अगर हम और भी इसके बेनिफिट्स की बात करें तो क्या क्या फ़ायदे हैं आगे चल के स्पोर्ट्स के? क्योंकि देखिए अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है अगर सर्वाइव करना है, तो स्पोर्ट्स के ज़रिए अगर हम फ्यूचर में बात करें तो जॉब के क्या क्या स्कोप रहते हैं?
2: देखिए, जॉब के तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप स्पोर्ट्स लाइन से हैं, अगर आप नेशनल मेडलिस्ट हैं, तो डेफिनेट जैसी बात है कि स्टेट में इसका अलग कोटा है। इसके अलावा आप अगर इसी फील्ड में आगे परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग से रास्ते हैं। टीचिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से मौके हैं। अगर अर्निंग पर्पज से आप देखें तो स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा है, बल्कि मैं आज के स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा स्टडी में अच्छे नहीं है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप स्पोर्ट्स की तरफ से अपना करियर बनाने की कोशिश करें। हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं आप किसी पर्टिकुलर गेम को पकड़ के चलें।

0: उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे आप?
1: जी बिल्कुल, आपके मंच के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चे, खासकर टीनेजर, इनके पास बहुत सारी एनर्जी है। आप इनको केवल पढ़ाई में ही नहीं, इनको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, किसी योगा या कोई और एक्टिविटीज में ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसको डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये एनर्जी या तो फोन में या ड्रग्स में या फिर बुरी संगत में लगेगी ही लगेगी। तो मैं अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि आप इस एनर्जी को यूटिलाइज करें, बच्चे की ग्रोथ में भी काम आएगा और साथ ही साथ स्पोर्ट्स की वजह से इनके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट तो होगी होगी।
0: तो देखिए पुनीत जी, आज आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियोज आए हैं और आपने हमसे बात की है ताइक्वांडो के बारे में। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा, देखिए, आपने संदेश हमारे युवा पीढ़ी को खास करके दिया है, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए।
0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हम अनुमति चाहेंगे कार्यक्रम को संपन्न करने की। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए खिलाड़ी के साथ। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत और उसके बाद 3:30 पर युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप सुनेंगे 4:20 से शाम 7 बजे तक। आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। 3 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर यानी 774 किलोहर्ट्ज और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप ये सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर आज माईगोव की एक पोस्ट साझा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। माईगोव पोस्ट के में पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में आए बदलाव का उल्लेख किया गया है। इन बदलावों से आवाजाही तेज हुई है, लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिली है और विकास के नए मार्ग खुले हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। आज से 15 जुलाई 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर मकान और परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, परिवार की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये डेटा देश की विकास योजनाओं के लिए बेहद जरूरी

0: जरूरी होगा। निदेशालय ने लोगों से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के बारे में पेश है ये रिपोर्ट।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
0: प्रदेश भाजपा महामंत्री पायल वैद्य ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में बार बार किए जा रहे संशोधनों को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान प्रदेश की महिलाओं से बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार उन्हें पूरा नहीं कर पाई। पायल वैद्य ने कहा कि सरकार ने इस योजना का दायरा और सीमित करते हुए 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग की युवतियों को भी इस योजना से बाहर कर दिया है, जिससे कांग्रेस की कथनी और करनी जनता के सामने आ गई है। राजधानी शिमला में पिछले 976 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने आज सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ है। दृष्टिबाधित जन संगठन के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बैकलॉग भर्तियां व आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक दृष्टिबाधितों की जायज मांगें पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
4: मेरा नाम राजेश ठाकुर। जैसे ही दिव्यांगजनों की समस्या आ रही है तो सरकारी विभागों में क्लास 4 का बहुत अधिक मात्रा में हमारा बैकलॉग बचता है। हम चाहते हैं वो भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए और पेंशन भी हमारी 5100 रुपए महीने की समस्त दिव्यांगजनों की जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें भी बिना किसी कंडीशन से दिव्यांगजनों को लाया जाए और हमें जो सारा पेंशन मिलती थी वो भी 12 महीने से बंद पड़ी है उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और UDI कार्ड वो भी लागू किया जाए।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए सुनते हैं कुल्लू जिला की चिट्ठी। लेखक हैं आशीष कुमार शर्मा और वाचिक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: राष्ट्रीय नार्को समन्वय समिति की जिला स्तरीय बैठक कुल्लू के उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला में नशा रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा के साथ भविष्य की ठोस रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।
4: पेंशन मिलती थी वो भी 12 महीने से बंद पड़ी है उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और UDI कार्ड वो भी लागू किया जाए।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए सुनते हैं कुल्लू जिला की चिट्ठी। लेखक हैं आशीष कुमार शर्मा और वाचिक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: राष्ट्रीय नार्को समन्वय समिति की जिला स्तरीय बैठक कुल्लू के उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला में नशा रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा के साथ भविष्य की ठोस रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि

पंचायत स्तर पर सतत निगरानी, जन भागीदारी और सामुदायिक जागरूकता के बिना नशे के विरुद्ध अभियान को प्रभावी रूप से नहीं दिया जा सकता। उन्होंने सभी पंचायतों में नशा निवारण समितियों के सक्रिय संचालन पर विशेष बल दिया। बैठक में जिला के शिक्षण संस्थानों, विशेषकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए विशेष

0: अभियान चलाने का सुझाव दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि अपना विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अधिकारी अपने अपने अपनाए गए विद्यालयों में भी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को नशा मुक्ति का सशक्त जाने के लिए एनजीटी के आदेशानुसार एक दिन में सिर्फ 1200 वाहनों को ही जाने की अनुमति है। लोहरी जल विद्युत परियोजना बैठक के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों के विभिन्न मसलों की विस्तार से समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परियोजना प्रभावित 14 परिवारों को नियमों और प्रावधानों के अनुरूप आवास निर्माण हेतु देय धनराशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्रभावित परिवारों के हितों की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। आगामी मॉनसून मौसम की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बाढ़, भूस्खलन, सड़क अवरोध, पेयजल और विद्युत आपूर्ति बाधित होने जैसी संभावित आपदाओं से निपटने के लिए विभागवार तैयारियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में संवेदनशील और जोखिमपूर्ण स्थलों की पहचान कर समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नालों और जल निकासी तंत्र की सफाई, नदियों और खड्डों के जलस्तर की निगरानी, बाढ़ और पूर्व चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता, राहत सामग्री के भंडारण और आपदा नियंत्रण कक्षों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला आयुर्वेद अस्पताल कुल्लू की रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गत वित्त वर्ष तथा वर्तमान वित्त वर्ष के आय व्यय सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त अश्विनी कुमार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अस्पताल की विभिन्न सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास कार्यों के लिए रोगी कल्याण समिति के माध्यम से 17,65,560 रुपये से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। बैठक में विभिन्न सुविधाओं और आवश्यक कार्यों के लिए धनराशि आवंटित करने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई और विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए कार्यों के व्यय को कार्यत्वर स्वीकृति दी गई। उन्होंने आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों को आयुर्वेद, पंचकर्म और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जन जन तक पहुँचाने और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बीते दिनों पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन की जांच और काम माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों की अनुपालना में जिला पर्यावरण योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। गत दिनों स्थानीय नगर निकायों और जिला परिषद के चुनाव संपन्न हुए। कुल्लू जिला परिषद के कुल 14 वार्डों में से 9 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराते हुए बहुमत का आंकड़ा पार किया, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते और 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। वहीं मनाली नगर परिषद की सभी 7 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। कुल्लू नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में से 3 पर भाजपा समर्थित, 3 पर कांग्रेस समर्थित, जबकि 5 अन्य वार्डों में आजाद उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। इसके साथ ही जिला की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
1: कुल्लू जिला की चिट्ठी आपने सुनी। लेखक थे आशीष कुमार शर्मा, वाचक स्वर राकेश शर्मा का था। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 3:10 हुए हैं। एफएम शिमला पर यह समय है ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत का। तो आगाज करेंगे सीता और गीता फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है आशा भोंसले और मन्ना डे ने, आनंद बख्शी के बोल और आरडी वर्मन का संगीत।

0: ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

परिचय, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार के बोल और आरडी वर्मन का संगीत। 103.7 MHz आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत। अब आपको सुनवाएंगे अनपढ़, इस फिल्म का ये गीत। इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

अपना देश। इस फिल्म का ये गीत किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी का बोल, आर डी वर्मन का संगीत। आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत।

अपना देश फिल्म के इस गीत के साथ आज ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। एफएम शिमला पर अब आप सुनेंगे युवानी कार्यक्रम। जी हाँ, युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युवानी।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी काव्य ऋतुराज के साथ। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो हम सभी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसके बारे में अक्सर कम चर्चा होती है, जो है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों का सही प्रबंधन करने की समझ। हम स्कूल कॉलेज में अनेक विषय पढ़ते हैं, गणित, विज्ञान और इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये सिखाया जाता है कि कमाई हुई धनराशि को सही तरीके से कैसे खर्च किया जाए, कैसे बचाया जाए और भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाए। यही कारण है कि अच्छी आय होने के बावजूद कई लोग आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है,

बल्कि उसे समझदारी और से संभालना भी है। यह हमें बजट बनाने, बचत करने, निवेश और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की सीख देता है। वैसे भी धन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजन, शिक्षा और बाकी ज़रूरतों के लिए धन आवश्यक है। हालांकि धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं माना जा सकता, लेकिन एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के लिए इसका सही प्रबंधन आवश्यक है। इस बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

तो चलिए अब बात करते हैं बजट बनाने की आवश्यकता के बारे में। मान लीजिए किसी की मासिक आय 20,000 रुपये है। यदि वो बिना योजना के खर्चे करता है तो महीने के अंत तक उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यदि वो पहले से तय कर लेगी कितनी राशि आवश्यक खर्चों, बचत और बाकी ज़रूरतों पर खर्च करनी है, तो उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। बजट हमें ये समझने की मदद करता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और किन खर्चों को कम किया जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब आय बढ़ेगी तब बचत करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बचत आय से नहीं, आदत से होती है। यदि कोई व्यक्ति कम आय में भी नियमित बचत करता है तो वो भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। बचत केवल भविष्य की योजनाओं के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमें आपातकालीन परिस्थितियों में भी सहारा देती है। हर युवा को अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाने की आदत विकसित करनी चाहिए, चाहे वो राशि छोटी ही क्यों ना हो। नियमित बचत का प्रभाव समय के साथ बहुत बड़ा हो सकता है। तो आइए अब सुनते हैं अगला गीत।

तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। जीवन हमेशा हमारे प्लान के अनुसार नहीं चलता। अचानक बीमारी, नौकरी छूट जाना या परिवार में कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड या आपातकालीन निधि हो तो हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम 3 से 6 महीने की खर्च के बराबर राशि इमरजेंसी फंड के रूप में मौजूद होनी चाहिए। ये आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है।

दोस्तों, आजकल लोन लेना तो बेहद आसान हो गया है। कुछ ही समय में मोबाइल ऐप्स के माध्यम से लोन प्राप्त हो जाता है। लेकिन लोन लेना लाभदायक होने के साथ साथ भविष्य में दिक्कत पैदा भी कर सकता है। लोन लेने से पहले हमें खुद से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। क्या ये वास्तव में आवश्यक है? क्या मैं इसे समय पर चुका सकता हूँ? और क्या इसकी लागत मेरे लिए उचित है? अगर इन प्रश्नों के उत्तर सेटिस्फैक्ट्री हों तभी आपको लोन लेना चाहिए। और अगर बात करें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की, तो केवल बचत करना पर्याप्त नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी धनराशि समय के साथ बढ़े, तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में भी समझ विकसित करनी होगी। आजकल भारत में निवेश

और क्या इसकी लागत मेरे लिए उचित है। अगर इन प्रश्नों के उत्तर सेटिस्फैक्ट्री हों तभी आपको लोन लेना चाहिए। और अगर बात करें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की, तो केवल बचत करना पर्याप्त नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी धनराशि समय के साथ बढ़े, तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में भी समझ विकसित करनी होगी। आजकल भारत में निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं और हर निवेश में जोखिम और लाभ का स्तर अलग होता है, इसलिए पहले जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ समय हो चुका है कार्यक्रम के अगले गीत का।

यदि कभी किसी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी का संदेह हो तो तुरंत बैंक को सूचित करें और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा तभी लाभदायक है जब उसके साथ जागरूकता और सावधानी भी हो। एक छोटी सी लापरवाही हमारी मेहनत की कमाई को नुकसान पहुंचा सकती है।

तो दोस्तों, आज हम डिजिटल पेमेंट्स के युग में जी रहे हैं। UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट्स ने लेन देन बहुत ही आसान बना दिया है, लेकिन सुविधा के साथ सावधानी भी आवश्यक है। हमें कभी भी अपना OTP, बैंक विवरण या पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना। साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी के अनेक प्रयास किए जाते हैं, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी में डिजिटल सुरक्षा की जानकारी भी शामिल है।

आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है दिखावे का कल्चर। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जीवन शैली देखते हैं और कई बार उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़ों जैसे अनावश्यक खर्च हमें आर्थिक दबाव में डाल सकते हैं। तो हम सभी युवाओं को ये समझना होगा कि आर्थिक सफलता का अर्थ सिर्फ खर्च करना नहीं बल्कि धन का सही प्रबंधन करना भी है। वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना। जब हम बचत, निवेश और समझदारी से खर्च करने की आदत विकसित करते हैं तो हम धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है।

और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आज के विषय पर साझा की गई जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसी के साथ मैं काव्य नितुराज चाहूँगा आपसे इजाज़त। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर यह समय रहता है फिल्म संगीत का। इसका आगाज़ करेंगे पीके फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है शान और श्रेया घोषाल ने। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं और शांतनु मोइत्रा का संगीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। 16 जून यानी आज का दिन बहुत खास है। आज है आकाशवाणी शिमला का स्थापना दिवस। हिमाचली संस्कृति और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ यहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों ने प्रदेश की भाषाओं, लोकगीतों, लोक कलाओं और इन सभी को जो है वो नई पहचान दी है। कुल्लू की धुनें हो, चंबा के लोकगीत, किन्नौर की संस्कृति विरासत या सिरमौर की लोक परंपराएं, आकाशवाणी शिमला ने इन्हें हमेशा मंच प्रदान किया है। और साथ ही साथ लोक कलाकारों की आवाज़ों को आकाशवाणी ने पूरी प्रदेश और देश तक पहुंचाया है। जानकारी और मनोरंजन का पिटारा खुलता है आकाशवाणी फिल्म शिमला पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं रेडियो फिल्म का ये गीत हिमेश रेशमिया की आवाज़ में।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। जब टीवी का इस्तेमाल कम किया जाता था तब रेडियो ही एकमात्र साधन था जो हर परिस्थिति से अवगत करवाता था। लोग रेडियो को मन से सुनते थे। खेतों में काम करते हुए भी लोग समय का ज्ञान भी रेडियो से ही प्राप्त करते थे। जी हाँ, समय के साथ साथ तकनीक बदली, टीवी आया, इंटरनेट आया, मोबाइल फ़ोन आए और सोशल मीडिया ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की, लेकिन फिर भी सही संपूर्ण जानकारी और मनोरंजन में शिमला रेडियो स्टेशन अपनी भूमिका निभा रहा है।

आप हमारे कार्यक्रम AIR FM AIR शिमला में डिजिटल ब्रॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं। फेसबुक पेज को फॉलो करके आप सजीव कार्यक्रम सुनवा देख सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप उत्पाद को बेचने व एडवर्टाइज करने का काम भी आकाशवाणी FM शिमला पर कर सकते हैं।

सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए FM शिमला के साथ। अब आपको सुनवाते हैं भूतनाथ रिटर्न्स। इस फिल्म का ये गीत मीत ब्रदर्स अनजान और साथियों की आवाज़ में।

103.7 MHz आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आकाशवाणी शिमला पर आप सुबह 5:55 पर वंदे मातरम से रात 11:10 पर जय हिंद तक बहुत से ऐसे कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं जो आपके लिए जो है वो एक इन्फॉर्मेशन भी लेकर आते हैं, मनोरंजन भी लेकर आते हैं। इन सभी कार्यक्रमों का आनंद आप लेते हैं आकाशवाणी एफएम शिमला पर। क्वीन फिल्म का ये गीत लव जुनेजा और साथियों की आवाज़ में।

हमारे कार्यक्रम डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध हैं। 4:20 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों में सबसे पहले सुनिए सिरमौरी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।

सिरमौरी कार्यक्रम सुनने वाले तो सोबी के मेरी डाल तो सती है लो आवास अंकित और तो अला सुने आकाशवाणी केंद्र शिमला दा सिरमौरी कार्यक्रम तो है लो हमारे यहाँ खास कार्यक्रम दे बात करने सरकार के कुछ योजनाओं के जिन दे हमारे बात करने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पंचायत द्वारा क्षेत्र का विकास और साथी सुन में मनोरंजन के कुछ सिरमौरी लोकगीत और सत्य झेड पोंबे कुछ एलो की देश विदेशों की खास खास खबरों दी तो सोभी दे आगे बात करबे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। हमारे देशों दो ऐसे बोलो जाए जो खेती बाड़ी सो से बस एक काम धंधा नहीं थी जो अजय खेती बाड़ी सो ये एक तपस्या सो दूसरों राते के हार तोड़ मेहनत पसीना और उम्मीद जो वे ये जी सब चीज़ खेतों की कोठी मिलो तब जायो फसल बनो और तब एक जिम्मेदारों के छाते गर्व लुई चौड़े जा। पर आम सभी को पता है खेती बाड़ी दे एक ओके बात यो है इंदा मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता कोलुई भी एक कुणिए पानी लागे सको कोलुई भी एक कुणिए सूख पड़ सको खेतों दे हमारे जो शाक है तींदे कीड़े भी लाग सको और बीमारी भी लाग सको और जब शोरू लागो

जितने लोग जो हमारे फसल है से बर्बाद हो जाओ और जो हमारे मेहनत है से जी भी बर्बाद हो जाओ। इसलिए जुए जी एक कुड़े पानी लागो सूखो पड़ो शोरू लागो इंदे के प्राकृतिक आपदाएं बोली। तो इन प्राकृतिक आपदा लोई हमारे जिम्मेदारों किसानों के जो ढेर है से जी ढेर नहीं छूटो से जा हौसला नहीं छूटो। इंदे पायो सरकारे एक बढ़िया योजना तो लाए जिंदे को नाम सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंदे लुई सरकार जिन किसानों के फसल खराब रहे शाक खराब रहे तिनके आर्थिक सहायता प्रदान करो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के एक प्रमुख योजना सो जो हमारे शाखों के प्राकृतिक आपदाओं और कीड़े मकोड़ों या बीमारी लोई जो शाक बर्बाद हो खराब हो जो नुकसान हो तिंदे पायो एक बीमा योजना शुरू तो करी जो हमारे शाखों के सुरक्षा प्रदान करो। ऐसी योजना भारत सरकार है 18 फरवरी 2016 दे शुरू करी। अब बात करबे जे जो ऐसी योजना है इन बीमा कराने के क्या पैसा लागो और कैसे के ऐसी बीमा योजना हों दे। तो कोई भी आम मुझे सोचो जे जो बीमा ऐसे बजाय सेठ आदमी या अमीर आदमी करा और इंदे कराने के बजाय पैसे लागो। पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खासियत ऐसी हो सो जे इंदे कराने के आम जरूरी पड़ो देने से बिल्कुल ना के बराबर हो। सरकार है इन बीमे बजाय स्वस्थते राखे जिंदे लोई एक छोटे से छोटा किसान भी ऐसे बीमा योजना आराम से आसानी से करा सको। ऐ बात लूँ भाई जे क्यों शाखों के क्यों फसल के हम ऐसी योजना बीमा योजना लागू कर सको या इंदे के हम फॉर्म भर सको। तो जो हमारी फसलों से और खरीफ की फसलों जिंदे गर्मी दी जिन फसलों दिलाओ और सर्दी से आगे काट दो वो क्यों रबी की फसलों जिन सर्दी मुझे वो दिलाओ और गर्मी के वक्त दी काट दो और वो क्यों हमारी व्यवसायिक फसलें या बागवानी फसलें जिंदे के हम नकदी फसलों भी बोलूँ। तो जो जी हमारी खरीफ की फसलों जिंदे हमारे धान कुकड़ी बाजरा और कपास जिसनी शाको आओ इंदे के बीमा कराने के हम 2% प्रीमियम पड़ देना। मतलब जे हमारे शाखों की कीमत 1 लाख रुपये हो सो तो हम बीमा कराने के 2,000 रुपये पड़ देने। ओके जो हमारे रोबी की फसल हो जिंदे गेहूँ जौ तोड़िया चना जिसनी फसलें आओ इन शाखों के प्रीमियम पायो हम 1.5% प्रीमियम पड़ देना। मतलब जे 1 लाख रुपये हमारे फसल की कीमत है तो हम 1,500 रुपये इंदे के प्रीमियम कराने के रुपये पड़ दे देने। ओके जो हमारी व्यावसायिक और बागवानी फसलें हो जिंदे हमारे आलू प्याज आदरू पिपड़ी टमाटर गन्ने ये जी बादी शाखों आओ इन शाखों के प्रीमियम के हम 5% प्रीमियम पड़ देना। मतलब जो हमारे शाखों की कीमत 1 लाख रुपये तो हम 5,000 रुपये प्रीमियम पायो इंदे देने पड़ो। अब तुम्हें रुलो सोचे जे हम 2% या 5% रुपये आमो दूँ भाई तो जो ओके रुपये से कौन देगा। तो जो इंदे के ओके रकम से केंद्र सरकार और हमारी जो राज्य सरकार है से दोनों सरकारें मिले हमारे जो इंदे के बचों रकम से जे हम के दे जिंदे के हम सब्सिडी बोलो। तो अब सुनबे एक सिरमौरी लोकगीत बात रखबे जारी तब थोड़ी तू सुनो एक सिरमौरी लोकगीत।

बहुत ही बढ़िया लोकगीत सुनो, बीण रे कुठोरे माता बाबू राम के आवाज़ दो। इबी तोड़िया में बात लेते करे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो एबे बात करबे जे आमो के यो बीमे की सुरक्षा कबे भेटोय और कैसे के भेटोय। यो बीमे दे सिर्फ जो हमारे खेतों दे खड़े फसल हो तीन दे के ही सुरक्षा निबेट दी, पर इन दे शाख लाणो दे आगे दे पुंडे और जाए के फसल काटने के बाद थोड़ी इंदे आमों के सुरक्षा भेटो। तो इंद जश्न हमारे कुंजी शाख लाने हो जे शाखों बणो दे आगे मौसम खराब या पानी नहीं लाग दो, जिंदो लिया हमारे अपने शाख वक्त पा दिन बोईंदी, तब तो भी इंदो आमो जो बीमा है तिंदे काम के मुआवजा भेटदा। और जब है हमारे खेतों दे फसल खड़े हो शाख लागे होंदे हो और एक कुणिये पानी लागो या बाढ़ आए या शोरू लागे, जिंदो लिया हमारे जो फसल है से बर्बाद हो जाओ, तब तो भी आमो के यूँ योजना दे जो बीमा का है जब मुआवजा है से भेट दाए। एबे जब आमो फसल काटे दे तो फसल काटना

के बाद आमो अपने शाह के कुछ दूसो सुकणों के खेतों कुंडे छोड़ दो। तो जे चौथी दूसो तोड़ी किचे भी पानी लागो, शोरू पड़े या बाढ़ आए, इंदे लिए जो हमारे जो फसल है बर्बाद होए, तो वे भी आमो के इंदे का मुआवजा बैठदा है। और ए बेंदी खुशी की बात ए जी ओसो जे सरकार है इयों योजना का दायरा बढ़ाए। तो अब सहजा दायरा कैसे था बढ़ाए, जे जो है जे जंगली जानवर हो जिसने नील गाय, जंगली सूअर, हाथी, शाइलो जो हमारी फसल बर्बाद कर दे होती। तो अब जे जानवर हमारी फसल बर्बाद कर ले, तो वे सरकार है इंदा एबे बीमे का जो मुआवजा है सजा भेड़दा है, इंदे का भी एबे इंतजाम करतो। तो एबे बात करबे जे बीमा आवेदन करने के प्रक्रिया का आसो, जे हमारे बीमा जा कैसे का लौना है और इंदे के जो जरूरी कागजात है से का आसो। तो जो है जी योजना सो से किसानों के अपने मर्जी की योजना है, किसान अपने मर्जी लोइए जा बीमा लो सको। बाँ तीनों है बैंक को KCC लोन लोए तोलो चाहे लोए नहीं तोली। यो बीमा योजना लोनों के दो तरीके हो सो, एक है ऑनलाइन तरीका, ओका है ऑफलाइन तरीका। तो ऑनलाइन तरीके के हम अपने फ़ोनों से या अपने कंप्यूटर से सरकार के पोर्टल PMFBY.gov.in पंदी जाए हो और फार्मर कॉर्नर पंदी जाए हो, आप ही अपना फॉर्म भर सको। ओ का तरीका सो से है ऑफलाइन तरीका। इंदे क्या मो अपने जो बीड़ो के जनसेवा केंद्र है या सहकारी समिति या बैंक शाखा है तेते जाए भी फॉर्म भर सको। तो इंदे के जो फॉर्म भरनो के इंदे के जो जरूरी कागजात है से जो सो एक आधार कार्ड, ओ का बैंक खाते पासबुक के तिंदे के फोटो कॉपी, जो जमीन है हमारे तिंदे के दस्तावेज, इंदे खसरा नंबर और खतौनी नंबर आ, और इंदे असो ओके जो कागजात है से है फसल बुआई का प्रमाण पत्र जो आम के पटवारे देव या कृषि विभाग देव। और एक जरूरी बात इंदे है जी असो जे हमारे बीमा जा कोरानी नहीं होली, बीमे के जे हमारे फसल बर्बाद नहीं रोली है और हमारे बीमे के रुपये लोनी नहीं होली। तो जब थोड़ी बीमे का करार होला त्यों तारीखों तोड़ी हम त्यों तारीखों से भी 7 दूस आ गया हम बैंकों के लिखित दो मोना पड़ो करनो जे हमारे जा बीमा चाहिए नहीं। जे हम अजा मोना नहीं करबे तो बैंक का जो नियम है से अपना प्रीमियम काट देंदे। अब बात करबे कि जो नुकसान हो जाला तो हम क्या वक्त भीतर सरकार के सूचना पड़ दे देने। तो जे हमारे फसल का नुकसान हो हुआ तो हम 72 घंटे भीतर इंद के सूचना देनी पड़ दी। इंद पाए हम क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पंदी भी सूचना दे सको, जेथे हमारी फसल बर्बाद रोल है तिंदे के हम फोटो भी भेज सको। और साथ ही हम टोल फ्री नंबर 1-4-4-4-7 पंदी भी फोन कर सको और शिकायत दर्ज कर सको। जे तुम्हारे भुक्तपंदी सूचना आगू दे ली तो जांच के बाद 21 दिनों भीतर जो हमारे जो क्लेम के रुपये से जे खाते दे आए जाने। और जे कंपनी भुक्तपंदी हमारे खाते दे रुपये नहीं पाले तो कंपनी 12% ब्याज भी देने पड़ दे। तो किसान भाइयों जो है जे प्राकृतिक आपदाएं हो ये कोलोई भी बोलियो नहीं आंदी, तो हमारे समझदारे इंदी ओसो जब हम भुक्तपन सुरक्षा का इंतजाम करो। और एलोई जो हमारे जो नज़दीक है, जो तुम्हारे नज़दीक बीड़ो के जो कृषि कार्यालय है या जनसेवा केंद्र सो तेते फसल बीमा योजना कराए देव। ऐसे बात करें हम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात रखबे जारी, तब तोड़ी तू सुनो एक सिरमौरी लोकगीत।

बहुत ही बढ़िया लोकगीत सुनो जो देगा टने लामड़े जंत्र मोहन ठाकुर और साथी की आवाज़ दो। तो ऐबे बात करबे जे पंचायत द्वारा क्षेत्र का विकास कैसे क्यों, के जो हमारे पंचायत है से हमारे जो गांव गोड़ी है जो हमारा जो इलाका है तिंदे का विकास कैसे के करो। तो जो जी पंचायत हो या हमारे गांव के सामाजिक आर्थिक और डिजिटल कार्यक्रम का मुख्य आधार हो। भारतीय संविधान के 73 संवैधानिक संशोधन 1992 दा ग्रामीण इलाके के विकास पायो त्रिसत्रीय ढांचा तैयार तो करी जिंदे ग्राम पंचायत ग्राम समिति जिला परिषद आओ। ग्राम पंचायत का जो काम हो से पंचायत जितने भी गांव आओ या जूंजा भी इलाका आओ तीनों गांव और इलाके का विकास करना। पंचायतों के संविधान के 11 अनुसूची दा 29 विषय पंदी काम करने का अधिकारता दे जिंद पंचायत।

जायत अलग अलग काम करो। तो अब दुख भय जे पंचायत का काम करो जिंदे लुई हमारे इलाके का विकास हो। तो सुविधा के जो पंचायत विकास करो से करो हमारे बुनियादी ढांचे और जन सुविधा पंदी। इंदे का मतलब असो कि जिंदे की जरूरत आमो सभी के रोज पढ़ो और जो बहुत जरूरी है हमारी जरूरत पूरी करो। तो सर जो पंचायत है से गांव के जो सड़कें हो गलियों और बाटो तीन का जो निर्माण है से पंचायत करो। साथ ही जो है जी सड़कें हो गलियों इन जो रात के प्यासे पाए जो लाइट लाओ तीन लाणों का काम भी पंचायतों का ही हो। वो का जो पंचायत का काम हो से हो गांव गांव के गोरे गोरे तोड़ी साफ सुथरों पानी पहुँचाना। पंचायत का काम हो जो पानी के टैंक बनाने हेडपम्प लाने और तीनों टैंकों और हेडपम्प की देखभाल करने इंदे का काम पंचायत का। वो का जो पंचायत का काम हो से हो साफ सफाई रखने का काम इंदे का काम भी पंचायतों का ही हो। पंचायत आर्थिक निर्भरता और रोजगार के इंतजाम भी करो है। इंदे पायो से स्थानीय स्तर पर दिया हमारे जो गाँव के मजदूरों गाँव के लोगों से तीन के कम से कम 125-200 तोड़ी गारंटीकृत काम देने का इंतजाम करो। ओ का पंचायत आजीविका मिशन के तहत बेट मनसों के नाना ने जो उद्योग जिंद डेयरी हस्तशिल्प सिलाई जैसे जो उद्योग शुरू करने के पंचायत भवन दे जागे भी दे हुए और इंदे पाए पैसे भी दे हुए। पंचायत गांव के जो हमारे कारीगरों और जो किसान हो तीन के जो साग सब्जी हो तीनों बिकणों के ग्रामीण हाट बाजार का बुनियादी ढांचा भी तैयार करो। पंचायत का काम गांव के जो सरकारी स्कूल हो तिनका रख रखाव मिड डे मील योजना पर ध्यान देना और ज़्यादा से ज़्यादा जो नाड़ी ऐसे स्कूलों के दाखिल होने इन पर ध्यान देने का काम भी पंचायत का आवश्यक। ओ का पंचायत का काम स्वास्थ्य उपकेंद्र और आंगनबाड़ी का संचालन में मदद करना भी पंचायत का एक काम हो। पंचायत का काम कृषि पर्यावरण और भूमि सुधार करना हो जिंद पंचायत कृषि विकास पायो बढ़िया बढ़िया किस्म के बीज आधुनिक कृषि यंत्र जैविक खेती और सॉयल हेल्थ कार्ड पायो हमारे किसान जागरूक करो। ओके जो गाँव दे जैसे निकोलो बानो चक डैम बानो का काम जो नहर है तीन बानों का काम भी पंचायत का। तो हमारे जो संविधान है से हमारे गांव गोड़ी के जो इलाके का विकास करने का काम से पंचायत के ता दे। तो हम सभी को ऐसा पता होना चाहिए कि पंचायत का काम का है और कैसे के पंचायत काम करो। तो अभी थोड़ी हम बात करें पंचायत द्वारा इस क्षेत्र का विकास की। अब सुनबे एक सिरमौरी लोकगीत इंदे के बाद बात रखबे जारी। तू सुनो एक सिरमौरी लोकगीत।

बहुत ही बढ़िया लोकेश हो रोयो रातड़ी काटी भारती शर्मा जी के आवाज़ तो एलो में बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के और पंचायतों द्वारा क्षेत्र के विकास के। अब सुन बे कुछ ताज़ी ताज़ी खबरें। कांगड़ा जिला छोड़ियो प्रदेश देश सौ 11 जिलों देबयाड़ी 15 तारीख को ग्राम पंचायत के प्रधान और उप प्रधान की शपथ दिलाए पाए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है सभी प्रधानों को इसी शपथ दिलाए। कांगड़ा जिले दे प्रधान पद और उप प्रधान पद के शपथ 18 जून को आंदी। प्रदेश भीतरा जनगणना 2027 का अगला चरण 16 जून दा पुंडा शुरू लगा। इो चरण दे मकान सूचीकरण और मकान की गिनती का काम आंदा। ऐसे जनगणना 15 जुलाई तोड़ी रोंदी। इो जनगणना दे मकान की स्थिति परिवार के पानी पीने को बिजली शौचालय अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जिसने प्रश्न पूछ दे। तो अबे वक्त भी हो चला हमारे कार्यक्रम का तो मुख दे इजाज़त तू सभी के मेरी ढाल बेटियों बे अबे शुक के।

महासुई कार्यक्रम सुनने वाले के कमला शर्मा रा नमस्कार। तो श्रोताओं, प्यारे प्यारे लोकगीत, खास खास खबरा और कुछ एक विषय बारे दे आसा गल करनी, पर आसारा जो सभी ते पहले आज विषय रहना से है प्राकृतिक खेती। तो कर लिए तेरे बारे दा गल बात की प्राकृतिक खेती कितनी जरूरी है और इत सत आसा क्या फायदे हो और आने वाली पीढ़ी के किया लाभदायक हो सको। तो चलो कर लिए तेरे बारे दे गल बात। तो देखो जी, प्राकृतिक खेती करने ते आसारी जो माटी है खेचारी से उपजाऊ रहो और पर्यावरण आदि भी इतने साथ ही सुधार हो। इतने साथ ही जो है किसी भी प्रकार आ रही हानिकारक गैसा नहीं बनती जे तेरी वजह ते किसान नहीं करो, जो मानो जिम्मेदारी करो तिनारे आए दे बढ़ोतरी भी हो। क्योंकि कीटनाशका पाते जो अस अपनी फसलों के छिड़काव हुए दूजी दवाई राती प्रयोग करो अपने खेचा डूरुआ दे तिना पाते जो आस दवाई और कीमत आओ से भी इतने साथ बचे जाओ। तो धरती के बचाने रही तक और नई पीढ़ी के बचाने रही तक ये बहुत जरूरी है। इत साथे जो है किसानारी जो माटी री किस्म है से दिन प्रतिदिन खराब होने लगी रही। अगर तेदे सुधार चाहिए आसा सभी तो ये अपनानी बहुत जरूरी है। प्राकृतिक खेती साथे जेती फसला पांदे किसी प्रकार आरी रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करा जाओ, तेती जो है डाला बूटे और पत्तेरी खाद इति दे जाओ और जो पशु आसे पालू है करे तिनारे गोबरारी खाद इतरे बदले खेचा दे पाई जाओ। तो देखो ऐना ये प्रणाली कितनी बढ़िया, असरे बुजुर्गे भी अपनाई और आसे भी ये जरूर इतरा प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो आने वाला वक्ता दे माटी भी खराब होनी और फसल भी नहीं उगनी और बहुत ज़्यादा जो है फसलारी कीमत बढ़नी और अनाजारी भी कीमत बढ़नी जो कि आम मानू रे ते दिस्ते पूरी नहीं होनी। तो प्राकृतिक खेती प्राचीन काल होने ते लगी रही और ए माटी प्राकृतिक स्वरूप के बनाई रखने रही तक बहुत जरूरी ए। अगर आसे ए गल आज नहीं सोची तो आसा जो है डरावने तेरे आगे जो फायदे होने से वो खतरनाक सिद्ध होने आसा है। तो पिछले कई सालों ते रासायनिक कीटनाशक

सारा प्रयोग फसला पांदे करा जाने लगी रहा, जितरी वजह ते आ सारी जो माटी है से दिन प्रतिदिन कमा ते कम पैदावार करने लगी रही। इतरा कारण है ते पांदे दवाई यारा छिड़काओ। अच्छा से जो दवाई यारा छिड़काओ करूँ तो ए, पर असि जो से फसल बादा ते काटू है रखू है और तेसा पशुआ के खड़ाऊ है तेते के भी से आ सारे खाने पीने के भी दूषित करने लगी रही, जो कि एक सोचने री गल है। तो असे अगर प्राकृतिक खेती अपनाऊ तो इत ऐसा चार चीज़ा का ध्यान रखना जरूर पड़ना, क्योंकि ये जो है चार स्तंभ है तेरे, एक है जीवामृत, दूजा है बीजामृत और तीजा है दे वापसा और चौथा है दे आच्छादन। तो जो ये जीवामृत है ये जो भी माटी हो ते तेरी ये उपजाऊ शक्ति के बढ़ाने का काम करो, और जो बीजामृत है ये बीजा दे जो भी रोग लगो ते तेरी क्षमता के रोको और रोग लगने ते जो फसल बर्बाद हो ते तेरे तक है लाभदायक है। और जो वापसा है ए माटी की नमी और आवारा जो आप बीचे संतुलन हो तिसके बनाई रखो, जो बहुत ज़रूरी है जमीनारी तक भी फसलारी तक भी। और जो ये आच्छादन है ये एक ही प्रकार की माटी दे नमी बनाए रखने की विधि है। इतने अलावा जे आसे ऐसा प्राकृतिक तरह साथी करूँ तो ये देसी गाय रे गौमूत्र साथी भी करी जा सको और गोबर साथी भी करी जा सको और जैविक खादारा भी इतने जो प्रयोग से लाई सको है। तो अच्छा जो जीवामृत रे लाभ है से वो है डाला बूटा रे जो अनावश्यक पोषक तत्व मिलो तेते से जो पाची जड़ो ते तेरी जो है खाद बनाई जाओ, जो कि माटी दे लाभदायक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु रे तक इतरी संख्या बढ़ाओ और फसलारी अच्छी पैदावार हो और ते तेरी गुणवत्ता दे सुधार हो ते तेरी तक जो है कई दिन तक खट्टी छा कट्ठी करी कर ते तेरा इदे जो है मिलाई जाओ और ते तेरी पत्तिया पांदे छिड़काई जाओ। तो जो बीजामृत रे फायदे से एक जैविक गोल है और इतरा प्रयोग जो है बीज शोधना रीत तक करा जाओ और जितनी बजा ते ज़्यादा पौधे दे फल और फूल लगो। और जो इतरे फायदे है से वो आसा रखे थोड़ी देर बाद सामने आओ, क्योंकि जो फसला दे बीज लगो और फूल लगो तो से कुछ तो जड़ो और तेते के जड़ने रीत तक जो है बीजामृत लाभदायक है। इतरी तक बीजामृत रा लाभ लेना बहुत ज़रूरी है और फसल ज़्यादा उत्पादन इतना ज़्यादा हो और इदे भी ये सक्षम है। और जो वापसा है ये माटी दे पानी और आवारा सही तरह साथी जो है संतुलन बनाओ, जो माटी के पानी जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो और जितनी असर जो पात और जो भी ऐसे खाद पाई रखो ते तरह शड़ने गलने का भी है अच्छी तरह साथी लाभदायक सिद्ध हो। और मान लो कि थी जो पौधा ज़्यादा पानी होते बजाते खराब होने लगी रहा ते तेरी जड़ा के भी है ठीक रखो और तेरे जो है वापसा ते तेरी जड़ा के ठीक रखने और ते तेरा ठीक तरह साथी चलने दे काम करो। और अगली जो है आच्छादन ये इतना मतलब है कि खेचारी माटी के अच्छी तरह साथी रखना और माटी दा जो है कई प्रकार रे उर्वरकता साथी पैदा करना और तेरी सूखी घा पाची पराली जो भी सूखे असागे वो पड़े दे पत्ते ते जो मान लो जड़े असें मा अजकल आल और आदा ही लगाई रखा तेते पाते जो असें पात पाऊ है घा पाऊ है तेते नमी रखने रे तक तेते के जो है आच्छादन बोला जाओ। और ये भी माटी का एक ही तरह नमी बनाओ, बहुत गर्मी पड़ो तेतेरी तेते ते भी है तेते गर्मियाँ ते भी फसला के बचाई के रखो और ये जो शाणा निकलो खींचा दे तेते के रोकने का भी काम करो और ये इच्छाती जो है माटी उपजाऊ बनी दी रहो और इच्छाती जो है खींचा दा नमी भी बनी दी रहो। तो इतों की सारी गलबात ए वैसे अपने श्रोताओं के सुनाई लिए ए लोकगीत सुनो तुसे ए लोकगीत।

कमलेश ठाकुरारी आवाज आते सुना तुसे ए लोकगीत तो एबे बात कर लीए प्रधानमंत्री जनधन योजना रे बारे दे। तो देखो जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना री घोषणा असरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ए 15 अगस्त 2014 के कीती थी। इतरे तहत लगभग देश वक्ता जो है 11 करोड़ खाते खुले थे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है गरीब जनता री आर्थिक रूप होते तिन्ना के मजबूत करने री खातर चलाई राखी, जे दे देशवासियों थे प्रार्थना करी कि बैंकों दे खाता खोलो जिनारा पहले ते कोई खाता नहीं है या कोई तिनारा किसी भी बैंका दे अगर कोई खाता नहीं खुले रहा इबू तक। तो इते योजना रे तहत जो सुविधाएं दे ही जाओ से वो गरीबा दे हिता दे ध्याना दे रखे कर बनाई दी है। तो योजना रा लाभ लेने री तक सभी ते पहले माणू जो है भारतारा नागरिक होना जरूरी है। इते योजना रे तहत खाता धारकों के 30,000 रुपये री न्यूनतम राशि दे जाओ और अगर कुछ दुर्घटना हो जाओ तो इसके 1,00,000 तक का बीमा दिया जाओ। तो इत योजना रहते हैं खाताधारक जो है 6 महीने रे अंतरालो पांदे 5,000 तक का

ऋण या कर्ज बैंकों ते सीधा ले सको, जो कि तिना के आत्मनिर्भर बनाई सको और तिना के किसी सामने जो है झुकने की जरूरत नहीं पड़ो। तो गरीबों के ध्यान दे राखी कर ये योजना बनी और लाभदायक भी सिद्ध होने लगी रही। और इतने के जो है जीरो बैलेंस वाली ऐसे सुविधा भी बोली सकूँ है, क्योंकि अगर किसी के खाते दे कुछ भी नहीं है तेबे भी इतने योजना दे से माणू जुड़ी सको और पैसे इतने पाई सको, जमा करवाई सको। तो योजना रे तहत जो खाते खुलने तिना खे रुपए कार्ड आरी सुविधा मिलनी और एटीएम आरी तरह ही एदे भी जो है बैंका ते पैसे काटी सको है जितने तुसा काटने चाहो। तो योजना रे दौरान अगर तुसारा खाता खुला दा है और तुसे पैसे जमा करवाए दे तो तुसारे फोन आ पाते भी संदेशारी सुविधा उपलब्ध है, तुसे देख सको कि आसे जो कितने पैसे रही रहे आसर बैंका दे और कितने पैसे जो वो बची रहे और कितने आसा जमा करवाने। तो खाता धारक अगर कसी माणू के अगर पता नहीं हो तो तिसके भी बताई सको कि तुसे इतने योजना रहते हैं अपना खाता खोली सको, कहूँ कि कई बारी इड़ा हो कि दूर दराज वाले जगह दे माणू के पता नहीं लगता और गरीबी री वजह ते भी कई बारी माणू सोचो कि माँ कितने पैसे जमा करवाने मांगे, उन्हें भी इतने पैसे बाधा ते जमा करवाने के या नहीं, तो ते तेरे लिया ज्यादा ही रो से तो बताना चाहिए कि इतने योजना दे जो है असे अपना जो अकाउंट है से जीरो बैलेंस साथी भी खोली सकूँ है। तो गरीबी दूर करने रही तक भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशक के बेहद महत्वपूर्ण बताया, जे माणू वित्तीय सेवा से वंचित रहो तो आसारा देश दे बाधा बनी दी रहनी, कभी भी आसारा देश जो है आगे नहीं बढ़ सकता। आर्थिक रूपा से अच्छा बनाने रही तक योजना री जरूरत पड़ी और ए जो है एबे लाभदायक भी दिन प्रतिदिन होने लगी रही। तो इस योजना रे तहत असे जिस भी बैंक दे अपना खाता खोलू ते तेरा ब्यौरा देना पड़ो और ते से जो है डाउनलोड करना पड़ो और जरूरत पड़ने पाते जे किस तरह आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड नंबर चाहिए और देखे जरूरी जरूरी दस्तावेज उन्हें आपो आगे बहुत जरूरी है, या तो भी अपना जो भी सारा मतदान कार्ड हो या तो ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड या कुछ भी वो असागे सत्यापित करने वाला जो भी आधार कार्ड समेत जो भी इतने मांगा जाओ उसे देना जरूरी है। और जमा राशि पाते दे ब्याज भी मिलो और 1,00,000 रुपया तक का दुर्घटना बीमा है और न्यूनतम राशि जो है बचाने री दे जरूरत नहीं होंगी क्योंकि ए कम पैसे ते भी शुरू करी जा सको। तो भारत दे किथी भी पैसे भेजने री सुविधा इदे है और सरकारी योजना और लाभार्थी के इन्ना खाते रे माध्यम ते जो है लाभ मिलना। तो 6 महीने तक खाते अच्छी तरह से चलाने साथ जो इदे ओवरड्राफ्ट री सुविधा भी दे जानी और पेंशन बीमा उत्पादक तक भी पहुँच सको है और दुर्घटना बीमा तो इदे ही है अगर 45 दिन तक इतना इस्तेमाल करी सको है कम से कम। और इतना उद्देश्य जो है से है कि कोई भी बार तारा माणू जो है बिना खाते ते ना रहो और खातादार अगर कर्ज लेने माणू आगे जाओ तो से कर्ज लेने किसी माणू आगे ना जाई कर सीधा अपने बैंक ते ले सको और तेदे जो है थोड़ी थोड़ी राशि करके ते चुकाई सको। और इदे तो ये भी सुविधा है कि कम आते कम जिस बच्चे की आयु 10 साल है से भी जो है बैंक दे खाता खोली सको। तो देखो जी सरकार तो आसारी सहूलियत तक हमेशा कोई ना कोई योजना चलाती रहो, लाभ लेना जो है आसारा काम है और जागरूक रहना आसारा काम है, तो आसे जरूर जो है इन्ना योजना रे फायदे लेने चाहिए ताकि जो है गरीबी देशा ते मिटी सको और आसारा देश भी अच्छा और आत्मनिर्भर बनी सको। तो इतो थी आसारी गलबात, एवे सुनो तुसे लोकगीत।

अर्जुन गोपाला री आवाज दे सुना तुसे ए लोकगीत कार्यक्रम दे खास खास खबरा। स्वास्थ्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री धनीराम शाइंडल जी वरिष्ठ नागरिकों के समान सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन जीवने री तक सामूहिक प्रयास करने पांदे बल दिया। सोलन जिले रे कंडाघाट उपमंडला रे सायरीघाटा दे विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पांदे राज्य स्तरीय कार्यक्रम दे बोलने लगी रहे थे। बोला कि वरिष्ठ नागरिक मारे समाज जोरी अमूल्य धरोहर है और इन्ना खे अनुभव ज्ञान और जीवन मूल्यों ते समाज खे आसरियो मार्गदर्शन करो। तो प्रदेशा दे जनगणना 2027 रा पहला चरण आजाते औपचारिक रूपा ते शुरू करा गया। इस चरण दे मकान सूचीकरण और मकानों री गणना रा काम पूरा किया जाना आजो ते 15 जुलाई 2026 तक

प्रगणक घरे घरे जाईकर मकान और परिवारों री जानकारी लेनी, इस बीच मकाना री स्थिति केड़ी है, परिवारों री क्या स्थिति है, पानी पीने रा ए बिजली शौचालय नाज और घरेलू उपकरणों री उपलब्धता जेड़े 33 प्रश्न पूछे जाने, ए डेटा देशा री विकास योजनाओं री तक बेहद जरूरी है। इत साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है दूरदर्शी मंचा ते पिछले 12 वर्षों दे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबीरा प्रयासा रे आधारा साथे जो है भारत दे उल्लेखनीय उन्नति करी। इस दौरान सरकार द्वारा गरीबों किसानों और औरता रे कल्याण रही तक बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जो कि लाभदायक सिद्ध होने लगी रही। तो राजधानी शिमले दे पिछले काल दृष्टि बाधितों द्वारा और आज जो है सचिवालय रे बाहरे प्रदर्शन किया, इस दौरान कुछ वक्त तक यातायात भी बंद रहा जितनी वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बोला कि पिछले दशक देशा दे बुनियादी ढांचे दे सुधार हुआ, काम ठीक तरह साथ ही हुआ। सोशल मीडिया पांदे माई गांव री एक पोस्ट साझा करते हुए नरेंद्र मोदी जी ये बोला कि सरकार विकसित भारत री परिकल्पना के साकार करने री तक अगली पीढ़ी के अच्छी तरह साथ ही तैयार करने री तक जो है वचनबद्ध है। माई गांव माई पोस्टा दे पिछले 12 वर्षा दे जो भी काम हुए बदलाव हुए असि वो बहुत ज़रूरी थे और तिनारी जो है आवाजाही और भी आगड़ी जो है तेज करनी ते तेरी वजह से जो है विकास सारे नए रास्ते खुलने एड़ा तिन्ने बोला। तो यो तो थी सारी खास खास खबर। तो देखो जी मानूरी तक अगर मानू मेहनत करो तो मेहनत आरा फल जरूर ते इसके मिलो। तो कर लिए थोड़ी जी ये गलबात। तो मानू रे जीवना दे या बच्चे रे जीवना दे किसी भी रे भी जीवना दे अगर मेहनत नहीं है तो इसके पता नहीं लगना कि जीवन आगे किया बढ़ना। अगर कोई भी छोटी बड़ी मुश्किल आई जाओ तो किया ते साथ से सुधार ही सकूँ है, क्योंकि अगर मेहनत किसे किन्ने नहीं वो करी दी तो से जो है पीछे पिछड़ी जाओ और पीछे अटी जाओ। अगर जो मानू मेहनत करो से आसमानिया जो बुलंदियाँ छुओ ये पक्की गल है। तो मानू रे जीवना दे मेहनत आ मायने बहुत राखो। मान लो एक ऐसे छोटा जा उदाहरण लो, एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार है, अगर ऐसे तीसरी मेहनत तो देखे देख देने ते पीछे की इन्हें क्या करा होगा से 100 बारी ते ठोकरा लगाई के तेसा गढ़ी के अगर ठीक बनो से ते भी इसे सामने आओ तो देखो कितनी मेहनत है और ते भी जो बाधा ते से मूर्तिकार कहलाओ। नहीं तो से क्या कर सको, ना तो तीसरी रोजी रोटी चलनी और ना ही कुछ काम होना। पर मेहनत करी कर सब कुछ आसान है और सब कुछ मानू पाई सको है। एक छोटा जा उदाहरण ऐसा अपने किसान जिम्मेदार आ रही लऊ ते मेहनत करने ते बाद से अपने फसल बीतरे लियाओ। अगर किसान कड़ी धूपा पाँदे कड़क दी ठंडा दे अपने डोरवा खींचा दे नहीं जाओ तो क्या से फसल आउनी नहीं आउनी से कदी भी नहीं आउनी। अगर असे तेसा टाइम टाइम पाँदे तेरा छाणा नहीं पटूंगे या तेसा देखूंगे नहीं तेसा छांटूंगे नहीं तो नहीं से कदी भी असे फायदा ले सकते अपने डोरवा खिचा। अगर मेहनत करूंगे तेसा टाइम टाइम पाँदे देखूंगे ते तेरी सिंचाई करूंगे और तेरे जो है ते भी अच्छे फल आउने अगर असे मेहनत करूंगे। तो जीवन आरा भी यही नियम है, अगर असे अच्छा काम करूँ अच्छी मेहनत करूँ तो आगे बढ़ी सकूँ है। तो ये तो त्यार असारी गल बात जानते जाते असे अपने श्रोताओं को सुनाई लीए ए लोकगीत। सुनो तुसे ए लोकगीत।

जय श्री शर्मा री आवाज़ा दे सुना तुसे ए लोकगीत एते साथे साथे आ सारे कार्यक्रम रा वक्त पूरा होने वाला है। तुसे खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। देव माखे इजाज़त। सभी सुनने वाले के राम राम।

कौशल गेहु को लापचेवा मीनांग मोदी खा छमु दुखसिया तेने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की नांगदु तेने जोंद गेला तेने विभिन्न क्षेत्र के खा छमु योगन तेने ट्रेनिंग गेवा त्यासिया ते यांग कंप्यूटर की कॉलेज ना छे हेल्थ केयर की कॉलेज ना छे यांग पर्यटन की कॉलेज ना छे सोंगताना ना छे इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉलेज लमना ना छे ते यांग ऑटोमोबाइल सर्विस की कॉलेज लमना ना छे कृषि की कॉलेज लमना ना यांग ब्यूटी चे जो वेलनेस के कोल लमना ना खांग खांग रंग थपा योग खांग यिन ना तेने इले ट्रेनिंग मांगबू जी थपासिया तेन ट्रेनिंग थप सर जी गबला तेने खोंबो के एक से जी तांगू सुसिया तेने वो तो एक से तांग सर जी गबला तेने खोंबो के ला सर्टिफिकेट का थपासिया तेने वो तो सर्टिफिकेट दे तेने उजरे ग्यार कब लिंक दो तेने चले डोसिया तेने ई योजना की तेने खाक छे शो तेने विशेषता दे चीन पास ना तेने ई प्रैक्टिकल योनतेन फोकस सुसिया तेने ई योजना टू गेला तेने लपना चिकपू से मंदला नेम्बोला जोंद गेला लेवा वाते आसिया ट्रेनिंग थोजे गबला तेने टू गया रंग लेवा गोसुना दिखासिया मी जन्मा गेला लेवा तेना दिखासिया गेल्स चुगुन गे भी तेने जोंद गे फिल तेने ई योजना मीना मते फंतो छे जलो याकपू इंदुसिया तेने खोंब गेल खुकअप सुमा छे जलो याकपू जी का इंदुसिया चिलसना गेल्स चुगुन की छे तेने यहाँ मी मेपो योकन ग्यारा होते गे मांग छे टू हलम जी ना तेने यहाँ थनलो के लोपचुंग मोथन छे ते यहाँ इजुटुपा वेकेशनल ट्रेनिंग रहा होते गया नैन मचक्यूटल दे तंगन जी का योगा तेने ई योजना की क्यों नहीं लो तेने स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग छे होते गे नैन जी लो तेने रंगी मिसे यर गे तंग न्यागासिया ने बोला खुम्बो की पेंजर वायर गे छावासिया अन्य पोमो गेल तेने सशक्तिकरण जोना की फिला तेने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की खाचमो भूमिका जिका योगासिया गेलखप के अन्य गेल तेने अलग अलग सेक्टर टू ट्रेनिंग तेज चिलो तेने खुम्बो गेल आत्मनिर्भर व जोसिया इन नेलो तेने खोंब गेल पेंजुरु की नेतांग व शांति छांडवासी याकपो छांडवासी इन बोला चिसो नांग खोंब गेवि जो भागीदारी योकन देवा मांग दुपुंडासिया यांग हिमाचल प्रदेश से जिलो खासकर उजिरी तेने पीति ठुपा जगर हिन्ना तेने ई कौशल विकास मीनांग मते खास छमु छे याकपो योगासिया मी गेल यांग चिस पर्यटन की कॉल छे होम स्टे चुक से चले दो कुछ बहुत की कॉल छे यहाँ हुजीरी चला गया सो ना रंग हुजीरी चला गया कॉल छे धने सशक्त कृषि से जो पर्यटन की कॉल छे यहाँ डिजिटल सर्विस रंग होते की कॉल लपना धन मीना यहाँ पर ओकासिया धन इन लोग मी गल लेवा फेन्ना के खुकअप समाज का थम रासिया नियम बोलो हुजीरी रिक्शुंग छे लोकसु लुकसु गल धने खातर जोनावा योगासिया तेने चिलसने दांग थ्रिंग था टूरिज्म मीनांग मत मांग दुख देखासिया तेने इन येलो उजिरी जोंद गेला खुकअप मीनांग मत याकु छे सुमा वा थपकासिया तेवे इवि नांग दु तेने यांग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वा थपकासिया इवि नांग दु यांग टू गे छे कॉलेज सिलिन सिलपेन छे यांग कोक्स मेकन छे ओते गे यो ना तेने ओते गेला इगि ग्यू नेलो तेने टेक्निकल छे यांग डिजिटल छे सॉफ्ट स्किल रंग ओते गे ट्रेनिंग वा त्यासिया तेने थोजे गबला तेने खोब गेला सरकार के खाने सर्टिफिकेट का थपकासिया तेने उजी गेलखप की तेने जगह लिंग ना तेने यहाँ इसूपा सेंटर मांगपो योगासिया होते गेल पूछल तेने रंग थपो योकन कोर्स के जोना दिखासिया तेन बोला माओंग पो भी फिर तेने यहाँ ए आई छे तेने ड्रोन टेक्नोलॉजी छे रोबोटिक छे साइबर सिक्योरिटी रंग होते गे को लपकासिया तेने ई सू कांग ने दिखा पास ना तेने लो टू लो चोंग ने शिपचु शेंग ड्रेन तोले कांग ने दिखा सिया तेने ग्यार पवी तेने यिन से नेशनलिटी योंग गुशु सिया तेने गुजरे आधार कार्ड छे तेने बैंक के खाता छे तेने पासबुक साइज फोटो रंग तो क्या गो गुशु सिया तेने यंग सू तो जी कांग नी यो ना तेने स्किल इंडिया डिजिटल हब की पोर्टल ल पूछ लो ऑनलाइन कांग ना दिखा सिया तेने ट्रेनिंग थोन ची कब ला तेने टूर गेला तोंग गे वा थोपकासिया ते यहाँ सु तोंग जे स्कूल थन चे कॉलेज थन जिलो ते यहाँ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स तो नहीं यन ना ते ई योजना की क्यों नहीं लो ते जोना में नाम ते यहाँ पर दूसरे सुनाइन ते ई योजना की मिल खोरा ई दो की मी गेला स्किल जोना छे ते मी लक्ष्य के वा यकोन गेला सर्टिफाइड जोना छे ते उजिरी मी गेला आत्मनिर्भर जोना इन सिया एम जी इन ता एक कबला अन्य दिखी डोमा के लुनिया बुझिंग नाइन

ता इलुन्यम्पो के काबला थ्रिंग के खास लोंडा रिंगे नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना नंगनमा नेलु पूरे गलखप रु बुनियादी ढांचा के यर्गत मापुदे दूसिया सोशल मीडिया ला दंग माई गो पोस्ट चुकचिलोम नरेंद्र मोदी सेना सरकार विकसित भारत के म्यू लड्डू चुना की फिला माओं पर भी फिर ले पेतेसिया माई गो पोस्ट लाथने नंगनमा की लोचुंगी वि नंग दू गलखप वि बुनियादी ढांचा गेल गुरुवा चुन दे गेल हाईलाइट जो प्रुसिया ई विद्युन लो तेने लॉजिस्टिक का मीना शांति छावासिया निम्बोल गलखब यर्गे तंगना की फिल लमसुमा जी का इंदुक्सिया प्रदेश जनगणना नितो निशब्दुन वे तेने गांशो चरण थिरिंग ने लो कोसु चुना हिंदुसिया ई वि नंग दो तेने मकान सूची करन चे खंब गे वि गन्ना वाजोसिया ई जनगणना की तेने आगामी जुलाई की तारीख चोंगा ने लो तारीख चोंगा रूप इंदुक्सिया तेने थिरिंग नेलो जुलाई की तारीख चोंगा रूप तेने खंब खंब गेरु पूछलो तेने खंब गेचे खंबी नेतांग गेचे जिमे गे कोल जानकारी नेंगासिया तेने इसेना तेने टीवासुम जो सोसुम थियासिया खंब खंबी कोल छे जिमे गे कोल छे छुतुना गे कोल छे बिजली गे कोल छे छक्सा छे तेने अनाज छे तेने खंब ने वंचला गे कोल थियासिया तेने इ डेटेड तोले तेने जम गलखप ल तेने यर्गे जोना योजना गे फिल्म ना मते खाछम योगासिया ओति बिल तेने इलाई थार खेलचुना गे फिल्म तेने मिगले यतो या पोचे जो रोजिस दुख तेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे तेने विजनरी लीडरशिप की नांगला तेने ग्याकर हालेना यर्गे जुए पुरुषिया

ये लोचुंगी के नांग ला तने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की ग्यू ने लुचुंग सोंग सिया। वोते से ने सरकार मेतपो गेचे, किसान गेचे, आने पुमो गेचे, जोंदे गेवी फिल मिनां मते खाचमो योजना डारे वा जुएवन सिया। तेने राजधानी शिमला रो तेने गनमा शांगमा गुब्ग्यो दुंजु तेंगा ने लो तेने लुई टाकन डिमांड गेवी फिल तेने मिग थोंग मन मिग थिरिंग सेक्रेट की गोरु प्रदर्शन चोरुक्सिया तेने होते से ने तेने होते रे यल हमाला डोएंगे ला न्यूसे ट्रैफिक चुंज लो खाओ चुंग सोंग सिया। तेने राजेश ठाकुर खोंबो गेवी तेने संगठन के मेंबर से ने सरकार खोंबो गेले तेने अनदेख जोरुक्सिया तेने ई किन्या बोलो तेने बैकलॉग चेज लो तेने खोंबो गेला आरक्षण नोंग सेवा खोंबो गे शुई सोंग सिया। तेने सरकार यहाँ खोंबो गे ई मांग ला पूरा जो जो तेने खोंबो गे ई आंदोलन ला यहाँ जारी पड़ना हिंसिया यम जी इन त एक कबला अन्य सिरिंग डोमा की लुन्य बोशिंग नाइन।

स्पीति कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए लोकगीत। आइए पहले सुनते हैं सुनीता रघुवंशी को।

लोकगीत अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और आकाशवाणी एफएम शिमला से भी सुन रहे हैं।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। वे आज फतेहपुर क्षेत्र के तहत कुठंडल में स्थित गुरुद्वारा श्री नानक ज्योति साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक समागम के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का जीवन त्याग, तपस्या, सेवा और मानव कल्याण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने लोगों से गुरु साहिब की शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर समाज में प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान राज्यपाल ने नवनिर्मित श्री दरबार साहिब भवन का विधिवत उद्घाटन भी किया। केंद्र सरकार के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण कार्यक्रम के तहत राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज कांगड़ा जिला के ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का ये प्रोजेक्ट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इस दौरान सांसद राजीव भारद्वाज और विधायक सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि धर्मशाला विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और स्मार्ट सिटी परियोजना सहित कई बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को जन समस्याओं का समाधान तीव्रता से करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में RDG बंद होने से सरकार को वित्तीय घाटा हो रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में निरंतर जन कल्याण की प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण शिमला जिला में वर्ष 2023 और 2025 में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था और सरकार ने प्रभावितों तक हर संभव सहायता मुहैया करवाई है। आकाशवाणी शिमला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1955 में आज ही के दिन आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। करीब 71 वर्षों के इस सफर में आकाशवाणी शिमला ने अपने श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं। आकाशवाणी शिमला के उपनिदेशक अभियांत्रिकी कश्मीर सिंह ने कहा कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 71 वर्षों में आकाशवाणी शिमला ने विश्वसनीय व मनोरंजन से भरपूर जानकारी लोगों तक पहुँचाई है।
4: बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, इस आदर्श के माध्यम से आकाशवाणी ने 71 वर्षों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अथक प्रयासों से कार्य किया है और श्रोताओं को विश्वसनीय और सशक्त तरीके से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। श्रोताओं, इतने वर्षों में आपने आकाशवाणी परिवार पे अपना विश्वास बनाए रखा है, वो विश्वास आप आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे और अपनी फीडबैक आकाशवाणी को समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम्स को और सुधार सकें।
3: केंद्र के अतिरिक्त कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा ने कहा कि आकाशवाणी शिमला अपनी स्थापना से लेकर अब तक हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और विभिन्न बोलियों के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने श्रोताओं से कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव देने को भी कहा।
5: इन 71 वर्षों के सफर में हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जन जन से जुड़े। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उनके बारे में भी लिखें, और यदि आपके कोई सुझाव है कि हम कार्यक्रम में क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं या आपकी जो लगता है कि हमारे को ये कार्यक्रमों में कैसे सुधार किया जा सके, वो विचार हमारे से साझा करें। हम प्रयास करेंगे कि अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ा सकें।
3: समाचार एकांश के प्रमुख व सहायक निदेशक रितेश कपूर ने कहा कि आकाशवाणी शिमला ने दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने श्रोताओं का आभार जताते हुए भविष्य में भी जनसेवा की भावना से कार्य करने का भरोसा दिया।
6: प्रादेशिक समाचार एकांश ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करते हुए निरंतर तत्परता, सटीकता और विश्वसनीयता के साथ श्रोताओं का विश्वास अर्जित किया है। मैं प्रादेशिक समाचार एकांश

0: की ओर से सभी श्रोताओं, सहयोगियों और विशेष रूप से युवाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके विश्वास और सहभागिता ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी हम इसी समर्पण, निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ आपकी सेवा में निरंतर तत्पर रहेंगे।
1: राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के भेड़ पालकों व घुमंतू पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि लंबे समय से बंद पड़े भेड़ पालन परमिट को सरकार ने मंजूरी दी है। मनोज ठाकुर ने कहा कि परमिट की सुविधा मिलने से इस व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले ये परमिट हर वर्ष रिन्यू होते थे, जबकि अब इन्हें 5 वर्ष तक जारी करने की व्यवस्था की गई है।
2: सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों को आज दिन तक परमिट नहीं मिले थे और जो भेड़ बकरियां चराना चाहते थे उसके बावजूद भी वो चरा नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए इसमें परमिट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए इनके पशुपालकों का पंजीकरण होगा और उन्हें शीघ्र परमिट जो है वो जारी किए जाएंगे।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कांगड़ी कार्यक्रम।

हिमाचली बोलियां अंदर कांगड़ी कार्यक्रम च असां अपने श्रोतियां दा बहुत बहुत स्वागत करदे। जिस पासे दिखा उस पासे बरखा बहार, कांगड़ी कार्यक्रम च कबूल करा वंदना राणा दा नमस्कार। श्रोतियो, आकाशवाणी शिमला स्थापना ध्याड़ी दी तुसां सारें जो बड़ियां बड़ियां बधाइयां। आकाशवाणी शिमला ने अपनी लोक संस्कृति जो अच्छे दिनें तक संजोई के रखा है, कने आकाशवाणी शिमला च अपने सूबे दियां खबरां भी श्रोतियां दी खासी बड़ी पसंद हन, कने इस पर लोकां दा श्रोतियां दा भरोसा अजे तक बनिया है। कने आकाशवाणी शिमला पर जड़े जी तुसां लोक गीत सुनते हैं, होर बथेरे कार्यक्रम सुनते हैं, सह दूरे दूरे तक लोकां दी पसंद बनी चुक्या है। आकाशवाणी शिमला दी जड़ी स्थापना ध्याड़े दियां तुसां जो असां मुबारकां दित्तियां हन, कने तुसां दा प्यार तुसां दा भरोसा इन्ना ही आकाशवाणी शिमला च बनिया रहे। श्रोतियो, दिखा अजकल जड़ा मौसम है सह भी दिखा बरखा होआ दी है, कने जित्थों गर्म इलाके दे लोकां जो गर्मी ते राहत मिली है उत्थों पहाड़ां च ठंड भी बधी है। इस करके पहाड़ां दा रुख सैलानी करा दे हन, तां हल्के गर्म कपड़े अपू सौगी जरूर रखन, कने छतरी अपू वल जरूर रखन। कियां पहाड़ां च इकदम मौसम बदलदा, कदी धुप हुंदी कदी चानचक बरखा लगी पौंदी है। इस वरी पहाड़ां च मौसम इन्ना बदलिया है, जून के महीने च बरखा होआ दी है, उच्चे पहाड़ां च बरखा होआ दी है। शिमले च भी तुसां दिखा दे हन इकदम बरखा लगदी, कने खूब सारी बरखा हुंदी है, तां दे मौसम च छतरी हो तां बरखा ते बचाव हो सकता है, कने अपनी सेहत भी ठीक रहेंगी। कियां जी अगर सिजदे हन बरखा च तां बीमार भी हुंदे हन, तां इस करके थोड़ा बचाव इस मौसम च रखना होगा। कियां सेहत होंगी तां ही तुसां कांगड़ी कार्यक्रम शिमला दे इस सुन के, कने होर कार्यक्रम दा आनंद भी तुसां आकाशवाणी शिमला दे कार्यक्रम दा लेंगे। जे असां दे श्रोता ठीक ठाक होंगे, सेहत ठीक होंगी, तां ही कोई सुनने दा मज़ा आउंदा है। सेहत होंगी तां ही सब कुछ खरा लगदा, कने हर चीज़ दा आनंद आउंदा है कार्यक्रम दी।

बिन बरसे चली जाया हूँ बदरा, अनिता परमार की आवाज़ च सुन दे थे तुसा ये लोग गीत गल गाते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की प्रमुख खास योजना है। इसका मकसद छोटे कारोबारियों, अपना रोज़गार करने वालों, दुकानदारों, कारीगरों, स्टार्टअप्स कने छोटे कारोबार जो बिना बड़ी गारंटी ते ऋण मुहैया कराना है।

योजना दा मकसद है निक्के कने छोटे कारोबारियां जो वित्तीय मदद देना, अपना रोजगार कने कारोबार जो बढ़ावा देना, रोजगार ते नए मौके पैदा करना, कृषि लघु उद्यमां जो सस्ता कर्ज मुहैया कराना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दे तहत ज्यादातर 20 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाता है। शिशु मतलब शुरुआत च 50,000 तक का ऋण नया कारोबार शुरू करने वालों जो मिलता है। कारोबार जो बधाने ताई 50,000 एक ते 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, जिस जो किशोर श्रेणी च रखा गया है। तरुण ताई 5 लाख ते 10 लाख तक का ऋण मिलता है। तरुण प्लस आली श्रेणी च 10 लाख ते 20 लाख तक का ऋण रखा है। ये उन्हां कारोबारियों वास्ते जिन्होंने पहले मुद्रा ऋण का सही ढंगे ने इस्तेमाल किया हो कने कारोबार जो बढ़ाया हो। इस कुण आवेदन करी सकता है, जियां कि छोटे व्यापारी हन, दुकानदार हन, सेवा प्रदाता, कारीगर, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, जनानी कारोबारी, स्टार्टअप कने स्वरोजगार करने वाले माणू, छोटे कने निक्के कारोबार। जरूरी दस्तावेज क्या होंगे हन? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पछाण कने पते का जरूरी प्रमाण, पासपोर्ट आकार की फोटो कने कारोबार बारे दस्तावेज, जड़ा जी तुसा कारोबार करते हन उसका उसके जड़े जी कागज़ होंगे सै दसना पौते हैं, कने बैंक खाता ब्यौरा, जरूरत के मुताबिक व्यवसाय योजना यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कने तुसा इना संस्थानों च आवेदन करी सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। खास फायदे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दे हन। आम तौर पर बड़ी संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होंदी है। जनानिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कने अन्य पिछड़ा वर्ग दे कारोबारियां जो खास प्रोत्साहन दित्या जांदा है। स्वरोजगार कने छोटे कारोबारी दे विस्तार जो मदद मिलती है। दुकान, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग जिते कारोबार करने च प्रधानमंत्री मुद्रा योजना च फायदा चुकी सकते हैं, कने अपने कारोबार चो नए भंग दे सकते हैं। तो ये जानकारी थी तुसों जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दी, कने हुन सुनते हैं लोकगीत ओम प्रकाश कने साथियों की आवाज़ विच।

दि आकाशवाणियों शिमला केंद्र शु स्वंगलो प्रोग्राम रे रादी केंदी भत्ते दी गिप्रोमिला तरफे राम राम जुले दीरा सादे सादे सादरी केंदी भत्ते दी आकाशवाणी शिमला स्थापना दिवस आईने बधाई लरान रिजुम बोग छना साल सस्कुराऊ नींजो सांगारी तोक की ध्याड़ा में ते कुरिमाना शत्रु जूनारी आकाशवाणी शिमला स्थापना शुते फोमे शुमनीजो से दिसालो दि सफरारी बहुजन हिताय बहुजन सुखायो आदर्श रसादे आकाशवाणी शिमलाई एनो स्थापना उथल निये रेडियो रेरा दुथल जी पाठी पाठी कार्यक्रम अर चला चलेगी तो धीरा सादे सादे हिमाचलो समृद्ध लोक संस्कृति रसादे हिमाचलो आऊँ बोलीर तुदुर दुर बचा सिम पाठिले एनो अहम भूमिका आकाशवाणी शिमलाई निभा चलेगी तो इच फी यजा बधाई केंदिरा रिजुम बोग आकाशवाणी शिमला स्थापना दिवस हो तो की छान प्रोग्राम ओहेन जी गप्पा लादन सहित सादिरे तो प्रोग्राम अरी इमिना खास खास खबर अरकेन जी जरूर रेरो नी दिरा सादे एक भारत श्रेष्ठ भारत तो पाठी लगल गप्पा शापोगो हिंदू स्वांगलो रूठे रूठे गीत गुरेर केन जी रेरो नी दिरा सादे हिंदू बुजुर्ग अदबारे लगप्पा शापोगो आऊँ हिंदू सेनार तो दुर नेस लसी गप्पा की भाई दो दू आदर ले हिंदू भत्ते वे कुर्मा आईने मस जिम्मेदारी बने पा फर्ज शु हिंदू दोद परवाह ले जूँ शु हिंदी छेरी कुजी दि मोड़े सेणर हिंदू घरो हिंदू टबरो आऊँ कुजमा भत्ते बे मोड़े पूंजी हेंजी माने चदनी दिर हिंदू चूं घर बारो पक्का नी मोठो शुर ते नेस लसी गप्पा प्रोग्राम भी जा दि पाठी लगल गप्पा जरूर केंदा सादे शपोग त दिरा सादे सादे सादी रे राष्ट्र गौरव मेवाड़ो अमर योद्धा महाराणा प्रताप उबारेल इफो कुर्मा शाजी गलगप्पा जरूर जुम्बोग छन महाराणा प्रताप भारतीय इतिहासो दु महान वीर शु अमर नायक शु अदुमिन देशो हर कुर्मा हर मीजी हेनर भत्ते मीजी हमेशा वीरता आजादी प्रतीको रूप हेन जी दो मिन हिद लादनी दु मेवाड़ो रज्जा तुई दुई एनो पूरे जिंदगी आजादी ए सम्मान और रक्षा ले मिथल जी लगा की केते दुई एनो राज्य आजादी रक्षा ले मिथल जी एनो पूरे जिंदगी दुई संघर्ष लते दु वक्तरी अकबर भारतो आईने मोड़े ताकतो रह की कुर्मना मुगल शासक तोई दु वक्तरी भारतो तेया राज्य औ मोड़ूर तोयर दुर अकबरो गुलामी लेरी राजेशु जील जितोयर माने गिल जितोयर पर महाराणा प्रताप दो गुलामी लेरी राजिमा तोई दुई चिट्टन लमा मनेक दे दुई अबेल मेवाड़ो स्वतंत्रता रसादे चिट्टन ल समझौता मलते छन साल संगरव शुमनीजो सतुरीरी हल्दी घाटियों लड़ाई शुते दिरी महाराणा प्रतापे मुगल सेनाओ डटेगी मुकाबला लते हालांकि दोतल दी लड़ाई नतीजा दो पक्षर मतोई पर ताल दुखरे वक्तर ल दुई एनो सेम क्वाजी मालहजी हार ममनेगी दुई याजा एनो राज्यो थालजी संघर्ष ले ठारे शैलते ते सादिरे दी हल्दी घाटियों लड़ाई री दो रंग वीर चेतक ल अमर शुजील दे शहीद शुजील दे तांत चेतक ओ वीरता ओ कहानी हैं जी तो की वक्तर ल रेजा तो दोनी ते दी लड़ाई थल ल महाराणा प्रतापे एनो दू खरे वक्तर ल एनो संघर्ष जारी है तदे दुई बणा दुई गोरे दुब्रवा ल मेवाड़ो रे लाकर यजा ड्राची कंज दे बणा दुब्रवा ल दुई एनो राज्य रक्षा है दुर्ती की मी दू सेवा दुई लते दू हिंदू थल जी त्यागे देशभक्ति आदर्श शु दुई देश देशे एनो मी दु थल जी आऊँ दो राज्यो मीर तुर दो दु थल जी दो दु रूठे थल जी पाठी पाठी खरी बर दो दुई खा

ऐगिल एनो धरती रक्षा थालजी तुखा निलासी एनो पेहरी दो चिट्टन थालका निमालते तात हेंजी दोबी देशो सजे वीर सपूत कुर्दनी त छप्पन गुड़ लवनी ध्याचो वीर हेंजी अब्बे ल हेंदू जिंदगी री पेशे मारनी त दिए गलगप पारा सादे प्रोग्राम मुंडर हेंजरे रोनी मानदासी सक्सी आई दोरा सादी दो लसाक तो दिरी त हेंजरे रोनी दी स्वंगलो गीत।

जी, स्वंग लो धरती स्वर्गो शुडेरा पेशायो तई रे सादी रे आई ने रूठे रेरा जिन जी गीत हैं जरेश तनी त गल गप्पा शपोग हिंदू बुजुर्गत पाठी हिंदू सेना दु पाठी आऊं सेना दुहें जी गप्पा ला दनी दुर हिंदू चूं घर बारो सेणर उमर अंजी द अंजी हिंदू यंग शी यंग्ज यांदिर हिंदू आपा में दु गप्पा हिंजी ला दनी हिंदू आऊं नन नानिर तो दुर दो दुगा पाला दनी छेरिकु जी दीर भत्ते आऊं सेना मीर तो दुर दुर हिंदू घरो टबरो भत्ते मोड़े पूंजी हिंज माने चतनी छेरिकु जी दो तु जिंदगी तजुर्बा ज्ञान है हमेशा घरो टबरा दी सही दिशा कंजमी कम लजा तो दो जी एना दु जिंदगी री दी दुनिया हर रंग कछ रेनी खाश शुभी तांत दो अनुभव सलाई हिंदी हमेशा सही अम कंजा तो तांत हिंदी यंगशी मोड़े सेना दु इज्जत ले जू शिशु दो दु रूठे टेहल ले जू शिशु दो दु क्वज मोड़े जरूरत दु ध्यान जरूर तज जू शु चुंग घर बारा परिवारा मोड़े सेना दु शुभी हिंदू थल छाना कुजमा अगर इगा पल्हा दन की इच आऊँ परिवार तो घर बार तो चुंग घर बार तो दुरती इच मोड़े सेना आऊँ शुभी हिंदू थल जी भत्ते मीर थल जी कुजमा सदवा सा तो ठो आर गए सी दु सेना जी आउरती ए जी घर और काड़ू दी रूठे संस्कार रंजिम कम लजा तो दुर दुरती गे दो जी घर और टबरर छोकन लजी एकजुट लजिता जी रिल एना दु अहम भूमिका दोज निभाचा तो दुर दी घर मोड़े से एना दुए ताकत शुभी सादी रे दो दुए तरजुर्बा नतीजा शुजा तो कि भई दु घर बाते टबरर एना दु बीजा रालिग मिलेगी बणिक तणिक ब्राजा तो दुर चुंग घरो आऊँ यंगशी सेणर तो दुर दो दु दलते दो दु काशी रूठे अमरी चलेगी ते दो दु रूठे सीखो गप्पा जिये घर बारा सुख शांति बणिक ब्राजा तो त घर बाते टबरा दु बीजा ल दा बणिक ब्राजा तो दिल हेले गप्पा की भई तो की दी खर कोई जमाना री भत्ते मीर सादी रे मखोम से रेंजा ब्राजा तो दुर ध्यारी लम्बे मशबे परमा ते या फिगी मीज एना दू घरों से एना थल जी वक्त हूं भी मारता तो दुर जी सही गप मशते छरिकु जी हेनर मी दु जिंदगी री हिंदी लम अबेल मखोसी हिंदू कुर्मा मखोम से हेना रेंजा शुभी हिंदी लम अबेल महुंसी दि कम में दि मखोम सी अबेल महोसी दि मखोम सी कुर्रा कुर्रा दि कम कुर्रा कुर्रा हेनर इच झा दि दुनिया नी अच्छा ली भी छन इच पल खरी आरिया मी हेंदा सा दे शुआ पर उफारे दु मशुआ इच पल खोल हेंदी कुर्मा विश्वास मशुआ कुछ मना हेनर मी दु जिंदगी आऊँ जिंदगी हेंदु तो दिव संगची भरोसा तो सादी रे मुंजे हेंजी सुत जरिन सहित नेसला सिगा पनी रोशो दु आस ले हेंजी मारनी नी रोशो जरिन सहित योगोले की यक तुला आस ले हेंजी मारनी ता दुआई योगोले यक जाते हेनर फेड़े शुआदनी ओयरा मुंजे की सुदु आस ले हेंजी मारनी दी जिंदगी संगची पता तो तांत एंतिग आऊँ मी आऊँ हेंदु सेना हेंदु कछरे तो दुर दो द सादे हेंदी वक्त भी ताच जूं शिशु दो दु गप्पा रेजी जूं शिशु त दो दु जिंदगी उपाठी ची तजुर्बा तो दो लहेंदी फायदा लेप्च जूं शिशु दीरा सादे दो दु हर क्वज मोड़े जरूरत दु लहेंदी ध्यान तज जू शु दी हेंदु इफो चिट चिट परवाई दो दु सेम राजी लाजी कंड्री गप्पा दी की भई बुजुर्ग दु सेहणा दु इज्जत ले दो दी आदर रणरी त हेंदु भारतो कुर्मा संस्कृति परंपरा ले इच हिस्सा शु तांत आऊँ जी एना दु घरो मोड़े से एना दु उम्र अंजी यंगशी मी दु आदर लजा तो दुर दो दु चुंग घर बारा टबरा दु बीजा ईदु उदु परवा रसादे आदर लेल बणेग ब्रवा कुछ मना तो भत्ते टबरा दी एना दु उदु उदु परवा शु जातो त मोड़े दु आदर लय रसादे क्वाजी दसा दे दाल दो दु बीजा बणेग ब्रवा पूरे घरो टबरा जी राज यीशु जी ते इच खुशहाल जिंदगी कड़े चातो दुर तांत थलमुख कर दी गप्पा लता लता गीत दी कुछ जुम्बो की भई हिंदी हमेशा हिंदू या बादु दागु दागी दू अपा मेमे दू नान नानी ए घरो आऊँ परिवारो उल भत्ते मोड़े से एणार तो दुर दो दु हिंदी भत्ते दी आदर ले जूं शु छेरिकु जी आऊँ घर बारा मोड़े से एणा दू आदर शुआ दू घर बारा हमेशा सुखे शांति बणे ब्रजा तो चूं परिवारो मोड़े से

जी गुरे किंजरेश तनी बोला चानणी ना लगियो। इमी ना खास खास खबर केंद्र थल जी प्रदेश जनगणना जुड़ हजार निजो निजो मुंडो चरण तो नी औपचारिक रूपे चूसल जीतो दि चरणारी घरबार सूचीबद्ध लेये घरबार मी चिम कम शुभिलेगी तो दि जनगणना अंजा संग जुलाई ताचे चालेप दो तोगनी संग जुलाई जुड़ हजार निजो त्रुई ताचे जनगणना लहजा जी चुंग चुंग इल जी घर बारत पाठिए घरों टबरत पाठी जानकारी लेपुर दिरी घर बारो दशहरा सादे आऊँ परिवार तो दो दू ढांचा शुई तांधरो तुमी मिती उ पाठी बिजलीए घोपो पाठी अनाजे उइल चुंग घर बारा दू आऊँ तोसी उपकरण छुआदुर दोर शुभिम बारे छो निजो शशुम आधिकारिक सुवाल अर दोज रूपर त दी डेटा देशो तरक्की योजना दू था जी आईने जरूरी शोधो दी आंकड़ा त आऊँ निदेशालय तो दोई मी दू दोरसिनी दि राष्ट्रीय कमारी भत्ते दी सात रन रिमिल आग्रह लातो तान दोरती गे एरे कांगड़ा जिला छोड़ेगी प्रदेशों से दी जिला दू ग्राम पंचायत तदू खर कोई चुने सी आऊँ प्रधान अर्थो दुर उप प्रधान अर्थो दुर दो जी शपथ लेप चुदोर त दोरती

जी मास्टर रामू चांदा हो अपना जिंदगी खत्म हो दिए गुरे रसा दे तो की स्वंगलो प्रोग्राम वक्त यो सहिल जा ले पोगी इजाजत राम राम जुले।

0: लाहौली कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय मनोज सिंह राणा। Prime Minister Narendra Modi is participating in a high-level working session themed

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई और बहनों को हमारा नमस्कार। सनियो, आज मैं हूँ आपके साथ अशोक
1: और मैं दिनेश ठाकुर।
0: दिनेश जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया अशोक जी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे और हमारे किसान और बागवान भाई बहन भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे।
0: बिल्कुल जी, किसान बागवान भाई बहन हमारे स्वस्थ होंगे, और गर्मियों का मौसम चला है तो गर्मियों के मौसम में निवेदन हम किसानों से यही करना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और सुबह शाम जो है अपने काम काज को जो है किसान भी आप निपटाते रहें। साथ ही साथ जो आपके खेतों में जो फसलें लगी है उसमें भी देख रेख का कार्य इन दिनों आप करते रहें। इन दिनों जो कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी है उनमें सिंचाई का अच्छा ध्यान रखें, सुबह शाम सिंचाई करें ताकि इन सभी सब्जियों का जो है विकास चलता रहे।
1: जी, तो आज के कृषि जगत कार्यक्रम में काम की बातों में हम बात करें अशोक जी, तो हम काम की बातों में जानकारी देंगे सब्जी वाली फसलों में जल प्रबंध के बारे में, साथ में पहाड़ी लोकगीतों से करवाएंगे मनोरंजन, और एक जानकारीपूर्ण बातचीत सुनाएंगे जिसका विषय रहेगा ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली सब्जियों का उत्पादन और प्रबंधन।
0: बिल्कुल जी, तो दिनेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे काम की बातों से, और काम की बातों के अंतर्गत जैसा कि आपने बताया कि आज का विषय है सब्जी वाली फसलों में जल प्रबंधन। किसानों, जब भी आप कोई भी सब्जियां लगाते हैं तो उसमें जो है मुख्य कार्य हो जाता है जल प्रबंधन का। अगर आप समय पर इन सभी सब्जियों को पानी देते हैं, अच्छी सिंचाई करते हैं और अच्छी व्यवस्था पानी की बनाते हैं तो इन सभी सब्जियों का जो है विकास हो पाता है और तभी यह अच्छा उत्पादन भी आपको दे पाती है। तो किसानों, जल प्रबंधन की जब बात आती है तो सबसे पहला हम आपको यही बताना चाहेंगे कि सब्जी वाली फसलें खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा अधिक मुलायम और सीली होती है। खाने योग्य पदार्थ में पानी की मात्रा लगभग 60 से 93 प्रतिशत इसमें होती है। एक समान बढ़वार के लिए उचित नमी भूमि में होना इसके लिए जो है जरूरी रहता है।
1: जी बिल्कुल किसान भाइयों, प्रदेश के ऊंचे ठंडे शुष्क क्षेत्रों में बिना सिंचाई के कोई भी फसल नामुमकिन है, परंतु अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक तौर पर वर्षा हो जाती है जिसके चलते सीमित सिंचाई द्वारा सब्जी फसलें उगाई जा रही है। बुआई के अनुसार सब्जी फसलों को प्रतिरोपित व सीधी बिजाई वाले वर्गों में बांटा जाता है।
0: सर, बात चली है सब्जी वाली फसलों में जल प्रबंधन के बारे में, तो सर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रतिरोपित सब्जी फसलों जिनमें कि टमाटर और गोभी वर्गीय फसलें जो आती है कि पहले नर्सरी यानी पौध तैयार की जाती है। प्रतिरोपण सामान्य दोपहर बाद ही किया जाता है ताकि पौधों को कम से कम प्रतिरोपण धक्का लगे और पौधों की नाश दर भी जो है कम से कम हो सके। प्रतिरोपण के तुरंत बाद सिंचाई करना भी जो है किसानों जरूरी हो जाता है, और मौसम के अनुसार अगली सिंचाई 5 से 7 दिन के बाद आपको कर लेनी होती है। सीधी बिजाई की अगर बात करें तो मटर, फ्रांस बीन, मूली, शलगम, गाजर वाली सब्जी फसलों में बिजाई से पहले सिंचाई करने से उचित नमी बना ली जाती है ताकि बीज अंकुरण जो है सही तरीके से हो सके, और सीमित जल उपलब्धता की अवस्था में पंक्तियों में बीज डालने से पहले गार्डन पाइप या फव्वारे से पानी देने से बीज के बगल में उपयुक्त नमी सुनिश्चित होने से बीज जमाव जो है ठीक हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, और किसान भाइयों, हरी पत्तेदार सब्जी फसलों में पानी की आवश्यकता सामान्यता और अधिक होती है। सिंचाई ठंडे मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर और गर्म मौसम में 5 से 7 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी में नमी सब्जी फसलों की बढ़वार व पैदावार के लिए उचित बनी रहती है, और पौधों की पैदावार अवस्था में जल की कमी से फूलों का झड़ना, पैदावार का आकार छोटा होना आम बात है। शुष्क अवस्था के बाद अधिक सिंचाई, जल अथवा प्राकृतिक वर्षा से टमाटर के फलों का फट जाना, बंद गोभी के कलों वो आलू के कंदों में दरारें पड़ना आम बात है।
0: बिल्कुल जी, सर थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक वर्षा होना या सिंचाई करना सब्जी फसलों के लिए हानिकारक रहता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए खेतों से जल निकासी करना भी जो है बहुत अहम बात हो जाती है। खेतों के चारों ओर और खेत के बीच में उचित दूरी पर गहरी नालियां बनाकर अधिक पानी को निकाल आपको देना होता है। कुछ प्रमुख सब्जी फसलों में सिंचाई के लिए दोषदर्शी क्रांतिक अवस्थाएं आती है जिन पर सिंचाई देना जो है अपेक्षित रहता है, जिनमें अगर बात करें मटर की तो बिजाई से पहले सिंचाई करने से बीज अंकुरण व पौध अधिक उचित संख्या में बनते हैं और पुष्प आरंभ होने और फलियों की बढ़वार अवस्था में सिंचाई जरूरी रहती है। प्रत्येक तुड़ाई के बाद भी पानी देना जो है किसानों को लाभदायक रहता है।
1: जी बिल्कुल अशोक जी, और बात करें टमाटर वर्गीय फसलों के बारे में, तो प्रतिरोध

0: रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करें और 5 से 7 दिन बाद दोबारा आपने सिंचाई करनी है। उसके बाद प्रत्येक 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गोभी और गेहूं फसलों की बात करें तो रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई जरूरी करनी होती है और उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद आपने सिंचाई करें। मौसम के अनुसार 7 से 10 दिन के अंतराल पर पानी देना उचित रहता है। बंद गोभी में हेड्ज बनने पर पानी देने से उनमें दरारें पड़ जाती है।
1: बिल्कुल जी, एक सानी बात चली है सब्जी वाली फसलों में जल प्रबंधन के बारे में। जल प्रबंधन आप किस तरह से कर सकते हैं, किन किन खास बातों का जो है इसमें आप ध्यान भी रख सकते हैं। सब्जी वाली फसलों में जल प्रबंधन में अब बात करेंगे जड़ वर्गीय फसलों की। बिजाई से पहले मिट्टी में उचित नमी बनाने के लिए इनमें जो है सिंचाई करें और मौसम के अनुसार सिंचाई 5 से 10 दिन के अंतराल पर जो है करना जो है किसान भाई आपके लिए जरूरी हो जाता है। प्याज और लहसुन की किसान भाई अगर बात करें तो मौसम के अनुसार सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप करें और प्याज का प्रतिरोपण करने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें और फसल उखाड़ने से लगभग 10 से 15 दिन पहले जो है सिंचाई आपको बंद कर देनी होती है। साथ ही साथ किसानों बात करेंगे फ्रास्फिन की, तो फ्रास्फिन में भी बिजाई से पहले फूल प्रक्रिया शुरू होने से थोड़ा पहले फलियां बनने के दौरान सिंचाई करना जो है किसान भी लाभप्रद होता है। आप ऐसे समय पर जो है इन फसलों में जो है सिंचाई जरूर करें।
0: जी बिल्कुल। और साथ ही किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में पानी 5 से 7 दिन के अंतराल पर अवश्य देना है। वर्षा ऋतु में अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बात करें भिंडी की, तो ग्रीष्म ऋतु में बिजाई से पहले फूल प्रक्रिया आरंभ होने के समय और फल विकास अवस्था में पानी अवश्य दें। ग्रीष्म ऋतु में जल निकास का प्रबंध अवश्य करें।
1: अब थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे सिंचाई विधियों और उनके महत्व के बारे में। सने और सबसे पहला हम आपको यही बताना चाहेंगे कि कृषि उत्पादन में जल का सर्वोपरि स्थान रहता है। यद्यपि जल संपदा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों से अग्रणी है, परंतु सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता में हमारा राज्य थोड़ा पीछे रहता है। कृषि योग्य भूमि का केवल 18 से 20% ही जो है सिंचित रहता है और शेष 80% वर्षा पर ये आधारित रहता है। वर्षा का वितरण ठीक न होने के कारण रबी की फसलों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है और खरीफ की फसलों में अधिक वर्षा के कारण जल निकास का प्रबंधन करना अनिवार्य हो जाता है। सैन्य थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब सिंचाई व्यवस्था की बात आती है तो धरातलीय सिंचाई 5 तरीकों से जो है आप कर सकते हैं। सैलाब या बाढ़कृत सिंचाई विधि की सबसे पहले इसमें बात आती है, तो इस विधि में सिंचाई जल को कूहलों या जल वितरण प्रणाली से सीधा खेत के ऊपरी स्थान पर प्रवेश कराया जाता है जो चारों तरफ अनियंत्रित रूप से फैल जाती है। इस जल वितरण पर नियंत्रण ना होने के कारण ये विधि बहुत दोषपूर्ण होती है, क्योंकि इस विधि में संपूर्ण खेत में सभी जगह समान जल वितरित नहीं हो पाता।
0: जी बिल्कुल किसान भाइयों। और साथ ही बात करें सीमांत पट्टी या नकवार विधि के बारे में, तो इस विधि में खेत को छोटी छोटी पट्टियों में बांट दिया जाता है जो आपस में एक दूसरे से एक छोटी सी मेड़ से अलग रहती है। ये मेड़ पानी को ढलान की दिशा में नियंत्रित कर बहने में सहायता करते हैं और पानी एक पतली परत के रूप में पट्टियों में बहता जाता है। पट्टी की चौड़ाई, जल की उपलब्धता, भूमि की ढलान, मिट्टी के भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। यदि पानी कम मात्रा में उपलब्ध हो या ढलान प्रतिशत अधिक हो या मिट्टी गठन रेतीली हो तो पट्टी की चौड़ाई और लंबाई कम रखी जाती है। इस विधि से धान के अलावा सभी फसलों की सिंचाई की जा सकती है।
1: चलो साथ ही साथ बात करेंगे टपकाव और ड्रिप सिंचाई विधि की, जो कि फसलों के लिए जो है उत्तम विधि मानी गई है। शुष्क एवं अति शुष्क क्षेत्रों में जहां पर वर्षा कम होती है और मृदा गठन रेतीली या बलुई हो, वहां पर वाष्पन द्वारा बहुत तेजी से जल खत्म हो जाता है। वहाँ के लिए रिसाव सिंचाई एक बहुत अच्छा तरीका रहता है। इस विधि में पानी का प्लास्टिक के पाइपों के द्वारा टपकाने वाले छिद्रों से जल पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके रिसाव से उपलब्ध करवाया जाता है और इस तरह से ना तो पौधों को जल की कमी प्रतीत होती है और ना ही वाष्पीकरण या गहरी रिसाव से जल का क्षति होती है। इस विधि से सिंचाई क्षमता सभी विधियों से अधिक होती है और इस विधि का एक दोष ये रहता है कि रिसाव सिंचाई योजना स्थापन करने के लिए बहुत व्यय होता है और कार्यान्वयन के लिए विशेष कुशलता और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता रहती है।
0: जी बिल्कुल। और साथ ही किसान भाइयों बात करें बोछार अथवा छिड़काव सिंचाई के बारे में, तो इस विधि से जल

0: भूमि सतह के ऊपर छिड़काव करके पौधों को वर्षा की तरह समान दिया जाता है। ये विधि विशेष तौर पर ऊबड़ खाबड़ या बहुत ही ढलानदार भूमि या बलुई मिट्टी जहां मिट्टी क्षरण की संभावनाएं अधिक होती है। यदि वाष्पीकरण बहुत अधिक ना हो तो इस विधि द्वारा भी सिंचाई क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस विधि में अधिक खर्च और तकनीकी ज्ञान का होना मुख्य दोष है। ये स्पष्ट है कि विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग सिंचाई विधियां अपनाने से सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ भू संरक्षण और अन्य आवश्यक तत्वों का सही सही उपयोग हो पाता है, इसलिए सही सिंचाई विधि अपनाना अति आवश्यक है।
1: किसान भाई और बहनों, ये तो थी कुछ एक जानकारी सब्जी वाली फसलों में जल प्रबंधन आप किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन सी विधियाँ इसमें अगर आप अपनाते हैं तो पानी की बचत भी होती है और अच्छा उत्पादन आपको मिल पाता है। किसानों, अब कार्यक्रम में समय हो चला है आपको एक लोकगीत सुनाने का, तो किसानों आइए सुनते हैं रोशनी देवी और हेतराम कैंता की आवाज़ में प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत। अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को सुनाएंगे जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय है ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली सब्जियों का उत्पादन और प्रबंधन। बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर राजकुमार और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं शैलजा।
1: किसान बागवान भाई बहनों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर राजकुमार। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: तो किसान भाइयों, आज डॉक्टर राजकुमार जी से जानकारी हासिल करेंगे ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली सब्जियों का उत्पादन व प्रबंधन की। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि सब्जियों का जीवन में क्या महत्व है।
2: धन्यवाद मैडम। सब्जियों का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। सब्जियाँ हर व्यक्ति के जीवन में पौष्टिक, संतुलित तथा स्वादिष्ट आहार के साथ साथ किसानों की आर्थिक में भी सहायक होती हैं। सब्जियों की बहुत फसलें वर्ष भर ली जाती है। हिमाचल प्रदेश में कुछ समशीतोष्ण क्षेत्र, समशीतोष्ण सब्जियां कुछ शुद्ध व स्वस्थ बीज उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु की क्षमता भी विद्यमान है। प्रदेश में अनुकूल जलवायु के आधार पर सब्जियां उगाने के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों का चयन किया जाता है। जो यहाँ इन क्षेत्रों में सब्जियां उगाई जाती है उनमें टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांस बीन, मटर, बंद गोभी, खीरा, फूल गोभी और मूली आदि सब्जियां बेमौसमी सब्जियों के भांति तैयार करके पड़ोसी प्रांतों को भेजी जाती है, जिससे कि किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। सब्जियां जैसे बंद गोभी, गाजर, मूली, शलगम, फूल गोभी, लाल गोभी, पार्सले, चुकंदर और चिकोरी की पैदावार से किसानों को बहुत फायदा पहुंचा है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी हमें जीवन में सब्जियों का क्या महत्व है वो बताया, तो भौगोलिक स्थानों के आधार पर हिमाचल को कितने वर्गों में बांटा गया है?
2: धन्यवाद मैडम। जैसा कि मैंने बताया कि हिमाचल को हम चार जोन में बांट सकते हैं।
1: जी,
2: पहला जो जोन है हमारा समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई तक जो जोन आते हैं उसको जोन वन में लिया जाता है। दूसरा जोन हमारा जो है 915 से 1523 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र आते हैं। तीसरा जोन हमारा 1523 से 2200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र जो आते हैं।
1: जी,
2: और जो 2200 से ऊपर मीटर जिनके क्षेत्र हैं उनको जोन 4 में लिया गया है।
1: जी,
2: तो इन चारों जोनों में जो है अलग अलग किस्म की सब्जियां जो है उगाई जाती। जोन 1 में जो सब्जियां उगाई जाती हैं, टमाटर, बैंगन, खीरा, शिमला मिर्च, फ्रांस बीन तथा मटर आदि सब्जियां उगाई जा सकती। परंतु हमारे जो जोन 2 है 15 से लेके 1500 मीटर तक की हाइट तक के आते हैं, उसमें मैक्सिमम 90 से 100 मीटर तक की वर्षा होती है। बेमौसमी सब्जियां जैसे उसमें भी टमाटर है, फ्रांस बीन है, शिमला मिर्च है, अदरक आदि की खेती, फूल गोभी की पचेती किस्म, बीज उत्पादन भी इन जिलों में जैसे सोलन, सिरमौर और कुल्लू के आसपास किया जाता है। जोन हमारा जो 3 आता है वो हमारा 1524 मीटर से लेके 2200 मीटर तक, जैसे कि मैंने बताया है, वहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर की मॉनसून ऋतु में वर्षा होती है। नवंबर से मार्च तक बर्फ पड़ने और अधिक ठंड के कारण सब्जियों को उगने में यहां बाधा होती है। मैदानी क्षेत्रों में सर्दियों में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण सब्जियां इसमें भी मटर है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, मूली है, शलगम है और गाजर है।
1: जी,
2: जोन 4 हमारा है ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। इसमें प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हमारे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, पांगी, भरमौर आदि क्षेत्र आते हैं। लाहौल घाटी में अधिकतर क्षेत्र मटर की फसल के अंतर्गत बीजा जाता है। अन्य सब्जियां इसमें बंद गोभी है, फूल गोभी है, प्याज है, जड़ वाली सब्जियां

0: ही उगाई जा सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के सभी 4 जोन में सब्जियों की पौधशाला कैसे तैयार की जाती है, क्योंकि आपने अभी हमें भौगोलिक स्थानों के आधार पर हिमाचल के 4 वर्गों के बारे में बताया है।
0: धन्यवाद मैडम। पौधशाला के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पौधशाला इन 4 जोनों में जो कि सब्जियों की पौधशाला डालनी है, उस पौधशाला की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ होने चाहिए। इसमें साधारण जो क्यारी होती है, सभी क्यारी की लंबाई 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर उठी हुई होती है, और क्यारी की लंबाई आवश्यकता अनुसार बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। इसमें जितनी भी हमारी फसलें हैं, टमाटर में अगर हम 1 हेक्टेयर में हमारे 10 क्यारियों की संख्या पड़ती है, वैसे ही शिमला मिर्च में 12 क्यारियों की संख्या पड़ती है, फूलगोभी में 10 क्यारियों की 1 हेक्टेयर के लिए जरूरत पड़ती है, प्याज जो है उसमें कम से कम 60 क्यारियों की जरूरत पड़ती है। जहां तक बीज की मात्रा है, वहां टमाटर के लिए 40 से 50 ग्राम 1 क्यारी के लिए बीज प्राप्त होता है, बैंगन के लिए 35 से 40 ग्राम, शिमला मिर्च के लिए 100 से 120 ग्राम और मिर्च के लिए 125 से 150 ग्राम तक बीज की आवश्यकता पड़ती है, बंद गोभी के लिए 70 से 75 ग्राम, चाइनीज सरसों के लिए 50 से 60 ग्राम और प्याज के लिए 175 से 200 ग्राम 1 क्यारी में जरूरत पड़ती है। तो क्यारी को बनाने से पहले इसमें जो है फफूंदनाशक के लिए कम से कम इंडोफिल M45 घोल का जो है या क्लोरोपाइरीफॉस को मिला लेना चाहिए। बीज को बोने से पूर्व फफूंदनाशक दवाई जैसे कैप्टॉन है, बेविस्टेन है, 2 से 3 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से उपचारित करें
1: जी।
0: बीज की पंक्तियों में 5 सेंटीमीटर की दूरी लगाकर गोबर की खाद या मिट्टी की पतली तह से ढक दें। क्यारी को सूखा घास और पॉलीथीन की चादर से ढक दें। ग्रीष्म ऋतु में क्यारियों की सिंचाई सुबह और शाम 2 वक्त करनी चाहिए, जबकि शरद ऋतु में क्यारियों की सिंचाई सिर्फ 1 बार ही करनी चाहिए। अधिक नमी होने के कारण कमर तोड़ बीमारी लगने की चांसेस रहते हैं। जब पौधे स्थापित हो जाए तो प्रतिदिन सिंचाई करें। बीज का अंकुरण होने पर पॉलीथीन की चादर हटा दें। फिर कमर तोड़ के आने पर पौधों पर 0.52% या 0.25% इंडोफिल M45 का घोल की सिंचाई करें। जब 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तो 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव करें, जिससे पौधे स्वस्थ रहें। हर सप्ताह खरपतवार निकालें व हल्की सी गुड़ाई करें, और 4 से 6 सप्ताह के होने पर या पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तो रोपण योग्य पौधे हो जाते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी हमें जानकारी दी कि 4 जोन में सब्जियों की पौधशाला कैसे तैयार करनी है, हमें ये बताइए कि इन सब्जियों में कीट पतंगों की बीमारियों की रोकथाम हम कैसे करें।
0: धन्यवाद मैडम। जहां तक कीट पतंगों की बात है, जो कि हमारी भिंडी है, बैंगन है, फ्रांस बीन है या कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं
1: जी,
0: और कई बार पौधों में इसमें आकस्मिक अवस्था में पत्ते खाने वाले कीटों का प्रकोप हो जाता है। यदि इन सब्जियों में कीट प्रकोप से अधिक क्षति होने की आशंका दिखे तो कम से कम मेलाथियोन 0.1% या मतलब 1 ml दवाई 1 लीटर पानी में जो है घोलकर उसके ऊपर स्प्रे की जा सकती है। और जहां तक बैंगन, टमाटर, आलू की फसल में झुलसा रोग और लक्षण है, इसके जो लक्षण है वो पत्तों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, इसकी रोकथाम के लिए रिडोमिल MZ78 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या रिडोमिल जो है वो भी 2 से 2.5 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करनी चाहिए। पौध संरक्षण के लिए जो कि हमारे बीमारियां हैं, जैसे कि टमाटर है, शिमला मिर्च है, इसमें ज्यादातर कमर तोड़ की बीमारी जो है आती है। कमर तोड़ के जो लक्षण होते हैं वो बीज से पौधा जो है पैदा होते ही मुरझा जाता है
1: जी।
0: और प्रभावित पौधा जो है जमीन पर गिर जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्यारियों को 5 लीटर फॉर्मालिन प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर रोपाई के 15 से 20 दिन पहले शोधित करें। बीज तभी बोएं जब मिट्टी में इसका धुआं उठना बंद हो जाए। क्यारियों को मैनकोजेव व इंडोफिल M45 से या 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी और कार्बन डीजम या बेबिस्टेन 5 ग्राम 10 लीटर पानी के घोल के हिसाब से लक्षण दिखाई देते ही सींचे। दूसरी बीमारी इसमें बकाई रोट है। बकाई रोट की जो हमारी पहचान है, प्रभावित पौधे के ऊपर जो फल है वो ऊपर से गहरे भूरे रंग के चक्कर के रूप में दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए पौधों को सहारा देकर सीधा खड़ा रखें। इसके निचले फैलाव को 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के पत्ते मानसून के आरंभ होते ही तोड़ दें। सड़े फलों को नष्ट कर दें। जल निकास का उचित प्रबंध रखें और फसल पर रिडोमिल MZ78 जो है वो 2.5 ग्राम दवाई पर लीटर या 25 ग्राम दवाई 10 लीटर पानी का छिड़काव करने पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर करें। तीसरी हमारी जो बीमारी आती है, इसमें अल्टरनेरिया ब्राइट है, जिसको हम अल्टरनेरिया झुलसा रोग भी कहते हैं। इसकी जो पहचान है, पत्तों पर गहरे भूरे धब्बे चक्कर बनाते हुए उभर जाते हैं और पत्तों पर पीलापन आ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हम सबसे पहले बीज जो है वो रोग मुक्त होना चाहिए। बीज का उपचार थिरम 75 WP हमारा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम से उपचार करें। पौधों पर 8 से 10 दिन के अंतराल पर हेक्सा कैप 20 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम 10 लीटर पानी में या फिर मैनकोजेव इंडोफिल M45 25 ग्राम 10 लीटर पानी में छिड़काव करें। सेप्टोरिया फफूंद धब्बे वकाई रॉट

0: को बोलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल में मैनकोजेव 75 WP जो है वो 0.25% के हिसाब से 3 से 4 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। वेल्टेरिया विल्ट है, इसमें पौधा पीला पड़ जाता है। इसके लिए जो है रोकथाम के लिए 3 वर्षीय कम से कम फसल चक्र अपनाएं, रोग मुक्त तथा स्वस्थ पौधों का ही रोपण करें। फिर बल्टरनेरिया कैंकर है हमारी, इसमें भी हम रोग मुक्त स्वस्थ पौधे ही लगाएं, रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें। 3 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं और ऐसी फसल उगाएं जिस पर इस रोग का प्रभाव ना हो। थैंक यू मैडम।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने हमें कीट पतंगों की बीमारियों की रोकथाम कैसे करें उसके बारे में जानकारी दी। अब हमें आप थोड़ी सी जानकारी सब्जियों के कीट की कैसे रोकथाम कर सकते हैं उसके बारे में दे दें।
0: धन्यवाद मैडम जी। जहाँ तक सब्जियों में कीट प्रबंधन की बात आती है तो कीट पतंगों में सबसे पहले हमारे सब्जियों में आता है फल छेदक कीट। ई फल छेदक कीट से इसकी सुंडियां कोमल पत्तियां पर पलती है और बाद में छेद करके फल के अंदर चली जाती है। और इसकी रोकथाम के लिए हमारे पास एंडोसल्फान 0.5% 1 से 2 ml दवाई जो है पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे करें। और एंडोसल्फान नहीं है तो उसके लिए हम सुमिडियान, फेनवेल, एग्रोफान, साइफरमेथ्रिन कोई भी दवाई जो है 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से पत्तों पर स्प्रे करना चाहिए। दूसरी मक्खी, इस पे जो है इस फल के ऊपर ये मक्खियां जो है अंडे देती हैं और फिर इसका प्रकोप फल के अंदर फैल जाता है और फल खाने योग्य नहीं रहता। ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है ये आती है मई और जून के महीने में। तो उन्हें आकर्षित करने के लिए हम 50 ग्राम गुड़, 10 मिलीलीटर मेलाथियॉन, साइथियॉन या इकोथियॉन कोई भी दवाइयों इसमें डालकर 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और इससे जो है इन मक्खी की जो है वो रोकथाम हो सकती है। परंतु इसमें सावधानियां जो रखनी है उसमें पौधों पर छिड़काव करने के 15 दिन बाद ही फल तोड़ें, रोगग्रस्त फल एकत्र करके मिट्टी में दबा दें और किसी कीटनाशी रसायन द्वारा नष्ट कर दें।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने अभी हमें इतनी सारी जानकारी उपलब्ध करवाई कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली सब्जियों का उत्पादन, उनका प्रबंधन, सब्जियों में लग जाने वाले रोग, उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सानू, ये तो सुनिए आपने जानकारी। जानकारी का विषय था ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली सब्जियों का उत्पादन एवं प्रबंधन। इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राजकुमार और उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे शैलजा। तो सानू, हम उम्मीद करेंगे कि आप इस जानकारी से जो है लाभ भी उठाएंगे। सानू, अब कार्यक्रम में समय हो चला आपको और एक लोकगीत सुनाने का। तो सानू, आइए सुनते हैं एक सहगान।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत। इसी के साथ अब कृषि जगत कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के
1: FM शिमला पर अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप DTH सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
6: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
5: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता हुआ प्रशस्त। हिमाचल को हर वर्ष मिलेगी 100 करोड़ यूनिट

0: बिजली। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों से नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, बीते 12 वर्षों में देश ने छुआ विकास की नई ऊंचाइयों को। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, 15 जुलाई तक होगा मकानों की गणना का कार्य। और लंबे समय से आंदोलनरत दृष्टिबाधितों ने सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन, सरकार पर मांगों को लेकर अनदेखी का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। वे आज फतेहपुर क्षेत्र के तहत कुठंडल में स्थित गुरुद्वारा श्री नानक ज्योति साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक समागम के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का जीवन त्याग, तपस्या, सेवा और मानव कल्याण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने लोगों से गुरु साहिब की शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर समाज में प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान राज्यपाल ने नवनिर्मित श्री दरबार साहिब भवन का विधिवत उद्घाटन भी किया। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में मां ज्वाला के पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि और निरंतर विकास की कामना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मंदिर के इतिहास और परंपराओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि धर्मशाला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान कानूनी और सुशासन के क्षेत्र में हुए कार्यों और लीगल गवर्नेंस से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और विकास की गति लगातार तेज हुई है।
1: धर्मशाला में एक हमारा रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एक्सेस टू जस्टिस, और पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लीगल फील्ड में क्या क्या रिफॉर्म किए, जैसे ईज ऑफ लिविंग बॉडी, उसके बारे में भी वर्कशॉप में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और उसमें जो एक विकास की रफ्तार तेज, गुड गवर्नेंस की ओर देश बढ़ा, ये आगे भी शानदार तरीके से देश का विकास होता रहे, ऐसी हमने ज्वालाजी माता जी से प्रार्थना की।
0: प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना अभियान आज से शुरू हो गया है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर मकान और परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, परिवार की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये डाटा देश की विकास योजनाओं के लिए बेहद ज़रूरी होगा। निदेशालय ने लोगों से इस राष्ट्रीय कार्य में पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के भेड़ पालकों व घुमंतू पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि लंबे समय से बंद पड़े भेड़ पालन परमिट को सरकार ने मंजूरी दी है। मनोज ठाकुर ने कहा कि परमिट की सुविधा मिलने से इस व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले ये परमिट हर वर्ष रिन्यू होते थे, जबकि अब इन्हें 5 वर्ष तक जारी करने की व्यवस्था की गई है।
2: सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों को आज दिन तक परमिट नहीं मिले थे और जो भेड़ बकरियां चराना चाहते थे उसके बावजूद भी वो चरा नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए इसमें परमिट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए इनके पशुपालकों का पंजीकरण होगा और उन्हें शीघ्र परमिट जो है वो जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो आदेशित किया है उसके मुताबिक हम 5 साल तक जो है ये परमिट जो है जारी करेंगे और 5 साल के बाद नए सिरे से दोबारा फिर इसकी माल शुमारी के मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी परमिट की।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबसे बड़ी
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर टौंस नदी पर 15,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध

योजना के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना की वित्तीय लागत वहन करने संबंधी मामले को मजबूती से उठाया, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब परियोजना के जल घटक के रूप में लाभान्वित होने वाले राज्य दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत को वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने पर राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब

0: और हरियाणा हिमाचल के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत को वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने पर राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, CR पाटिल और लाभान्वित राज्यों के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी शिमला ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 1955 में आज ही के दिन आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। करीब 71 वर्ष के इस सफर में आकाशवाणी शिमला ने अपने श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं। आकाशवाणी शिमला के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी कश्मीर सिंह ने कहा कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 71 वर्षों में आकाशवाणी शिमला ने विश्वसनीय व मनोरंजन से भरपूर जानकारी लोगों तक पहुंचाई है।
1: बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, इस आदर्श के माध्यम से आकाशवाणी ने 71 वर्षों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अथक प्रयासों से कार्य किया है और श्रोताओं को विश्वसनीय और सशक्त तरीके से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। श्रोताओं, इतने वर्षों में आपने आकाशवाणी परिवार पे अपना विश्वास बनाए रखा है, वो विश्वास आप आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे और अपनी फीडबैक आकाशवाणी को समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम्स को और सुधार सकें।
0: केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा ने कहा है कि आकाशवाणी शिमला अपनी स्थापना से लेकर अब तक हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और विभिन्न बोलियों के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने श्रोताओं से कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव देने को भी कहा है।
2: इन 71 वर्षों के सफर में हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जन जन से जुड़ें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उनके बारे में भी लिखें, और यदि आपके कोई सुझाव है कि हम कार्यक्रम में क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं या आपकी जो लगता है कि हमारे को ये कार्यक्रमों में कैसे सुधार किया जा सके, वो विचार हमारे से साझा करें। हम प्रयास करेंगे कि अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ा सकें।
0: समाचार एकांश के प्रमुख व सहायक निदेशक रितेश कपूर ने कहा है कि आकाशवाणी शिमला ने दूरदराज व जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने श्रोताओं का आभार जताते हुए भविष्य में भी जन सेवा की भावना से काम करने का भरोसा दिया।
3: प्रादेशिक समाचार एकांश ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करते हुए निरंतर तत्परता, सटीकता और विश्वसनीयता के साथ श्रोताओं का विश्वास अर्जित किया है। मैं प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से सभी श्रोताओं, सहयोगियों और विशेष रूप से युवाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके विश्वास और सहभागिता ने ही हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी हम इसी समर्पण, निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ आपकी सेवा में निरंतर तत्पर रहेंगे।
0: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हिमाचल की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज मंडी जिला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय सरनौहली मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल के सुंदर पर्वतों और प्राकृतिक संसाधनों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजीव गांधी वन संपदा योजना के तहत वनों के संरक्षण व संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले राजेश धर्माणी ने सेगली पंचायत में बनने वाले ITI भवन का शिलान्यास भी किया और कहा कि इसके लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। राजधानी शिमला में पिछले 976 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने आज सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। दृष्टि बाधित जन संगठन के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बैकलॉग भर्तियां व आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक दृष्टि बाधितों की जायज मांगे पूरी नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
4: मेरा नाम राजेश ठाकुर। जैसे ही दिव्यांगजनों की समस्या आ रही है तो सरकारी विभागों में क्लास 4 का बहुत अधिक मात्रा में हमारा बैकलॉग बचता है। हम चाहते हैं वो भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए और पेंशन भी हमारी 5100 रुपए महीने की समस्त दिव्यांगजनों के की जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें भी बिना किसी कंडीशन से दिव्यांगजनों को लाया जाए और हमें जो सारा पेंशन मिलती थी वो भी 12 महीने से बंद पड़ी है, उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और UDI कार्ड वो भी लागू किए जाए।

0: शिमला पुलिस ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के खरड़ से मुख्य सप्लायर हरप्रीत उर्फ हैरी को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 309 ग्राम हीरोइन और 61,900 रुपये नकद बरामद हुए हैं। एएसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि इस साल शिमला पुलिस ने अब तक 2.5 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी है, जो पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि इस मामले से जुड़े बाकी लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है। केंद्र सरकार की 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण कार्यक्रम के तहत राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज कांगड़ा जिला के ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का ये प्रोजेक्ट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इस दौरान सांसद राजीव भारद्वाज और विधायक सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि धर्मशाला विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और स्मार्ट सिटी परियोजना सहित कई बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद व भारतीय ग्रैपलिंग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक ला रहे हैं, जो हिमाचल के लिए गर्व की बात है। सुंदरनगर में उनके सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल सहित देश के हर कोने से आने वाले ग्रैपलिंग खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता हुआ प्रशस्त। हिमाचल को हर वर्ष मिलेगी 100 करोड़ यूनिट बिजली। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से की नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, बीते 12 वर्षों में देश ने छुआ विकास की नई ऊंचाइयों को। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, प्रगणक 15 जुलाई तक घर घर जाकर करेंगे जनगणना का कार्य। और लंबे समय से आंदोलनरत दृष्टिबाधितों ने सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन, सरकार पर मांगों को लेकर अनदेखी का लगाया आरोप। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
6: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
5: नियम और शर्तें लागू।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
9: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 8 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हैं भूले बिसरे गीत। इस सफर में आपके साथ मैं रहूंगी ऋचा शर्मा। खो जाते हैं जो यादों के गलियारों में, वो नगमे छिपे हैं समय के किनारों में। फिर से सुनते हैं कुछ अनमोल मीठे और भूले बिसरे गीत जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में, SH बिहारी का

वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ धुनों की मिठास कभी कम नहीं होती। ये वो गीत हैं जो हमारी यादों के संदूक में महफूज हैं। इन गीतों को सुनवा कर ताज़ा करते हैं आपकी यादों को। असली नकली फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आकाशवाणी शिमला का आज है स्थापना दिवस। 16 जून 1955 को आज के दिन ही आकाशवाणी शिमला ने अपना सफ़र शुरू किया था। आज के इस शुभ अवसर पर आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र हिमाचल प्रदेश के क्लस्टर हेड उप महानिदेशक श्री कश्मीर सिंह का ये संदेश।
1: हमारे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। जैसा कि श्रोताओं आप सभी को पता है कि आज आकाशवाणी शिमला ने अपने 71 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, यानी कि 16 जून जो है वो आकाशवाणी शिमला का स्थापना दिवस है। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आकाशवाणी का जो आदर्श है या जो ध्येय है वो रहा है बहुजन हित।

0: आए बहुजन सुखाए। इस आदर्श के माध्यम से आकाशवाणी ने 71 वर्षों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अंथक प्रयासों से कार्य किया है और श्रोताओं को विश्वसनीय और सशक्त तरीके से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। आकाशवाणी ने हिमाचल की लोक संस्कृति को संजोए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके अभिन्न अंग यहाँ की जो है वो लोक संगीत, विभिन्न बोलियां, किसानों से संबंधित प्रोग्राम या विज्ञान के क्षेत्र में भी जो सूचना है वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, आकाशवाणी ने युवाओं को भी युववाणी कार्यक्रम के माध्यम से एक तरह का मंच प्रदान करने की भरपूर कोशिश की है। इन 71 सालों में आकाशवाणी ने तकनीक के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें जो है या बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है वो देखी हैं। जैसा कि आप श्रोताओं को ज्ञात होगा ही कि सबसे पहले जो है हमारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो टेप्स के माध्यम से हुआ करती थी, उससे पहले जो है ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पे हुआ करती थी। धीरे धीरे जो है ये आयाम बदलते गए और नई तकनीक आने के कारण आज के समय में हम लोग जो है DTH के माध्यम से या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी लोगों तक सुने जा सकते हैं, और इसका प्रचार प्रसार जो है वो इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह के इन तकनीक के माध्यमों से इस क्षेत्र के बाहर भी जो है वो सुना जा सकता है। इन सब के साथ जो है प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया गया है, जिसमें भी आकाशवाणी के प्रोग्राम्स जो है वो सुने जा सकते हैं। इतना ही नहीं कि बहुत कम समय में जो है वो जितने भी आपके प्रोग्राम है वो सर्वर के माध्यम से उनकी जो पुनः प्राप्ति है यानी कि रिट्रीवल सिस्टम है उसको भी बहुत जल्दी प्राप्त करके जो है श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। और इसी कड़ी में सिर्फ श्रोताओं को रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स ही नहीं बल्कि श्रोताओं के साथ जो है कुछ एक कार्यक्रमों के माध्यम से सीधी बात भी होती है, जिसको हम लाइव फोन इन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जैसा कि सभी श्रोताओं को पता ही होगा। श्रोताओं, इतने वर्षों में आपने आकाशवाणी परिवार पे अपना विश्वास बनाए रखा है और जिस विश्वसनीयता के साथ हमने एक सशक्त माध्यम जो है और स्टीक माध्यम जो है वो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आपको पहुंचाया है, वो विश्वास आप आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे और अपनी फीडबैक जो है आकाशवाणी को समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम्स को या अपने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में जो भी हम कार्य करते हैं उसको और सुधार कर सकें और उसकी तरफ हम अग्रसर रह सकें। आपकी विश्वसनीयता हमें अपने कार्य के प्रति अपनी रुचि को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ आप सभी को एक बार 71 वर्ष पूर्ण करने पर दोबारा से शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत सादर नमस्कार। धन्यवाद।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हम साया फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज़ में। श्रोताओं, आकाशवाणी शिमला के स्थापना दिवस पर अब सुनते हैं आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख श्री अनिल वर्मा का ये संदेश।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज आकाशवाणी ने अपने 71 वर्ष पूरे कर लिए हैं और हमें बड़ा गर्व है कि आप श्रोताओं ने हमारे को अवसर दिया आपके साथ हमारे को अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने का। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन में अपनी पूरी सहभागिता निभाता है और ये प्रयास रहता है कि हम अपने श्रोताओं को जन जन तक पहुंचने की एक प्रयास करें और उनको अवगत करवाएं कि यहाँ पे पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान दें और मनोरंजन के साथ हम आपको ये सारा ज्ञान दें। आकाशवाणी की विश्वसनीयता तो बनी ही है लेकिन आकाशवाणी का ये भी प्रयास रहता है कि यहाँ का हिमाचल का लोक संस्कृति, यहाँ का लोक संगीत, ये भी हम अपने यहाँ पे प्रिजर्व करें और लोगों तक

0: इसको पहुंचाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता हो कि हमारे प्रदेश की लोक संस्कृति क्या रही है, यहाँ का लोक संगीत कैसा रहा है, कौन से अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने लोक कलाकारों का जो हमारे पास समय समय पर आके अपनी जो पूरी नॉलेज है वो शेयर करते हैं। आकाशवाणी आप तक पहुंचता भी है, ओबी के द्वारा हम अपने जाके कार्यक्रमों को हम कवर भी करते हैं, और ये इसलिए करा जाता है कि लोगों को पता हो कि पूरे प्रदेश में क्या गतिविधियां हो रही हैं। यही नहीं, 12 जिलों के यहाँ पे बोलियों के कार्यक्रम जो हैं हमारी 12 बोलियों में प्रसारित किए जाते हैं। उन बोलियों के कार्यक्रम में ना ही केवल समाचार सूचना, केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में हम आपको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हमने युवाओं के लिए कार्यक्रम जो हमारा युवाणी प्रसारित होता है उसमें युवाओं को जोड़ा जाता है और उनको ये एक मौका मिलता है कि वो अपनी बात रख सकें और आज जो प्रदेश और देश में जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें अपने विचार साझा कर सकें। यही नहीं, हमारे केंद्र से सैनिकों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, कानून की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। और जो हमारे दो चैनल हैं यहाँ पे, एक तो हमारा प्राइमरी चैनल है मीडियम वेव और दूसरा हमारा FM चैनल है, इन दोनों पे अलग अलग कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इन 71 वर्षों के सफर में हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जन जन से जुड़ें। पहले एक वो अवसर होता था जब हमारे साथ श्रोता पत्रों के द्वारा अपने विचार साझा करते थे और अपनी हमारे को फरमाइश भेजा करते थे, लेकिन आज समय आ गया है कि हम मेल द्वारा या लाइव फोन इन कार्यक्रमों के द्वारा हम आपके साथ सीधा जुड़ते हैं, आपसे विचार साझा करते हैं और उन कार्यक्रमों को उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का भी हम प्रयास करते हैं जो हमें आपके सुझाव मिलते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उनके बारे में भी लिखें, और यदि आपके कोई सुझाव हैं कि हम कार्यक्रम में क्या कर सकते हैं इसमें या आपकी ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं या आपकी जो लगता है कि हमारे को ये कार्यक्रमों में कैसे सुधार किया जा सके वो विचार हमारे से साझा करें, हम प्रयास करेंगे कि अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ा सकें। अब आकाशवाणी ने इन 71 वर्षों में अपने आप को डिजिटली भी बहुत स्ट्रांग किया है। हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम जैसे मैंने कहा वो तो है ही है, लेकिन हमारा एक मोबाइल ऐप है आकाशवाणी का न्यूज ऑन AIR, अगर आप उसको गूगल प्ले में जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आकाशवाणी के विभिन्न चैनल आपको मिलेंगे और उसमें आप आकाशवाणी शिमला का प्राइमरी चैनल, आकाशवाणी का FM चैनल, हमारा प्रदेश का हमीरपुर चैनल और धर्मशाला चैनल भी अगर आप सुनना चाहें तो आप उसको ट्यून कर सकते हैं। और सिर्फ आपको इंटरनेट की सुविधा चाहिए, आप कहीं भी हों इस कोने में, धरती के किसी भी कोने में आप आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। मैं आपसे एक और चीज साझा करना चाहूंगा कि आकाशवाणी शिमला ने हाल में ही अपना एक फेसबुक पेज आकाशवाणी शिमला के नाम से शुरू किया है। उसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपने श्रोताओं को, अपने जो हमारे इंटरनेट के यूजर हैं उनको ये बताया जा सके कि हमारे कौन से कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। आप उस पेज को देखिए, उसको आप लाइक करिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। इन 71 वर्षों के सफर में ये आप श्रोताओं का ही का जो विश्वास है वो रहा है, हमारे को ऊर्जा मिलती है इस पे आपके साथ आपके जब विचार मिलते हैं कि अपने कार्यक्रमों में हम सुधार कर सकें, उनकी गुणवत्ता बढ़ा सकें और आपके साथ हम अपने जो कार्यक्रम हैं उनको अच्छा कर सकें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दोनों हमारे चैनल्स को सुनिए और इन 71 वर्षों की पूर्ण होने पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा,

0: सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा,
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल,
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे,
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी शिमला की स्थापना दिवस पर अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार प्रमुख श्री रितेश कपूर का ये संदेश।
3: ये हमारे लिए बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि आज आकाशवाणी शिमला अपने स्थापना के 71 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इन 7 दशकों से अधिक की इस गौरवशाली यात्रा में आकाशवाणी शिमला ने सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन के सशक्त माध्यम के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। साथ ही समाज के हर वर्ग तक विश्वसनीय, निष्पक्ष और प्रमाणिक समाचार पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रादेशिक समाचार एकांश ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करते हुए निरंतर तत्परता, सटीकता और विश्वसनीयता के साथ श्रोताओं का विश्वास अर्जित किया है। ये मंच न केवल सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाता रहा है, बल्कि युवाओं को अपनी प्रतिभा, विचार और उपलब्धियों को अभिव्यक्त करने का सशक्त अवसर भी प्रदान करता रहा है। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में जहां सूचनाओं की भरमार और भ्रम की स्थिति भी देखने को मिलती है, ऐसे समय में आकाशवाणी शिमला ने अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए श्रोताओं के भरोसे को और सुदृढ़ किया है। मैं प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से सभी श्रोताओं, सहयोगियों और विशेष रूप से युवाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके विश्वास और सहभागिता ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी हम इसी समर्पण, निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ आपकी सेवा में निरंतर तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।

0: भूले बिसरे गीतों में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको

0: को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें, बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूँ कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियाँ होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: FM शिमला पर चलिए अब आपको सुनवाते हैं जुदाई फिल्म का गीत अलका याग्निक अभिजीत की आवाजों में।

इंसान अकेलेपन से नहीं झूठे साथ से थक जाता है। अपनेपन के बदले अगर बेरुखी मिले तो वो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। ना समझे जब जज्बात कोई तो ये दिल खामोश सा हो जाता है। चांदनी फिल्म का गीत सुरेश वाडेकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल शिव हरि का संगीत।

0: फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने

0: ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय

0: से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में

0: शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ

0: वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today.

आपने भी आज तक ना जाने कितनी फिल्में देखी होंगी, या शायद किसी को याद भी नहीं होगा। और एक ही फिल्म जो हमें अच्छी लगी हो, उसे हमने ना जाने कितनी बार देखा होगा। फिल्में हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, इसलिए इनका निर्माण किया जाता है। तो आज की जो हमारी फिल्म है, उसका नाम है आशिकी, जो रिलीज हुई 1990 में।

मुख्य भूमिकाओं में राहुल रॉय, अन्नू अग्रवाल, दीपक तिजोरी और साथी कलाकार। फिल्म के गीत लिखे समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का था। आवाजें कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, और इस फिल्म में सिर्फ एक गाना था जो उदित नारायण की आवाज में था, और इस फिल्म ने 4 अवार्ड्स अपने नाम किए।

0: 15-1700 हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
0: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आपको बता दें कि गुलशन कुमार ने इसे म्यूजिकल एल्बम के रूप में रिलीज करने की सोची थी, लेकिन जब महेश भट्ट को इनके गाने सुनवाए गए तो उन्होंने इसे फिल्म के रूप में तैयार करने को कहा। फिल्म के पोस्टर की बात करें तो उस समय महेश भट्ट को लगा कि उनके लीड रोल के एक्टर एक्ट्रेस बहुत आकर्षक नहीं है, और दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए उन्होंने पोस्टरों को दोनों कलाकारों के चेहरों को छुपा दिया।

एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आज आपने सुने आशिकी फिल्म के गीत। 9:30 होने वाले हैं। अब वक्त है ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन। जी हाँ, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं हमें एक मेल भेजकर। हमारा ईमेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com। और हमारी आज की फिल्में हैं ब्रदर्स, बॉर्डर 2, धड़क, दिल धड़कने दो, बागी 3। फिल्में एक बार फिर से नोट कर लीजिए, बागी 3, दिल धड़कने दो, धड़क, बॉर्डर 2 और ब्रदर्स। इन फिल्मों के गीत आप सुन सकते हैं हमारे साथ अब से लेकर ठीक 10 बजे तक। हमारा ईमेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com।

तो चलिए आपकी मेल्स भी हम तक पहुंचना शुरू हो चुकी है, बिना देरी के उन्हें शामिल करते हैं। नज़दीक बस स्टैंड भुज हनुमानगढ़ फालजिका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिवांश वर्मा, डॉक्टर मदनलाल वर्मा, कीर्ति सिद्धक प्रियांशी और इनके फैमिली मेंबर्स सुनना चाहते हैं ब्रदर्स फिल्म का ही गीत। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश कुमार खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और SK पप्पी भी सुनना चाहते हैं गीत। उत्तम सिंह झंगेल मॉरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी। सुखरी कला से अमित झंगेल, शगुन, आरुषि, उषिका आदित्य, अंजलि और इनके फैमिली मेंबर्स। चौपाड़ी रोडू से LR गुंजेटा, जमिंता गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, तारा सिंह गुंजेटा और इनके फैमिली मेंबर्स। नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम साहू, पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू भी इनके साथ सुनना चाहते हैं गीत। जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर,

बानू बी और बादशाह मुलानी और इनके फैमिली मेंबर्स हमें पंडरपुर से ये मेल कर रहे हैं, इनकी रिक्वेस्ट भी इसी फिल्म के लिए। शुगर फैक्ट्री गवराई महाराष्ट्र से दिनकर सावले, गंगा सावले और श्रेया सालवे भी हैं और इनकी रिक्वेस्ट भी इसी फिल्म के लिए। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, सुल्तान सिंह तरार, कपिल देव, हिमानी जक्खर और ये हमें हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से मेल कर रहे हैं। इसके साथ ही और भी मेल्स बहुत सारी धीरे धीरे हम तक पहुंच रही हैं, उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

चलिए, बहुत सी मेल्स हम तक लगातार पहुंच रही हैं और अगला मेल है बॉर्डर टू के लिए। भेजने वाले हैं पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग। इनका मेल हम तक आया है कोलगांव से। इनकी रिक्वेस्ट इसी फिल्म के लिए है। नेक्स्ट है नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश और इनके साथी। बागी थ्री फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा किया जाएगा। वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और इनके फैमिली मेम्बर्स। लाजवाब लिखकर हमें भेजा है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से और संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट मेल है शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ इनके साथ हैं और ये भी सुनना चाहते हैं इस फिल्म का गीत। कुलशोभा कॉटेज सोनाम पंजाब से मिस्टर विरोचनपुरी, भारतीपुरी, के आर पुरी, शोभापुरी, सरोज बाला, सौरभ ज्योति, इताज, प्रणिका, रिद्धि और मास्टर वहीनपुरी इनके साथ है। स्वीट स्वीट गुड इवनिंग लिखकर हमें भेज रहे हैं। इनकी रिक्वेस्ट बॉर्डर टू फिल्म का ही गीत सुनना चाह है। जिला सिरसा से राधेश्याम वर शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का मेल हम तक पहुंच चुका है। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके फैमिली मेंबर्स। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली और थैंक यू लिखकर हमें भेज रहे हैं। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश हमें छत्रपति संभाजी नगर से ईमेल कर रहे हैं। वारली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहान, मास्टर अजहर खान और अजीम खान सुनना चाहते हैं ये गीत।

बागी थ्री के लिए हमारे पास बहुत सी मेल्स पहुंच चुकी हैं, भेजने वाले हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, रजन साहू, हेमंत नावदेव, धर्मदास और इनके फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट मेल जो हम तक आया है, सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, आशा गुगलानी, सोनिया कालका, विभाषा शर्मा और सोनिया कालका जी करनाल से हमें ये मेल कर रहे हैं। SM जावेद, शगुप्ता अंजुम, गुमला झारखंड से, हसीना बी मंसूरी, आमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, हुसना कमला हमें पालदा नाका इंदौर मध्य प्रदेश, इनका मेल हम तक पहुँचा है। जलालाबाद वैसे सुरेश गंगेजा, पूनम गंगेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित, दुर्गा चौक जूना पानी सनावद मध्य प्रदेश से, कालू सिंह, सीताराम हीरालाल, साहिल सुमन, विशाल हरिओम और भावना बडोली भी इनके साथ सुनना चाहते हैं गीत। नेक्स्ट मेल है गांव कल्याण मलका, जिला भटिंडा पंजाब से, अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर और मनिंदर भी इनके साथ हैं। नेक्स्ट मेल जो हमारे पास आई है निमनाबाद जिला जींद से, जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट मेल जो है डाबकी रोड अकोला, सुशीला देवी मंदूरकर, सनावद और सदानंद भी इनके साथ सुनना चाहते हैं गीत। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार हमें बाड़मेर राजस्थान से मेल कर रहे हैं। दिनेश चौहान रामदेवरा से, डांगरी से बब्बूराम जयपाल और इनके भी फैमिली मेंबर्स और दोस्त नाम है इनका लिखा है। एक और मेल है जो हम तक आया है फालजिका पंजाब से, खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु विशाल, लाडी खेड़ा और ये भी सुनना चाहते हैं बागी थ्री फिल्म का गीत। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का बागपत उत्तर प्रदेश से हमें मेल आया है। और एक और मेल है प्रकाश पोहरकर, नम्रदा और सुचाता, मेन रोड तेहलहारा से ये हमें मेल कर रहे हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और जसवी और इनके फैमिली मेंबर्स। एक और मेल है पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश और इनके फैमिली मेंबर्स भी सुनना चाहते हैं गीत। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, ज़िला मुरादाबाद, ग्राम उत्तर प्रदेश से ये दुलापुर का मेल हम तक पहुंच चुका है। और एक और मेल है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमसुल कमर, राहीगंज, डुंडवारा, कासरगंज से ये सभी सुनना चाहते हैं ये गीत।

जैसे जैसे समय बीत रहा है, आपके मेल्स लगातार हम तक पहुंच रहे हैं और दिल धड़कने दो फिल्म का गीत सुनना चाहे गंज झुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान और अन्नू खान भी इनके साथ हैं, नासिर शेख, नाजिया नासिर, शादी गोविंदपुर अहमदाबाद से जुनेद, साहिबा मिलखाई, जैनब मुजावर भी इनके साथ सुनना चाहते हैं गीत। और नेक्स्ट मेल जो हम तक आई है वो आई है, भेजने वाले हैं गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, रजक, मुरली क्षत्रिय भी सुनना चाहते हैं दिल धड़कने दो फिल्म का गीत इसके साथ।

ही एक और मेल है, राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद, अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर, राहुल, चंदू, देवराज, लक्ष्य और इनके सारे फैमिली मेंबर्स, और भेजा है इन्होंने क्लासिक रेडियो श्रोता संघ से झालावाड़ राजस्थान, इनकी लोकेशन है चिरमिरी कोरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश और काली इंद्री लहरे भी इनके साथ हैं। सुनना चाहे गीत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना और मैंडी शर्मा का भी मेल है इसी फिल्म के लिए। गुड इवनिंग लिखकर हमें भेज रहा है टाउन मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन ने, इनकी रिक्वेस्ट थी बागी 3 के लिए। फिलहाल आपने ये गाना सुना है, अगला गीत दिल धड़कने दो फिल्म से। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से दगजी जगदीश धाकड़, रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ सुनना चाहते हैं ये गीत।

चलिए नेक्स्ट मिल प्रोग्राम में शामिल करते हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इनके साथ है। एम फारूक शेख, शमा प्रवीण, सायमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और मुस्कान हमें एटा उत्तर प्रदेश से मेल कर रहे हैं। हनुमंत शिंदे, संगीता, ऋषिकेश, वसुंधरा, सांगली से इनका मेल हम तक पहुँचा है। पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश और इनकी रिक्वेस्ट भी हम तक पहुंची है, धड़क फिल्म का गीत सुनना चाहा है। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री और इनके साथ इनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो सुनना चाहते हैं इस फिल्म का गीत। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, आज़ाद अली अनवर, रिजवाना अब्दुल्ला अमजद भी इनके साथ हैं। संगीता कंवर, दुशार और रिंकी शेखावत, दतार सिंह राजस्थान से हमें मिल कर रहे हैं। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र, नौखेलाल छत्तीसगढ़ से। तो चलिए आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं FM शिमला के साथ। FM शिमला पर अब लुत्फ उठाइए गज़लों का।

ज़रा सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत हैं। दिल के दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब हैं वो अनजान बहुत हैं।

तकदीर तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलता है, छोड़कर सारे बहाने मेहनत की राह पर चलता है। जो ठोकरों से भी सीखता है, जो अंधेरों से डरता नहीं, वही सितारा बनकर चमकता है।

अब ना कोई शिकवा, ना गिला, ना कोई मलाल है। सितम उनके भी बेमिसाल रहे तो सब्र अपना भी कमाल है।

0: गजलों का लुत्फ अभी आप उठा रहे थे एफएम शिमला के साथ।
1: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
2: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
4: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा
3: FM.

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं FM शिमला के साथ। 10:30 हो चुके हैं और ये वक्त है सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। प्रेम पुजारी फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, तो सुनते हैं ये गीत।

कुछ लोग बार बार माफ करते हैं क्योंकि वो रिश्ता बचाना चाहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब दिल थक जाता है। फिर गलती बड़ी नहीं होती, बस सहने की ताकत खत्म हो जाती है। आंधी फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में, गुलजार के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

जो बोलते हैं ना कि बेहतर मिल जाएगा, उन्हें बता देना कि दूसरी बरसात से मिट्टी नहीं महकती। गुलामी फिल्म का गीत लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की आवाज़ों में, गुलजार के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सूरज और चंदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। सिंदूर फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सदाबहार नगमे अभी आप सुन रहे थे एफएम शिमला के साथ। 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात

0: कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest.